तुम्हारे प्यार में हम बेकरार हो के चले, फिल्म शिकार में से निकाल लेने की थी। अख्तन सैस्तक का ये गीत रफ़ी साहब की आवाज़ में हमने आपको सुनाए। चलिए, जानी दुश्मन वो भूत अख्तक फिल्म आपने अवश्य देखे होंगे, संजीव कुमार का। जानी दुश्मन में से निकाल रहे हैं, जी हाँ, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर। लता जी चलिए आपको सुना रही है इस तरह से फिल्म जानी दुश्मन, निगेटिव नई खनन से 79 का ये गीत।

लता जी लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर आपको सुनाए नेक दिन नेक नसीब में दुख का ये गीत फिल्म जानी दुश्मन में से निकाल कर। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है

रामा रामा गजब होई गवारे। लता जी आपको सुनाए ये शानदार गीत हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। तो जी हाँ, आप चुने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर, जो लोग चुन के मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। आप जहाँ भी होंगे, जो भी कर रहे होंगे, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा आपका स्वागत करते हुए चलिए हम आपको ये गीत सुना रहे हैं।

जिसका सपना मैंने देखा था, ये शानदार गीत चला ओवरफा ऑन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ। तो अगर आप भी हैं, मैं भी हूँ, मैं चला रहा हूँ, तो क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये गीत सुनाऊँ।

महेंद्र कपूर जी और लता जी, ये दोनों मिल के बड़ा आदमी से में से निकाल कर ये गीत हम आपको सुनाए हैं। और साज है चित्रगुप्त जी का, चित्रगुप्त के साज पर ये गीत पेश हुआ। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, आप भी हैं और मैं भी, जैसे मैंने कहा। तो क्या ख्याल है कि हम आपको ये धमाकेदार गीत सुनाए हैं।

नथनिया हाले तो बड़ा मज़ा होए, ये चटपटा चुटकुला गीत हम आपको सुनाए हैं फाम हिंदुस्तानी रेडियो के शाम के कार्यक्रम में। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाते हैं, ये देखते हैं, ये लॉफिन टोक्यो का है। जी हाँ, लॉफिन टोक्यो इस तरह से है।

फिल्म लव इन टोक्यो में से निकाल कर ये प्यारा गीत हम आपको सुनाए हैं ओवर फाहन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए ये गीत भी आपको सुना देता हूँ, एवरग्रीन किशोर कुमार। लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर

जाने मन जाने मन एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाएं लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर हमने पेश की। आप भी हैं और मैं भी हूँ। अच्छा, तो आप दोनों हम दोनों हैं, आप श्रोताओं, तो क्या ख्याल है अगर मैं आपको ये गीत सुनाऊँ? ये गीत के बोल थोड़ा, इसे सुनिए, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, सुन लीजिए।

फिल्म गैम्बलर में से निकाले हैं निकित एन से इवन तक का, ये देवानंद का गैम्बलर है, ग्रेट गैम्बलर नहीं, गैम्बलर निकित एन से इवन तक का ये गीत लता जी की आवाज़ में और एफ एम ग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए हैं। चलिए अगला गीत हम आपको सुना रहे हैं, जी हाँ, म्यूजिक डायरेक्टर आनंद राज आनंद

तो लीजिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और ये गीत के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, बस आप इसे सुनिए और निर्णय कीजिए क्या कैसा गीत है। इस तरह से आ रहा है।

सुरेश वाधिकर जी और लता जी, ये शानदार द्वैत आपको सुनाए हैं। जबकि आप सुन रहे हैं आओ मैं चला रहा हूँ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो दनहा शहर से। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और वो ये गीत है, हाँ सुनिए, रोना लैला जी, इस तरह से।

अरे दुनिया के वीरा पाओगे जब हम नहीं होंगे, ये तो बात सच है। ऐसा होता है ज़िंदगी में। और हमने ये गीत पेश किए फाउन हिंदुस्तानी रेडियो कार्यक्रम में रोना लैला जी की आवाज़ में। तो चलिए रोना लैला जी के बाद हम आपको सुना रहे हैं ये आवाज़, आपके लिए भी एक बहुत जानी पहचानी आवाज़ है, फिल्म फिल्म फिल्म निका में से निकाले हैं।

वाह क्या बात है, फंसा भी है जमा जमा। सलमा आगा की आवाज़ में हम आपको सुनाएं ओवर फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो।

दिल ने ये क्या सुन लिया, आंखों आंखों में तूने ये क्या कहा। ओवरफाउंड हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में हमने पेश किए। तो चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है। जी हाँ, चलिए हम आपको सुनाते हैं ये धमाकेदार गीत, इस तरह से आ रहा है।

डाकू पे डका डाले तो बड़ा मजा हो, इस शमशाद बेगम की आवाज में आपको सुनाया गया ओवर फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो। तो चलिए शमशाद बेगम जी के बाद हम आपको सुनाते हैं रफी साहब की आवाज़।

चले।

0: तो हम भी करते हैं प्यार समझने आया।
1: फिल्म कॉलेज गर्ल निगेती एन एफ आई इफ्तिखार रफी साहब की आवाज़ में आपको सुनाया गया फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में हमने पेश की। जी हाँ, तो क्या ख्याल है रफ़ी साहब के बाद हम आपको ये सुनाते हैं। हाँ, निगेती द्रीन तख्त एन एफ आई इफ्तिख से सीधे चलते हैं द्रीन तख्त। जानी पहचानी गीत है, जानी पहचानी आवाज़ है, जानी पहचानी म्यूजिक डायरेक्टर है, तो सुन लीजिए।

अगर तुम ना होते हमें जीने की चाहत ना होती। एवरग्रीन किशोर कुमार जी और लता जी निगत इंद्रियन तख्त का ये फिल्म है, हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। फिल्म तो टाइटल सॉन्ग है ये है अगर तुम ना होते निगत इंद्रियन तख्त का। आप चुने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर, अगर आप चुने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर हम आपको ये सुनाते हैं। जी हाँ सुनिए, बहुत पुरानी गीत है, उतनी पुरानी तो नहीं है लेकिन फिर भी है।

क्या बात है, बहुत पुरानी गीत है, उतनी पुरानी भी नहीं है। आपको सुनाया गया फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा, हमने पेश की ये शानदार गीत। चलो यहाँ से हम पेश करते हैं, जी हाँ, चलिए आपका स्वागत करते हुए फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा हम आपको सुनाते हैं ये गीत। जी हाँ, कहाँ गया मेरा गीत, और वो ये है इस तरह से।

0: से तौबा।
1: हाँ वाह क्या बात है, आपने शायद शब्द सुने होंगे लेकिन मैं आपको बताता हूँ, अगर ये शब्द आप नहीं सुने होंगे तो मुकेश जी जो है वो प्यार करता है लेकिन रफ़ी साहब प्यार के ख़िलाफ़ है। बस यही सवाल और जवाब इन लोगों में था, मुकेश जी प्यार कर रहा था और रफ़ी साहब उसका खिलाफ था। ये गीत हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत हम चला रहे हैं, ये जी हाँ ये भी एक जानी पहचानी गीत, लंबा चौड़ा गीत है, 6.5 मिनट का, तो सुनिए ये गीत कैसा है।

तू इस तरह से मेरी ज़िंदगी में आया है, आप तो ऐसे ना थे, फिल्म का नाम है और हमने पेश की ओवरफाउंड हिंदुस्तानी रेडियो। तो चलिए अगला गीत। जी हाँ, अगला गीत है मैथी मुकेश, मैथी मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस।

लता जी की आवाज़ में ये शानदार गीत आपको सुनाएं ओवर फावनी रस्तानी रेडियो फिल्म लुटेरा में से निकाल कर। लेकिन ये पता नहीं कि उन दिनों या पुराने ज़माने में भारत में सेपी रात थे या नहीं, यानी समुद्री डाकू थे या नहीं, बह पता नहीं। समुद्री डाकू का ये फिल्म है लुटेरा, जो इंडिया ने बनाए कभी और हमने पेश की ओवर फावनी हिंदुस्तानी रेडियो। चलो देख

मैं तू मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए, फिल्म दिल ने पुकारा में से ही निकाल कर हमने पेश की निगेटिन सेशन सेस्त का ये गीत, और हमने पेश की ओफर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। और चलिए अगला नंबर हम पेश करने वाले हैं, तो क्या ख्याल है, जी हाँ आप भी हैं और मैं भी हूँ, तो चलो सुनते हैं फिल्म जंगली में से निकालने हैं शंकर जय किशन के साथ पर ये शर्मिला टैगोर और शमी कपूर का कमाल है।

दीवाना हुआ बादल, ये शानदार गीत हमने पेश की। लेकिन शुरू में हमने कहा था फिल्म जंगली, लेकिन फिल्म जंगली का नहीं है, लेकिन ये है फिल्म कश्मीर की कली गई। लेकिन बीच में हम रोकना नहीं चाहते थे, इसलिए नहीं कहा। फिल्म कश्मीर की कली में से निकाल कर ओपन एयर के साज पर नहीं था ये, और हमने पेश की ओ फरफा हो हिंदुस्तानी रेडियो।

एक बात पूछूं या बोलो, लता जी और रफ़ी साहब मिलके आपको सुनाए हैं फिल्म कठपुतली में से निकाल कर नीख दें ए ने सैफ तक का ये गीत कल्याण जी आनंद जी के साथ पर हमने आपको सुनाए हैं। ये अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं, तो क्या ख्याल है? चलो हम ये आपको सुनाते हैं, इस तरह से आ रहा है।

हाँ जी, उदित नारायण और साथी मिलके आपको सुनाए ये शानदार गीत हमने पेश किए मोहब्बत में से निकाल कर। जी हाँ, यतीन ललित के साज पर हमने पेश किए फॉर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, तो क्या ख्याल है, ये है इस तरह से आ रहा है।

हाँ जी, क्या बात है, एवरग्रीन जी नहीं, द मैन विद द गोल्डन वॉइस, द मैन विद द गोल्डन वॉइस आपको सुनाए ये शानदार गीत हमने पेश की ओवर फाहन हिंदुस्तान। तो अगर आप तत्पर हैं, आपका हृदय से स्वागत है। आप जहां भी होंगे, जो भी कर रहे होंगे, जिस देश में भी होंगे और कार्यक्रम फाहन हिंदुस्तानी रेडियो का सुन रहे हैं और वीफी द्वारा वहाँ पर और इंटरनेट द्वारा आपका हृदय से स्वागत है। तो चलिए हम आपको सुनाते हैं ये शानदार गीत।

फिल्म हंसते जख्म में से हमने निकाले हैं, तुम जो मिल गए हो। और रफी लता जी की आवाज़ में हम आपको सुनाएं ये गीत उफ़ फ़ाहून हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए, क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये गीत सुनाऊं? जी हाँ, सुन लीजिएगा, क्योंकि ये गीत जहाँ तक मेरा ख्याल है बहुत दिन हुए मैंने भी नहीं सुने हैं। फिल्म आत्माराम, फिल्म आत्माराम ने से निकाल रहे हैं और रफ़ी साहब की आवाज़, जी नहीं लता जी की आवाज़ में हम पेश करने वाले। इसे ध्यान से सुनिए, इस गीत में बहुत अच्छे अच्छे शब्द हैं, क्या ख्याल है। चलो सुनते हैं। थोड़ी देर ध्यान से सुनिए ये गीत।

0: तुम्हारे बिन गुजारे हैं कई दिन अब ना गुजरेंगे। लता जी, मैं तो भूल ही गया था कि रफ़ी की आवाज़ भी इसमें है। रफ़ी साहब और लता जी मिलके आपको ये शानदार दुएत सुनाए ओवरफाउन हिंदुस्तानी रेडियो। जहाँ तक मेरा ख्याल है बहुत दिनों बाद हमने ये गीत सुने हैं, सात चार पाँच साल हो गया होगा, और शायद हमारे सहयोगी ने आपको सुनाया होगा, तो मेरा बदनसीबी है। बहरहाल ये गीत हमने पेश की ओवरफाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ।
1: दुनिया में जो ले हिम्मत से काम,
0: महेंद्र कपूर जी।

आपने सुने महेंद्र कपूर जी आपको सुनाए कि बड़ा आदमी कौन है, हमने निकाल कर आपको सुनाए इस तरह से फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। आपको तो ये गीत हमें यही बताता है कि सूट बूट पहन लेने से, टाई यानी जैकेट जैकेट के ऊपर एक दास बांध लेने से, महंगा जैकेट पहनकर या कुछ सोने का चेन लटकाकर और बड़े गाड़ी में चलना, 70-80 हज़ार का गाड़ी में चलना, वो बड़ा आदमी नहीं है। बड़ा आदमी वो है जो दिल से किसी को चाहे, उनका दिल बड़ा है, पैसा बड़ा नहीं। तो यही गीत महेंद्र कपूर जी आपको सुनाए ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो हमने पेश की। चलिए अगला गीत इस तरह से आ रहा है, ये तो प्यार करने वाले सिखाते हैं कि कैसे प्यार

0: जी फिल्म उपासना में से निकाले हैं। हाँ आओ तुम्हें मैं प्यार सिखा दूं, लता जी और रफ़ी की आवाज़ में आपको सुनाएगा निगती एन सैफन तक। 1971 का ये गीत हमने पेश किया ओवर फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो।
1: शांति सांसारिक साधनों में नहीं, अपने सत्यता और सत्य स्वरूप को पहचानने में है।

मित्रों, जो बातें बतलाने जा रहा हूँ हमेशा की तरह ध्यान पूर्वक श्रवण करें और जीवन में उतारिए। ज्ञान इसीलिए बांटा जाता है कि लोग उसे सुनकर अपने जीवन में उतारें और न वैसे ही सुन करके साइड कर दे। नहीं मित्रों, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो जहाँ बारिश ना हो मित्रों, जहाँ बारिश ना हो वहाँ फसल खराब हो जाती है, और जहाँ संस्कार ना हो, जहाँ संस्कार ना हो वहाँ नस्ल भी खराब हो जाती है। हाँ, जो लोग ये कहते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है, असल में उनके खास रिश्तों के गिनती में आपका नाम ही नहीं है मित्रों। नहीं है, कैसे वक्त नहीं है। मैं प्रवचन दे रहा था कहीं, काफ़ी लोग बैठे हुए थे, तो लोग के हमने कहा कि दोस्तों तुम लोग समय निकाल कर प्रभु के लिए जरूर कम से कम आधा घंटा समय निकालो, एक घंटे का एक मिनट निकालो तो 24 घंटे में 24 मिनट हो जाएगा। तो लोग खड़ा होकर बोले गुरुजी कहाँ से लाई समय हम लोग हैं। तो इसे सही समझिए, तो मैंने फ़ोन लगाए परमात्मा को, का नंबर मेरे पास है, लगाए मोबाइल फ़ोन, तो उसने उठाया बोले क्या है प्यारे। हम बोले प्रभु हमारे जनता को कुछ समय हो तो और दे दो, क्योंकि यहाँ पे सभी को तंगी है, समय नहीं है। तो परमात्मा हमसे बोले बेटा मेरे पास 24 घंटा है और आप लोगों की भी 24 घंटा है, मैं 24 घंटे में पूरी दुनिया को, सारी दुनिया, सारा संसार को चलाता हूँ और कभी समय कम ना हो, और तुम लोग को भी 24 घंटा है और हमेशा समय कम है। तो मैंने कहा प्रभु तो क्या प्रॉब्लम है। बोले तुम का प्लानिंग ठीक नहीं है, अपने समय का प्लानिंग ठीक नहीं करते हो, जाओ सुधारो अपने प्लानिंग को तो काफ़ी समय बचेगा। तो मित्रों समय निकालिए अपने परमात्मा के लिए, और ये नहीं कहे कि वक्त नहीं है, वक्त नहीं है। असल में उनके खास रिश्तों के गिनती में आपका नाम ही नहीं हो जाएगा मित्रों। तो बात इतनी मधुर रखो कि कभी वापस भी लेनी पड़े तो आपको कड़वी ना लगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, स्वाभिमान होना जरूरी है मित्रों, वरना लोग वहाँ भी आपको दबाने की कोशिश करेंगे। दमौद्र क्यों, हाँ जहाँ आपका अधिकार है वहाँ दबाने की कोशिश करेंगे लोग, ऐसे है आज के ज़माना। आप भी यही काम करते हो, अगर नहीं करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो सही रूप से जीते रहो मित्रों। सुनिए, श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है अन्य पुरुष भी, अन्य लोग भी वैसा ही आचरण करता है। वह जो कुछ प्रमाण देता है समस्त मनुष्य समुदाय उसी के पथ चिन्हों पर अपने रास्ते चुनता है। आप भी करते होंगे शायद ज्ञानियों के बात लेकर, पता नहीं, मैं जरूर कीजिए मित्रों। ज्ञानियों के बात लेकर अपने जीवन में अवश्य उतारिए, अन्यथा जीवन क्या है।

0: सद्गुरु की।
1: मित्रों, सज्जन व्यक्तियों को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए, हमेशा अच्छा रहना चाहिए, अच्छा मनीरी है। और जो मनुष्य ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते हैं, वे अज्ञानी मनुष्य जीवन में कभी भी सुख शांति को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जैसे आप, सुख शांति है जीवन में तो ठीक, अगर नहीं है तो थोड़ा सोच विचार करो कि कहाँ गड़बड़ी है मित्रों। और ऐसे मनुष्य की बुद्धि विपरीत हो जाती है, उल्टा सोचते हैं। आप तो उल्टा नहीं सोचते हो ना, वो लौकिक और परलौकिक सब प्रकार के सुख साधनों को विपरीत ही समझने लगते हैं। इसके फलस्वरूप उनका इस लोक में और परलोक में पतन हो जाता है, गड़बड़ी होवत है, पतन हो जाता है। और वे अपनी वर्तमान स्थिति से भी भ्रष्ट हो जाते हैं। आप तो ऐसे नहीं हो ना, सोच विचार करो। और मरने के बाद वो

आप नीच योनियों में नहीं जन्म लेना मित्रों, सुधारो जीवन को। हम ये नहीं कह रहे कि आप गड़बड़ जी रहे, मगर कहीं कहीं गलती हो तो उसे सुधारो, या घोर नरक में पड़कर भयानक यातनाएं भोगनी पड़ती है। आई दायो फांसी मी माती, वो फांसी देंक खा।

दोस्तों, भजन के द्वारा आपको काफ़ी ज्ञान मिलता है ना, और यही हमेशा हम बोलते रहते हैं, ना सोचना कि बड़ा सुंदर बड़ा मोह मोह, उसे जीवन में उतारो। जब आप भोजन तैयार करते हो बहुत स्वादिष्ट माह के खुशबू, तो आप कहते हैं बड़ा लेकर स्मेल हो स्मेल स्वीति, तो ऐसे पेट ना भरे, उसे खाओ, पेट में जाए तब स्वाद मिले, तब आप ढकार मारो घड़ाम से, बोले बहुत मीठा बहुत स्वादिष्ट रहा। इसी तरह ज्ञान भी अन्न है, यह आध्यात्मिक अन्न है मित्रों, इसे आप ग्रहण करो, जीवन में उतारो, तभी कुछ न कुछ प्राप्त होंगे आपको। और जो मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए विपरीत स्थितियों में भी अपने धर्म के मार्ग पर अधिक रहता है, और उसके कारण अगर उसकी मृत्यु भी हो जाती है मित्रों, तो वह मृत्यु भी उसके लिए परम कल्याण कारक बन जाती है। बुद्धि ठीक तरह से उपयोग करो, कर्म ठीक करो, भले ही पापी हो मगर बाद में कर्म ठीक कर तो करो, सब ठीक हो जाएगा मित्रों, और उस मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो आप सोचेंगे ये कैसे है ना, अभी हैं बहुत लंबी बातें बताएंगे तो आप समझ पाओगे। जेहल मिलल है 50 बरिस के, अपने को सुधार ले लो जेहल में तो खरासी मिले है, तो बोले अच्छा 5 बरिस में तू चल जा बाहर, तू बहुत अच्छा आदमी बाटे। ऐसे ही यह है, बड़ा पापी हो सुधार कर लो, तो भगवान बोले अच्छा नो लुकू दो डे फिंगर है। तो जब तक तुम अपने से नहीं हार जाओ तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती है मित्रों। आपका भविष्य आपके हाथ में है, और कमज़ोर तुम नहीं मित्रों, तुम्हारा वक्त है, और वक्त सबका बदलता है। हम भजन गाए एक दिन रात बदलते हैं हालात बदल, सुने ना आपने, उसे सुनो ध्यान, भजन का नाम है दिन रात बदलते हैं, सुनिए। और तो कमज़ोर तुम नहीं, तुम्हारा वक्त होता है, और वक्त सबका बदलता है, तुम बस अपना कर्म करते जाओ, सही कर्म करते जाओ मित्रों। और नोगो दू लाओ लाओ सानी, नोगो दू लाओ लाओ सानी, उसी ओ फासी।

दोस्तों, जिसने संकट कभी नहीं देखा, उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होगा। और जो दूसरों को तकलीफ को समझते हैं, दूसरे के तकलीफ को आप समझते हैं, जिनमें दया है, जो दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है। मित्रों, तो आप जन्म दोबारा नहीं लोगे, बड़ा अच्छी बात है। तो धरती पर सब खलास हो जाएगा मनुष्य, तो आप धरती पर आना चाहते हो या नहीं, ये आपके हाथ में है। मैंने बतलाया अभी आपको कि कब धरती पर नहीं आएंगे आप। मित्रों, तो किसी को कुछ देकर सुनिए, ये भी एक उपाय है। किसी को कुछ देकर घमंड मत कर, ना मीना हेयर कल हम दे ली है, तू कह देने वाला है? यही मैं मरण इंस्ट्रूमेंट। मित्रों, तो किसी को कुछ देकर घमंड मत कर, क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्मों का कर्ज चुका रहे हैं आप। कर्ज चुका रहे हैं मित्रों, ये भी तो है ना। तो घमंडी मनुष्य का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों ही चले जाते हैं, सब गायब हो जाए तोरबी की फांसी से, अहंकार से। मित्रों, और विश्वास ना हो, ध्यान करना, तो घमंडी है ना, तो विश्वास ना हो तो रावण को और कंस को देख लो। आप तो नहीं रावण हो या कंस हो, नहीं, हम ये आशा नहीं रखते हैं। मित्रों, आप अंस और रावण कभी हो ही नहीं सकते हो, अनोखा। और हो सके दम ऊंचाई मारवी तो, ये तोड़ तोड़ी है, तू जाना दम ऊंचाई मारवी तो।

साथियों, किसी पर विश्वास करना हो, सुनिए, किसी पर विश्वास करना हो तो उनकी बातों पर नहीं, मगर उनकी हरकतों पर, संस्कार पर, मनीरी पर ध्यान दो। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से मित्रों जिंदगी और भी आसान हो जाती है, आसान हो जाती है। मगर आप तो झुकना नहीं चाहते हो, हैं? झुकिए, आपके बात नहीं बतला रहा हूँ, आपके पड़ोस के जो बगल में खड़ा है उनके बात बतला रहा हूँ मित्रों। और जो मनुष्य, ध्यान करना, जो मनुष्य जान लेता है वह जन्म मरने के बंधनों से मुक्त हो जाता है मित्रों, मुक्त हो जाता है। आप तो मुक्त हो जाओगे ना, हाँ। और जो मनुष्य भगवद गीता को पढ़कर, ध्यान करना, बहुत लोग हैं ये, जो मनुष्य भगवद गीता को पढ़कर अमल करता है उसके सारे दुष्कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। बहुत लोग पढ़ते हैं भागवत गीता मगर उतारते नहीं हैं, कुछ कुछ लोग हैं, और बाकी तो अकड़ के चलते, मीना लेरी मांग, मीना साबी मांग, दोंदर ऑफ मांग हैं। तो जो भाग्य में है मित्रों, जो भाग्य में है ना, वो भाग कर आएगा, आएगा, चाहे जैसे हुकू बनाए के रोमाइन लेके आएगा तुम्हारे पास। और जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी भाग जाएगा, भाग जाएगा। जैसे कुनकुनी बकरा बोले मैं नाम सहास, मतलब हम भागत हैं, जात हैं। तो जो भाग्य में वो मिलेगा, जो भाग्य में नहीं है तो का लड़ाई झगड़ा, का फेतफेती करत बाटो मित्रों। आराम से रहो, संतुष्ट करो और आगे देखते रहो भगवान तुम्हारे लिए क्या करेगा, क्या रखे हैं पैतों में मित्रों, भरोसा करो।

कहते हैं कि विश्वास असंभव को संभव बना देता है। विश्वास संभव को असंभव, असंभव को विश्वास, असंभव को संभव बना देता है।

गीत में गाकर सुना दे कि जब से हो गए है यंग, हाँ आप जवान हो जाएंगे तो जरूर से ऐसा ऐसा दर्द दिल में समाएगा। और कहता है कि अच्छे के साथ बुरा भी उसके अच्छे के लिए ही होता है। अगर इसे आप ठंडे दिमाग से सोचोगे तो आप जरूर ये मानेंगे कि बात सही है।

हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल फिल्म का नाम है मेरे प्यारे सुनने वालों। हाय मेरा दिल फिल्म का नाम 1968 के ये पिक्चराइज किया हुआ फिल्म है। 1968 कितने बीते हुए समय लग रहा ना, और वाकई में समय बहुत जल्दी से बीत रहा है। कहते हैं कि गिरने के बाद उठना ही असली जीत है मेरे प्यारे सुनने वालों। हार से डरने वाले लोग कभी जीत का स्वाद नहीं रखते।

0: बाद। दोस्तों, मृत्यु के बाद मनुष्य की आत्मा शरीर के किस अंग से बाहर निकलती है, पुरुषों की आत्मा किस छिद्र से निकलती है और स्त्री की आत्मा किस छिद्र से निकलती है, पापी और पुण्यवान व्यक्तियों की आत्मा किन किन छिद्रों से बाहर निकलती है, इस विषय में गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है। इन पापी आत्माओं को अगला जन्म कौन सा मिलता है, इसका भी वर्णन भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को बताया है। गरुड़ पुराण, अग्नि पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण जैसे ग्रंथ हमें बड़े रोचक लेकिन गंभीर अंदाज में समझाते हैं कि आत्मा कैसी होती है, शरीर में कहाँ रहती है, मृत्यु के वक्त क्या होता है, आत्मा शरीर से कैसे निकलती है और पाप पुण्य के हिसाब से आत्मा की आगे की यात्रा कैसी होती है। तो चलिए आपको गरुड़ पुराण का संपूर्ण ज्ञान विस्तार से समझाते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही वीडियो को लाइक करना न भूले और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखे। आत्मा शरीर में कहाँ और कैसी होती है? शास्त्रों के अनुसार आत्मा हर जीव के हृदय में एक सूक्ष्म रूप में निवास करती है। ये आत्मा परमात्मा का अंश है, चेतना का वो दिव्य कण जो हमारे पूरे शरीर को जीवन देता है। शरीर तो पंच तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना नाशवान पदार्थ है, लेकिन आत्मा अमर है, अविनाशी है। आत्मा का कोई रूप रंग नहीं, पर इसे एक चमकते हुए छोटे प्रकाश की तरह समझ सकते हैं। गरुड़ पुराण में तो कहा गया है कि यमदूत जब आत्मा को निकालते हैं तब वो अंगूठे के आकार की सूक्ष्म पुरुषाकृति होती है, यानी आत्मा इंसान के सूक्ष्म शरीर के रूप में होती है। बिल्कुल मानो आपके शरीर का नन्हा प्रतिरूप जो अंगूठे जितना छोटा होता है और जिसे सामान्य आंखों से नहीं देखा जा सकता। यही आत्मा हमारे होने का वास्तविक मैं है, जो न कभी मरती है न जलती है, बस एक शरीर से निकलकर फिर अगले गंतव्य की ओर चली जाती है। दोस्तों, मृत्यु के समय क्या होता है? जब किसी स्त्री की मृत्यु का समय आता है तो शरीर में कई बदलाव शुरू हो जाते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जैसे जैसे अंत निकट आता है उसके जीवन दायु प्राण डगमगाने लगते हैं, सांस उखड़ने लगती है, खांसी और बलगम से नलिकाएं अवरुद्ध हो जाती हैं और आंखें उलड़ने लगती हैं, शरीर बिल्कुल निर्जीव सा निश्चेष्ट होने लगता है, मानो आत्मा की पकड़ ढीली पड़ रही हो। कई बार मरने वाले की जीभ से झाग निकलने लगता है, मुंह लार से भर जाता है और वो बेहोशी की हालत में चला जाता है। गरुड़ पुराण भयावह तुलना करता है कि प्राण निकलते समय मनुष्य को ऐसा दर्द महसूस होता है जैसे 100 बिच्छुओं ने एक साथ टंक मारा हो। सोचिए जरा कितनी तीव्र पीड़ा। मृत्यु का क्षण इतना यातनामय होता है कि वो एक पल नहीं बल्कि युगों के बराबर लंबा महसूस होने लगता है। कई पापी आत्माएं तो असह्य डर और दर्द से अपने मल मूत्र तक छोड़ देती हैं। शास्त्र कहते हैं ये सब पिछले कर्मों के कारण है। जिसने जीवन भर धर्म और पाप किए हों, उसके लिए मौत का स्वाद बहुत कड़वा और भयावह होता है, लेकिन जिसने धर्म पूर्वक जीवन जिया हो उसकी मृत्यु अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण ढंग से हो सकती है। पापी के प्राण हरने कौन आता है? गरुड़ पुराण वर्णन करता है कि अंतिम क्षणों में सिर्फ मरने वाली को एक दिव्य दृश्य दिखता है। आस पास रोते परिवारजन दिखाई दे सकते हैं, पर साथ ही यमराज के दूतों का आगमन भी होने लगता है। ये यमदूत बड़े भयंकर रूप वाले होते हैं, काले डरावने चेहरे, सिर पर खड़े रोंगटे, लाल जलती आंखें, हाथों में फंदा और मूठ वाले डंडे। उनके दांत भालों जैसे नोकीले हैं, लंबे नख हैं और रूप इतना भयानक कि उन्हें देखकर ही मरते हुए का हृदय दहल जाता है। गरुड़ पुराण बताता है कि इन यमदूतों को देखकर प्राणी भय के मारे चिल्लाने लगता है, उसका हृदय तेजी से कांपने लगता है और रोम रोम सिहर उठता है। यमदूत पापी आत्मा के पास आकर कोई नम्रता नहीं दिखाते, वे क्रोध में गरजते हुए कहते हैं,
1: अरे पापी चल, आज तेरा समय पूरा हुआ, तुझे हम यमराज के पास लेकर जा रहे हैं।
0: मरने वाला अपने रोते परिवार को देखकर विलाप करता है, पर यमदूत उसको जरा भी मोहलत नहीं देते। वे लोहे के फंदे से उसका गला कसकर बांध देते हैं और जबरन आत्मा को शरीर से घसीटने लगते हैं। आत्मा का बाहर निकलना बेहद दर्दनाक होता है। गरुड़ पुराण कहता है कि पापी की आत्मा को कान, नाक, आंखें आदि जिस भी छेद से घसीटना पड़े ये दूत बलपूर्वक खींचते हैं और उस दौरान आत्मा चिल्लाती हुई शरीर से अलग की जाती है। वो आत्मा अपने ही पुराने शरीर को अंतिम बार व्याकुल नजरों से देखती है जब यमदूत उसे दूर ले जाने लगते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं आत्मा किस अंग या छिद्र से शरीर छोड़ती है। ये सवाल बड़ा रोचक है। आत्मा आखिर शरीर से निकलती कहाँ से है? हमारे शरीर में कुल 9 प्रमुख द्वार या छिद्र माने गए हैं। 2 आँखें, 2 कान, 2 नथुने, 1 मुंह, ये 7 ऊपरी द्वार हुए और 2 निचले द्वार, मल द्वार, गुदा और मूत्रेंद्रियो जननेन्द्रिया। कुछ मतों में सिर के ऊपर सहस्रार या ब्रह्म रंध्र को 10वां द्वार भी कहा गया है, पर शास्त्रों में प्रायः 9 द्वार की ही बात आती है। आत्मा इन द्वारों में से किसी एक से निकल सकती है, मगर कौन से छिद्र से निकलेगी ये निर्भर करता है मरने वाले के कर्मों पर। गरुड़ पुराण का मत स्पष्ट है, यदि आत्मा पुण्यात्मा है, अच्छे कर्मों वाली है, तो वो शरीर के ऊपरी ऊर्ध्व द्वारों से प्रस्थान करेगी और यदि पापी है तो निचले छिद्रों से। पुण्यवान लोगों की आत्मा प्रायः सिर के ऊपर स्थित द्वार ब्रह्मरंध्र या मुंह आंख नाक जैसे ऊर्ध्व छिद्रों से निकलती है। इसे शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ है आत्मा की गति ऊपर ऊर्ध्व लोकों की ओर होगी, दिव्य मार्ग देवयान से जाएगी। विशेषकर जो आध्यात्मिक साधना में पारंगत हैं, योगी हैं या परमात्म भक्त हैं, उनके सहस्रार से आत्मा निकलकर परम लोक की ओर जाती है। माना जाता है कि यह मुक्ति का मार्ग है। इसके विपरीत पापी आत्माएं प्राण छोड़ती हैं तो निम्न द्वार से उनका जीवन निकलता है। गरुड़ पुराण कहता है कि पापी के प्राण मल मूत्र के रास्ते नीचे निकल जाते हैं। आत्मा अगर गुदा द्वार या जननेन्द्रिय जैसे निचले छिद्र से निकले तो इसे अत्यंत अशुभ माना जाता है। ये दर्शाता है कि आत्मा अधोगति नीचे लोकों की ओर जा रही है। ऐसे प्राणी की आत्मा मर कर सीधे यमलोक, प्रेतलोक या नरकों की ओर जाएगी। साफ शब्दों में ऊपरी द्वार से आत्मा का निकलना पुण्य का फल है और निचले द्वार से निकलना पाप का फल। यही कारण है कि हमारे शास्त्र मृत्यु के समय भगवान के नाम स्मरण, गंगा जल, तुलसी दल आदि देने को कहते हैं, ताकि अंत समय शुभ हो और आत्मा ऊर्ध्व मार्ग से शांति पूर्वक निकले। अब खास तौर पर अगर स्त्री की बात करें, स्त्री की आत्मा भी यही नियम मानकर शरीर से निकलती है। पुण्यवती स्त्री जिसकी जिंदगी धर्म पूर्ण रही हो, सेवा, सत्य, संयम से भरी, उसकी आत्मा ऊपरी छिद्र, मस्तक, नेत्र, नासिका या मुख में से किसी से प्रस्थान करेगी। कुछ ग्रंथों में कहा गया है कि ऐसी आत्मा के निकलते वक्त चेहरे पर एक शांत चमक दिखाई देती है, शरीर बिना ज्यादा तड़पे शांत हो जाता है। दूसरी ओर पापिनी स्त्री जिसने जीवन भर अधर्म, अत्याचार, अनैतिक कर्म किए हों, उसकी आत्मा अक्सर नीचे वाले रंध्रों से बाहर जाती है, जैसे गुप्तांग या गुदा मार्ग से। ये उसके भारी पापों का संकेत है कि मृत्यु भी कष्टदायी हुई और आत्मा अधोलोक को चली। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है, पापी के प्राण नीचे के द्वार से निकलते हैं। मतलब यही कि स्त्री हो या पुरुष, पाप पुण्य के अनुसार आत्मा के निकलने का मार्ग तय होता है। मृत्यु के बाद आत्मा की गति कैसी होती है? शरीर छूटने के बाद आत्मा की असली यात्रा शुरू होती है। अब आत्मा अकेली है, न कोई रिश्तेदार साथ जाता है, न दौलत, न शरीर, केवल उसके अच्छे बुरे कर्म साथ हैं, जिनके आधार पर उसे आगे का मार्ग मिलता है। हिंदू धर्म में 2 मुख्य मार्गों का वर्णन मिलता है, देवयान, देवों का मार्ग, और पितृयान, पितरों का मार्ग। इसका मतलब सरल भाषा में, जो आत्माएं आध्यात्मिक रूप से उन्नत हैं, जिनका जीवन पवित्र रहा, वे देवलोक या ईश्वर के धाम की ओर जाने वाले मार्ग पर चलती हैं, और बाकी आम आत्माएं पितृलोक या यमलोक जाने वाले मार्ग से गुजरती हैं, जहां उनके कर्मों का फल नरक या स्वर्ग निर्धारित होता है। यमलोक की यात्रा पितृयान मार्ग। अधिकांश आत्माओं को मृत्यु के बाद यमदूत यमराज की सभा यमपुरी में ले जाते हैं। जैसा हमने देखा, पापियों को क्रूर यमदूत घसीटते हुए ले जाते हैं। ये यात्रा गरुड़ पुराण में काफी लंबी बताई गई है, लगभग 86,000 योजन, यानी बहुत लंबा रास्ता पार कर आत्मा यमराज के शहर पहुँचती है। रास्ते में 16 भयानक नगर आते हैं, जहाँ आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग कष्ट और मनोव्यथा झेलती है। जब हम उदाहरण के लिए कहीं तपती रेत की सड़क है जहाँ प्यास से व्याकुल आत्मा नंगे पैर दौड़ती है, तो कहीं आग के जंगल की लपटें हैं, कहीं बर्फ जैसी ठंड। एक भयानक नदी आती है, वैतरणी नदी, जो रक्त, पीप और गंदगी से भरी है, जिसमें मगरमच्छ, सांप जैसे जीव हैं। जिसने जीवन में गोदान किया हो या पुण्य किए हो, उसे इस वैतरणी को पार कराने नाव या गाय की पूंछ मिल जाती है, पर जो पापी हो वो इसमें डूबकर यातना पाता हुआ पार होता है। आत्मा को प्रत्येक क्षण एहसास होता चलता है कि उसने जीवन में क्या पाप किए। यमदूत रास्ते भर उसे कोड़े मारते हैं, धक्के देते हैं और डराते हैं। आत्मा भूखी प्यासी थकी हुई बेबस सी आगे बढ़ती है। उसे अपने परिवार की याद सताती है, पर अब पछतावा करने के सिवा कुछ नहीं कर सकती। लगभग 47 दिन या कुछ हफ्तों का समय इस यात्रा में लग जाता है। भिन्न ग्रंथों में अलग वर्णन है। अंत में यमपुरी, यमराज की नगरी आ जाती है, जहां यमराज को दक्षिण दिशा का फाटक पापी आत्माओं के लिए खोलने को कहा जाता है। गरुड़ पुराण कहता है कि यमपुरी के चार द्वार हैं, पूर्व, उत्तर, पश्चिम और दक्षिणा। दक्षिण द्वार से वे आत्माएं लाई जाती हैं जिन्होंने जीवन भर पाप और अधर्म किए यमराज के दरबार में पेश होने के लिए। वहां चित्रगुप्त उनके कर्मों का लेखा पढ़कर सुनाते हैं और यमराज उनके दंड या पुरस्कार का फैसला करते हैं। फिर उन आत्माओं को उनके कर्म अनुसार नरक भेजा जाता है, या कुछ को थोड़े बहुत पुण्य हो तो कहीं अल्प सुख भोगने स्वर्ग में भी भेज सकते हैं। लेकिन स्वर्ग नरक का समय खत्म होने के बाद ज्यादातर आत्माओं को फिर से पृथ्वी लोक में जन्म लेना पड़ता है। ये संसार चक्र यूं ही चलता रहता है। देवयान मार्ग ऊर्ध्वगमन। अब प्रश्न आता है कि क्या सबको यमदूत ही लेने आते हैं? नहीं, भक्ति और पुण्य के बल पर कुछ आत्माओं के लिए रास्ता थोड़ा भिन्न हो सकता है। यदि स्त्री ने अपना जीवन बड़े सत्कर्मों में लगाया, ईश्वर भक्ति की या योग साधना द्वारा आत्मोन्नति की, तो मरते समय माहौल फर्क होगा। गरुड़ पुराण कहता है कि ऐसी धन्य आत्मा की मृत्यु शांत होती है, अंतिम सांसें भी आसानी से निकलती हैं, चेहरे पर तेज होता है, आसपास परिवार जनों द्वारा राम नाम भगवान की बातें की जाती हैं, गंगा जल तुलसी दल दिया जाता है जिससे उसकी आत्मा को संबल मिलता है। सबसे बड़ी बात, उस आत्मा को यमदूत जबरदस्ती घसीटने नहीं आते, उसके बदले दिव्य दूत या देवदूत आते हैं जो बड़े आदर से आत्मा को साथ लेते हैं। ऐसी आत्मा शरीर छोड़ती है तो प्रायः सिर के ऊपर या अन्य ऊर्ध्व द्वार से निकलती है, जो बताता है कि इस जीव ने जीवन पवित्र जिया। देवदूत आत्मा को सम्मान पूर्वक यमपुरी के दक्षिण द्वार से नहीं बल्कि अन्य द्वारों, पूर्व या उत्तर से अंदर ले जाते हैं। इसका फल यह होता है कि यमराज की सभा में भी उसके साथ कठोरता नहीं होती बल्कि गरिमा के साथ पेशी होती है। कई बार कहा जाता है कि
2: मेरे प्यारे सुनने वालों, ये कथा को मैं यहाँ पर थोड़ा विश्राम दे रही हूँ।
3: Adverteer nu bij VAHON Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: मन्ना दे जी के आवाज में ये सुंदर सा गीत तेरी कर्म कहानी, ये आप ही जानते हैं और परमात्मा जी जानते हैं। जैसे हमने अभी कथा में सुन रहे थे और पंडित जी बता रहे कि हमारा सूक्ष्म शरीर जो है वो सब पर नोट करता है कि हम क्या करते हैं। एन सेख ओक बाई देस यू एख खवेतन इस यू रेख्तर। जो कथा का हमने विश्राम दी थी यहाँ से हम आपके लिए
1: जन्म लेना पड़ता है। ये संसार चक्र यूं ही चलता रहता है, देवयान मार्ग ऊर्ध्वगमन। अब प्रश्न आता है कि क्या सबको यमदूत ही लेने आते हैं? नहीं, भक्ति और पुण्य के बल पर कुछ आत्माओं के लिए रास्ता थोड़ा भिन्न हो सकता है। यदि स्त्री ने अपना जीवन बड़े सत्कर्मों में लगाया, ईश्वर भक्ति की या योग साधना द्वारा आत्मोन्नति की, तो मरते समय माहौल फर्क होगा। गरुड़ पुराण कहता है कि ऐसी धन्य आत्मा की मृत्यु शांत होती है, अंतिम सांसें भी आसान से निकलती हैं, चेहरे पर तेज होता है, आसपास परिवार जनों द्वारा राम नाम भगवान की बातें की जाती हैं, गंगा जल तुलसी दल दिया जाता है जिससे उसकी आत्मा को संबल मिलता है। सबसे बड़ी बात, उस आत्मा को यमदूत जबरदस्ती घसीटने नहीं आते, उसके बदले दिव्य दूत या देवदूत आते हैं जो बड़े आदर से आत्मा को साथ लेते हैं। ऐसी आत्मा शरीर छोड़ती है तो प्रायः सिर के ऊपर या अन्य ऊर्ध्व द्वार से निकलती है, जो बताता है कि इस जीव ने जीवन पवित्र जिया। देवदूत आत्मा को सम्मान पूर्वक यमपुरी के दक्षिण द्वार से नहीं बल्कि अन्य द्वारों पूर्व या उत्तर से अंदर ले जाते हैं। इसका फल यह होता है कि यमराज की सभा में भी उसके साथ कठोरता नहीं होती बल्कि गरिमा के साथ पेशी होती है। कई बार कहा जाता है कि ऐसे धर्मात्मा को यमलोक में भी नहीं रुकना पड़ता, सीधे इंद्र आदि देवताओं के लोक स्वर्ग में स्थान मिलता है। कुछ श्रेष्ठ आत्माएं जिन्होंने ईश्वर की अनन्य भक्ति की हो, वे देह छोड़कर सीधे परम धाम चली जाती हैं। जैसे विष्णु भक्तों के लिए कहते हैं कि विष्णु दूत आते हैं और उस आत्मा को बैकुंठ ले जाते हैं, फिर यमराज के दूत तो पास भी नहीं भटकते। अग्नि पुराण में भी कहा गया है कि पुण्य आत्माओं को मृत्यु के बाद ऐसे मार्ग से ले जाया जाता है जहां कोई कष्ट नहीं होता, जबकि पापियों को कष्टदायक रास्ते से यमलोक ले जाया जाता है। कुल मिलाकर जैसे कर्म वैसा फल, मरने के बाद आत्मा या तो देवयान प्रकाश मार्ग पकड़ती है या पितृयान धूम्र मार्ग पकड़कर न्याय के लिए यमराज की ओर जाती है।
2: दोस्तों, अब हम आते हैं उस हिस्से पर जिसका जिक्र सुनकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। पाप कर्मों के आधार पर अगले जन्म की योनियां। गरुड़ पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में विस्तार से बताया गया है कि कौन से पाप के फल स्वरूप आत्मा को अगले जन्म में किस योनि से जानवर आदि में जन्म लेना पड़ता है। खासकर स्त्रियों के संदर्भ में कुछ पाप ऐसे बताए गए हैं जिनसे उन्हें बड़ी ही नीच योनियों में जाना पड़ सकता है। आइए कुछ उदाहरण कहानी की तरह समझें। पति से बेवफाई या पर पुरुष गमन, व्यभिचार। यदि किसी स्त्री ने अपने पति को धोखा दिया, पर पुरुष के साथ संबंध बनाए या उल्टा आचरण किया तो शास्त्रों में उसका फल भयंकर बताया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक कथा आती है जिसमें ऐसी स्त्री मरने के बाद लंबे समय तक नर्क में सड़ती है और फिर लाखों बार गिद्ध बनकर जन्म लेती है। सैकड़ों वर्षों तक सुअरनी से मादा सुअर की योनि में रहती है और सैकड़ों जन्म तक जंगली हिंसक जानवर बनती है। देखिए, एक पति को त्यागने या व्यभिचार करने का कितना भयानक परिणाम बताया है। पहले असंख्य नरक यातनाएं, फिर गिद्ध सुअर हिंसक जानवर बनना। अंत में कहा गया है कि यदि कभी वो स्त्री फिर मानव रूप में आती भी है तो विधवा दरिद्र और रोगिणी बनकर जन्म लेगी। गरुड़ पुराण में भी कहा है कि जो पुरुष पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करते हैं उन्हें अगले जन्मों में भयानक राक्षस योनि भुगतनी पड़ती है। विशेषकर यदि वो स्त्री किसी ब्राह्मण या पूज्य कुल की थी तो वो पिशाच ब्रह्म राक्षस बनकर भटकते हैं। एक जगह ये भी वर्णन है कि पराई स्त्री से संबंध रखने वाला अगले जन्म में सियार होता है। अब स्त्री ने खुद अपने शरीर को पाप कर्म में लगाया तो उसे भी उस पाप का फल समान ही मिलता है। यानी ऐसी पापिनी स्त्री भी मरकर आत्मा के रूप में प्रेत योनि में भटकती है और फिर कुतिया सियारन जैसी नीच योनि में जन्म लेती है जहाँ जीवन भर उसे तृष्णा और तिरस्कार ही मिलता है। गर्भपात या गर्भ की हत्या। हमारे धर्म ग्रंथों में गर्भ गर्भपात को एक बहुत बड़ा पाप माना गया है, क्योंकि ये सीधे एक अनजान जीव की हत्या है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में यमराज कहते हैं, जो व्यक्ति गर्भ में पल रहे शिशु का नाश करते हैं, उन्हें मृत्यु के बाद सीधे कुंभी पाक नरक में डाला जाता है। कुंभी पाक वो नरक है जहाँ उबलते तेल की कड़ाहियों में आत्मा को उबाला जाता है। वहाँ इस पापी आत्मा को अत्यंत लंबे समय तक, 14 इंद्रों की आयु जितने समय तक यंत्रणा भोगनी पड़ती है। गरुड़ पुराण के अनुसार भी गर्भ हत्या महापाप है, जो लगभग ब्रह्म हत्या के बराबर दंड का भागी बनाती है। नरक यातना के बाद ऐसी आत्मा का छुटकारा नहीं होता, उसे बहुत से नीच जन्मों से गुजरना होता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में विवरण मिलता है कि गर्भपात करने वाले अगले 100 जन्म तक सुअर की योनि में जन्म लेते हैं, फिर 7 जन्म तक गाय की योनि में, 7 जन्म तक सर्प की योनि में, फिर 60,000 वर्षों तक कीड़े मकोड़े बनकर गंदगी में पैदा होते हैं।
3: यह क्रम सुनकर ही रूह कांप जाती है। सुअर जैसी तुच्छ और गंदी समझी जाने वाली योनि, फिर नाग जैसे डरावने जीव और न जाने क्या क्या। अंततः ऐसे पापी को इंसान की देह भी मिलती है तो भयंकर रोगों से ग्रस्त निर्धन निश्चित अपरिवारिक जीवन मिलता है। इसलिए हिंदू धर्म में गर्भपात को कदापि उचित नहीं माना गया। कहा गया है कि माँ के गर्भ में बच्चे की हत्या सीधे घोर नरक का द्वार खोलती है। चोरी और छल कपट, अगर स्त्री चोरी चकारी करती है, धोखे से दूसरों की वस्तु चुराती है, तो उसके अनुसार भी अगले जन्म में दंड भुगतना पड़ता है। गरुड़ पुराण विभिन्न तरह की चोरी पर अलग अलग योनि की बात बताता है। जैसे जो अनाज चुराता है वो अगले जन्म में चूहा बनता है, जो वाहन चुराता है वो ऊंट बनता है, फल चोरी करने वाला बंदर बनता है, बर्तन चुराने वाला गिद्ध या कौवा बनता है, जिसने गाय चुराई हो वो भी गिद्ध जैसा पक्षी बनता है, क्योंकि गाय जैसा पवित्र प्राणी चुराना महापाप है। जो कपड़े चुराता है वो अगले जन्म में कीट बनता है। गरुड़ पुराण में कहा है, कपड़ा चोर पतंगा होता है। महिलाओं से जुड़ी एक बात ये भी आती है कि जो स्त्री दूसरी स्त्रियों के गहने या कपड़े चुराती है, उसे कुष्ठ रोग तक हो सकता है, यानी मानव जन्म मिला भी तो अपंग अवस्था में। कुल मिलाकर चोरी का परिणाम भी कभी पशु योनि तो कभी भयंकर बीमारी के रूप में मिलता है। यही कारण है कि बचपन से हमें सिखाया जाता है, चोरी सबसे घिनौनी आदतों में है, इसका पाप जीवन भर पीछा करता है।
4: निंदा, परनिंदा और असत्य भाषण। अक्सर लोग सोचते हैं कि जुबान के पाप शायद उतने बड़े नहीं होते, लेकिन पुराण कहते हैं कि दूसरों की निंदा या बेहुदा बातें करने का फल भी कष्टदायक जन्मों में मिलता है। जो लोग दूसरों को बेवजह बदनाम करते हैं, सत्यनिष्ठ भले लोगों की बुराई करते हैं, अगले जन्म में उन्हें नीच योनि या अपंगता झेलनी पड़ती है। उदाहरण के लिए गरुड़ पुराण में आता है, जो व्यक्ति पापपूर्ण आचरण करके लोक में बदनामी कमाता है, वो अगले जन्म में कछुआ बनता है। इसे आप यूं समझिए कि जिसने जीवन में कुचर्चा, कलंक और कलह फैलाए, उसका अगला जन्म ऐसी योनि में होगा जो अधोगति का प्रतीक है। कछुए का जीवन जल मिट्टी में गुजरता है, बहुत धीमा और तुच्छ समझा जाता है। इसी प्रकार अत्यधिक ईर्ष्यालु प्रवृत्ति भी अगले जन्म को खराब करती है। कहा गया है, ईर्ष्यालु व्यक्ति अंधा पैदा होता है या मधुमक्खी जैसा कीट बनता है जो केवल डंक मारना जानता है। लगातार झूठ बोलने वाले की अगले जन्म में जुबान काम नहीं करती, वो गूंगा या हकला पैदा होता है। जिन महिलाओं को दूसरों की खुशियों को देखकर जलन होती है और वे चुगली निंदा में लिप्त रहती हैं, वे अगले जन्म में संभवतः उसी तरह किसी तुच्छ जानवर जैसे कौवा या चील की योनि में जाएंगी, जो हमेशा मल में मुंह मारते हैं। शास्त्रों में गिद्ध कौवे को अक्सर नीच कर्मों का फल बताया गया है। गरुड़ पुराण तो पापों की पूरी सूची देता है। कुछ का जिक्र पुरुषों के संदर्भ में है, पर स्त्रियां भी वही कर्म करें तो परिणाम समान ही रहते हैं। जैसे गुरु की हत्या करने वाला मिर्गी का रोगी होकर जन्मता है, निर्दोष जीवों पर अत्याचार करने वाला बौना बनता है, जो अपने पति या परिवार को छोड़कर दूसरों से अवैध संबंध बनाए, उसका अगला जन्म ऐसा पशु होगा जिसे शिकारी मार डालेंगे, यानी उसकी जिंदगी बहुत छोटी और कष्टपूर्ण होगी।
5: जो अपने पति की हत्या कर दे या उस पर अत्याचार करे, ऐसी स्त्री को अगले जन्म में पति का सुख नसीब नहीं होता, वो जन्म जन्मांतर तक अकेली रहकर दुख भोगती है। ब्रह्म हत्या, किसी ब्राह्मण या संत की हत्या का पाप तो सबसे भारी है। ऐसे पापी को कई जन्मों तक घोर नरकों में जलने के बाद ऊंट,
6: सुअर घोड़ा जैसे पशुओं की योनि में भटकना पड़ता है। गौ हत्या का पाप भी अनंत नरक भोगने के बाद सर्प और अन्य जहरीले जीव बनकर भुगतना पड़ता है। यहाँ तक कि जो लोग माता पिता या अतिथियों का अपमान करते हैं वे अगले जन्म में बहरे अंधे कुबड़े जैसे अंगहीन शरीर लेकर पैदा होते हैं और भगवान की निंदा या शिव आदि देवों का अपमान करने वाले अगले जन्म में गुप्त रोग त्वचा रोग जैसे दुख झेलते हैं। स्पष्ट है हर छोटे बड़े पाप का फल किसी न किसी योनिगत दुर्गति या मानव जन्म में भारी कष्ट के रूप में मिलता ही है। इन सब कथाओं का सार यही है कि कर्म का सिद्धांत अटल है। स्त्री हो या पुरुष जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल उसे मरने के बाद और अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। ये पुराणों में बताए विवरण कभी कभी हमें डराने के लिए भी होते हैं ताकि हम अनुचित कर्मों से दूर रहें। आखिर गरुड़ पुराण स्वयं एक दर्पण की तरह है जिसमें हमारे कर्मों का परिणाम दिखाकर हमें सचेत किया जाता है। मृत्यु जीवन का अंत नहीं बल्कि आत्मा की एक यात्रा का पड़ाव है। आत्मा अमर है पर अच्छे बुरे कर्मों की गठरी उसके साथ चलती है। इसलिए हर स्त्री पुरुष को चाहिए कि जीवन में सदाचार सत्य प्रेम और धर्म के मार्ग पर चले। ऐसा करने से न सिर्फ मौत के वक्त कम कष्ट होगा बल्कि आत्मा उज्जवल मार्ग से जाएगी और हो सकता है पुनर्जन्म के बंधन से भी मुक्त हो जाए। अगर भूलवश पाप हो भी जाएं, तो शास्त्र प्रायश्चित और सुधार का मार्ग बताते हैं। ईश्वर भक्ति दान पुण्य सेवा और पश्चाताप से कर्मों का बोझ हल्का किया जा सकता है। आखिर में हिंदू धर्म ग्रंथ हमें यही सिखाते हैं कि जीवन एक अनमोल अवसर है आत्मा के विकास का। मृत्यु अटल सत्य है लेकिन वो अंत नहीं एक नई शुरुआत है। इस शुरुआत को सुखद या दुखद बनाना हमारे हाथ में है। हमारे कर्म ही तय करेंगे कि मरने के बाद यमदूत हमारा हाथ पकड़ेंगे या विष्णुदूत। हम नरक के अंधकारमय रास्ते पर जाएंगे या देवों की ज्योतिर्मय राह पर। इसलिए ऐसी कथाएं सुनकर डरे नहीं बल्कि सबक लें। जीवन को इस तरह जिए कि अंत समय शांतिमय हो ताकि जब हमारी आत्मा देह त्यागे तो चेहरे पर मुस्कान हो, हृदय में भगवान का नाम और मार्ग दिखाने को दिव्य ज्योति हो। यही इन पुराण कथाओं का संदेश है। तो दोस्तों इस प्रकार से गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद के आत्मा के सफर के विषय में बताया है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो

बात तो सही है कि नेकी तेरा साथ चलेगी बाबा। और ये सुना दी हमको आज के प्रोग्राम में महेंद्र कपूर जी। महेंद्र कपूर जी की आवाज में नेकी तेरा साथ चलेगी। फिल्म का नाम आप जरूर जानना चाहते हो तो मैं बता देती हूँ, फिल्म का नाम आंसू और मुस्कान। और हम देख रहे हैं ये फिल्म नई कंतीन सैफ अंतक में रिलीज किया गया है। आपको लेकर चलते हैं देखे तो एक बार फिर महेंद्र कपूर जी के आवाज में और क्या फरमा रहे, जरा हम मिलकर सुने।

अवश्य अवश्य महेंद्र कपूर जी ने फरमा दी है कि क्यों करता है हेरा फेरी, ये दौलत ना आपके है ना मेरी है, ये दौलत हमको कमाना पड़ता है, ये जीवन सफल बनाने के लिए, अपना उद्धार करने के लिए, अपना उद्धार करने के लिए औरों को काम आने के लिए।

कहते कि आज से बेहतर कुछ भी नहीं, आज से बेहतर कुछ भी नहीं, क्योंकि कल कभी आता नहीं और आज ये पल कभी जाता नहीं।

ज़िंदगी जो मिले है इसे खुल कर जियो, क्योंकि ना वक्त दोबारा आता है और ना ये जीवन दोबारा मिलता है।

राम नाम जो जोड़ ले वही जाता है। हम तो क्या कहे, ये शब्द ये गीत ये भजन निर्गुण भजन जो है, चेतावनी वाला भजन जो है, हमें याद दिलाता है किस काम के लिए हम इस धरती पे आए हैं, इस मृत्यु लोक में हम आए हैं। इसलिए फावन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से ये हमको चेतावनी दिला देते हैं, हमारे दिमाग को झकझोड़ देते हैं, जगा देते हैं, समझाते हैं कि हम किस लिए आए हैं इस मृत्यु लोक पर, हमारा कर्म क्या है, हमारा धर्म क्या है, हम लाए हैं क्या और ले जाएंगे क्या। इस पर हम जरा गौर करें। देने सुनने के लिए आपको दिल से धन्यवाद किया जाता है।

अल्फा आंदरन का एक छोटा सा समाचार है। मेर दर पोलिट सिवा खंस नार इंडस्ट्री ट्रेन नार मेल्डिंग स्कित पड़ते हैं। अल्फा आंदरन के समाचार है। ओप अन इंडस्ट्री ट्रेन इन अल्फा आंदरन इस दिनसदाग आवंद मोगलिक गस्कोटन। Niemand raakte daarbij, gewoon de politie rukte met meerdere wagens uit.

सुबह का वक्त कभी कभी ऐसा होता है कि थकान के कारण हम जल्दी जाग नहीं पाते, तो जैसे हमें 7 बजे नौकरी पे जाना है या प्लुखदिनस्त फर्शकेलेंद दिनस्त है एसर, और हम जल्दी से नहीं जाग पाते हैं तो हम जल्दबाजी में घर से निकलते हैं। Ik zeg mijn mening, als u laat bent, dan bent u laat. Ga dan toch voorzichtig op pad. Want als u gaat haasten, kan ongelukken gebeuren.

0: जी मेरे प्यारे सुनने वालों, जिनका इंतज़ार था वो आ गया है। तो यहाँ से श्री पंडित राजकुमार महातम जी को हम बहुत प्यार के साथ स्वागत कहती हूँ। पंडित जी आपको नमस्कार है और आपको हार्दिक से स्वागत है, आप आकाश में हैं।
1: नमस्कार, धन्यवाद शांता जी।
0: जी पंडित जी,
1: हरि ओम नमः संभवाय च मय भवाय च नमः शंकराय च नमः स्वासित्राय च मोक्ष स्वरूप ईश्वर को नमस्कार। संसार सुख देने वाले प्रभु को नमस्कार। आनंद देने वाले प्रभु को नमस्कार। कल्याणकारक ईश्वर को नमस्कार। ईश्वर को बारंबार हमारा नमस्कार हो। सर्वप्रथम आकाशवाणी के सुनने जहाँ तक हमारा आज पहुँचे आप सभी को जाके थाविक मेरा प्रणाम नमस्कार या राम राम सीताराम पहुँचे। हम आप कितने आनंद ले रहे थे, जहाँ पर संता जी ने कितने अच्छे ढंग से हम आपको सेवा कर रहे थे, उनको मैं भूरी धन्यवाद दे रहा हूँ। और ख़ास करके रेडियो फान को जो मालिक हैं, जो समय दिया धर प्रचार करने को, उनको भी मैं भूरी धन्यवाद दे रहा हूँ। आकाशवाणी के सुनल जैसा आपके वृत्त मालूम है, इस समय सावन को महीना चल रहा, सावन का महीना, सावन मास हम कहते हैं, सावन को महीना। खास करके भोलेनाथ शंकर बाबा को हम आप इसमें बहुत ध्यान करते हैं, उनको पूजा करते, कुछ कुछ अर्पण भी करते हैं ना। चलो थोड़ा कुछ भोलेनाथ शंकर बाबा के बारे में विचार किया जाए। भोलेनाथ शंकर बाबा देव का देव, भंडारों को भंडार भरने वाले हैं। आप जो वस्तु मांगते हैं भोलेनाथ शंकर बाबा, कोई भक्त निराशन यानी निराश नहीं करते हैं। भस्मासुर के नाम आप सुने होंगे, गाथा जानते होंगे। भस्मासुर ने भोलेनाथ शंकर बाबा खुश किया। भोलेनाथ शंकर बाबा कहे मांग लो, क्या मांगना है। तो भस्मासुर ने कहा भोलेनाथ शंकर बाबा से, हमें वो शक्ति दो जिनको ऊपर मैं अपने हाथ रखूं उनके सिर पर वो भस्म हो जाए। भोलेनाथ शंकर बाबा उन्हें आशीर्वाद दे देते हैं आकाशवाणी के सुनने वालों। लेकिन भस्मासुर ने विचार किया, पहले मैं जा करके भोलेनाथ शंकर बाबा का भस्म करूँगा। तो क्या होते आकाशवाणी के सुनने वाले, भस्मासुर जो है भोलेनाथ शंकर बाबा पीछे दौड़ते हैं और भोलेनाथ शंकर बाबा वहां से दौड़ते हैं। कौन? भोलेनाथ शंकर बाबा। लेकिन भोलेनाथ शंकर बाबा क्या करते आकाशवाणी के सुनने वाले, उत्तर देवा का देव भंडारों को भंडार भंडवा भोलेनाथ शंकर बाबा एक मोहनी को रूप धारण किया। एक मोहनी को रूप धारण करके नाचने लगा और भस्मासुर नाच देख कर करके ना मोहित हो गए, तन मन सुदबुद सब खो गए। कौन वहां पर? कौन? भस्मासुर। तो भोलेनाथ शंकर बाबा मोहनी रूप धारण करके अपना अपना जो हाथ अपने सिर पर धर के नाचते थे भोलेनाथ शंकर बाबा, और वो नाच देख करके कौन भस्मासुर ने तो मोहित हो गए। तो भस्मासुर ने खुद अपना हाथ अपने सिर पर रखे, क्या हो गया? भस्म हो गए। कहने के तात ये है, हम वहाँ कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं ना, तो हम सोचते हैं बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन परमात्मा का आगे हमें अपना सिर झुकाना है। हम कुछ प्राप्त करते भोलेनाथ शंकर बाबा को तो हमें धन्यवाद उनको कहना चाहिए ना। आकाशवाणी के सुने हम आगे बढ़ते हैं। जीवन में सफलता के लिए सबसे आवश्यकता वस्तु उसका आत्मविश्वास है। जब तुम ईश्वर के इस नाम में पूर्ण विश्वास होगा, तभी तुम इस नाम के पीछे छिपे हुए पर ब्रह्म तक पहुंच सकोगे। जब तुम इस पे ध्यान करना, उपमा देता हूं मैं ना, जब तुम लकड़ी के दो लकड़ी को रगड़ोगे ना, तो वहां से अग्नि उत्पन्न होती है। जब तुम दही को मंथन करते हो, तभी उससे मक्खन निकलता है ना। जब तुम इस सृष्टि के छिपे हुए रहस्य और भेदों को जानने का प्रयत्न करोगे, तब तुम्हें ज्ञात होगा कि राम का मधुर नाम स्वयं ही तत्व है। व्यक्ति को चाहिए कि अपने हृदय को मधुर और कोमल बनाना निरंतर हरि नाम सुमरण से ही संभव है। इसके लिए अन्य कोई उपाय नहीं है। राम नाम संकीर्तन के लिए किसी मार्ग को अपनाया जा। फिर से बात दोहरा रहा आकाशवाणी, राम नाम संकीर्तन के लिए किस मार्ग को अपनाना चाहिए इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम आप प्रेम पूर्वक हृदय से प्रभु को नाम जपेंगे तो आपको पूर्ण पावन दिव्य स्वरूप मधुर प्रभु के दर्शन अवश्य होगा। परमात्मा हम वहां भी जानते आकाशवाणी के सुने वालो, परमात्मा सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान और कण कण में रमने वाले हैं। ऐसा कोई स्थल नहीं जहां ईश्वर ना हो। अत राम नाम लेने के लिए किसी विशेष समय अथवा विशेष स्थान खोजने की आवश्यकता नहीं है। जहां भी आप बैठ लो भगवान के ध्यान करो। फिर से बात वेद में दोहरा रहा हूं, ऐसा कोई स्थल नहीं जहां ईश्वर ना हो। अतः राम नाम लेने के लिए किसी विशेष समय अथवा विशेष स्थान खोजने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु का नाम तो कभी भी और कहीं भी लिया जा सकता है। ना आकाशवाणी के स्वर हरि के नाम में जो पावन है, जो दिव्य है, इसके मतलब इसका पता लगाना चाहिए। वेद अनंत है, उनमें अरंग होना असंभव है। इन अनंत वेद भगवान से उपनिषद की उत्पत्ति हुई है ना, इसलिए उन्हें वेदांत की संज्ञा दी गई है। भागवत गीता सभी उपनिषदों का निचोड़ है। ये हमें सुलभ है इसलिए कि हम जीवन में अध्यात्मकता को अपनाए। किंतु लोग तो आज इस पवित्र ग्रंथ को भागवत गीता को क्या समझते, मैं आपके ऊपर छोड़ देते आकाशवाणी के सुने आलो। इस पवित्र नाम के उच्चारण हेतु और उस परम स्थित को प्राप्त करने के लिए गोपिया ने भगवान कृष्ण के नाम प्रकार से उनके प्रार्थना करने लगे। कौन? गोपिया। हरि का पवित्र नाम हो गीता का सार है। इसका उच्चारण और अत्यंत सरल, अत्यंत मधुर और अत्यंत सुलभ है। यदि तुम किसी एकांत स्थल में बैठकर हरि नाम का स्मरण करने लगो तो तुम्हारा हृदय एक अत्यंत आनंद से भर जाएगा। ये मधुर तुम्हें किसी अन्य प्रकार से प्राप्त नहीं हो सकता। नारद, सूरदास, मीरा, सुरबाई की सारी साधना का केंद्र ही प्रभु का मधुर नाम रहा है। रावण वध के इस पे ध्यान करना आकाशवाणी के सुन लालू। रावण वध के उपरांत राम अयोध्या लौट आए ना, राज तिलक के समय उन्होंने लोगों को उपहार बांटने शुरू किया। जैसे हम आप सुरनाम जाते घूमने के लिए ना कुछ तोहफा के रूप में, चिन्ह के रूप में ले जाते देने के लिए परिवार के लिए ना। खाली हाथ हमें कहीं ना जाना चाहिए, कहूँ जाओ तो कुछ ले के भी जाओ। सास लिखाना, खाली हाथ नहीं जाना है। रावण के वध के उपरांत राम अयोध्या लौटाए। राज तिलक के समय उन्होंने लोगों को उपहार बांटना शुरू किया, किंतु उन्होंने हनुमान को कुछ नहीं दिया। सीता ने राम की इस भूल की ओर उनका ध्यान दिलाया। वे बोली, हे नाथ, क्या बोलते हैं? हे नाथ, नाथ का मतलब है जो सब जीवों को, जो सब जीवों का रक्षक वो नाथ है। क्या बोलते? दीना नाथ कौन है? हे नाथ, हनुमान तो कौन बोलते हैं? नाथ, हनुमान तो वानरों के समक्ष है। आपने जो भी काम उन्हें सौंपा, उन्होंने आदर्श रूप में उनका सफल संपद किया है। आप इसे कैसे भूल सकते हो? कौन? सीता मैया कहे प्रभु राम से। राम ने उत्तर दिया, आकाशवाणी के सुन ले। राम ने क्या उत्तर दिया? मेरे पास हनुमान को देने के लिए कोई वस्तु नहीं है। सम्मान जान्य, यानी सामान्य जनों को कोई ना कोई उपहार देकर संतुष्ट किया जा सकता है, किंतु उस हनुमान को जिसके रूम रूम में मेरा नाम बसा हुआ है, भला मैं क्या देकर संतुष्ट करूं? ये सुनकर सीता के मन में एक सुंदर विचार आया, जो आप जानते हैं ना, माँ के सुंदर विचार आया। वे सोचने लगी, इस शुभ अवसर पर हनुमान के मन को चोट नहीं आना चाहिए। अतः उन्होंने अपना अमूल्य रत्नों का हार अपने गले से उतार कर हनुमान को दे दिया। हनुमान ने उसे स्वीकार किया, फिर उसमें से एक मोती तोड़कर निकालता और ध्यान से देखा, फिर भरी सभा में उसे हार को ठुकरा दिया। उपस्थित सभी लोगों ने समझा कि ये तो हनुमान का, ये बानर को तो, ये बानर के तो, ये टूटी भाषा में कहूं, ये बानर को ये तो उनको, मतलब हर बानर जो भी कुछ भोजन करते, कुछ खाते हैं ना, तब पहले फोर करके खाते, कहे ये तो हर बानर को ये काम है। भला वानर से और क्या आशा की जा सकती है? ये देखकर सीता ने हनुमान से कहा, तुमने ऐसा क्यों किया है? हे माँ, हे वानर श्रेष्ठ। हनुमान ने उत्तर दिया, हे माँ, माँ, मेरे शरीर में प्रत्येक रूम में राम राम का निवास है। मेरे शरीर में ऐसा कोई वस्तु नहीं है जिससे निरंतर राम नाम की ध्वनि ना निकलती है। तो मैं इस कंठार को लेकर क्या करूँगा, क्योंकि इसमें तो कहे भी राम का नाम नहीं है। आकाशवाणी के सुनने वालों, ये देख करके हनुमान बाबा उसमें प्रभु राम देखते कहूँ नहीं है, तो जा कर करके कड़ी तोड़ लेते हैं। वहां पर सीता माँ ने कहा, हनुमान लला, आपने क्या किया? तो हनुमान बाबा ने कहा, माँ, हनुमान बाबा ने कहा कि मेरे मन में, मेरे हृदय में है माँ राम। कौन बोलते हैं? हनुमान बाबा। तो जा कर का आकाशवाणी के सुन ले गाथा, आप जानते हनुमान साहब क्या किया? प्रभु के नाम लेकर के अपने दोनों हाथ से पंजा, अपना सिर, अपना जो मतलब दोनों हाथ से लेकर अपना छाती जो बोलते हैं, उसको जा करके दबा करके चीर देते हैं। और वहां पर क्या विराजते हैं? बांवर सीता माँ, दहना, और वहां पर कौन है? प्रभु राम। सब देख करके चकित हो जाते, अपना सिर झुका लेते हैं। तो कहने एक तात हैं, हम वहाँ भगवान को भाव भक्ति जो करे अपने हृदय से, तो ज्यादा ना कहते हुए युवानी द्वारा अपना परसों विराम करने में जा रहा हूँ। हरि ओम। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु रमन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भर। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।

यहाँ से मिलकर हमने श्रवण की है श्री पंडित राजकुमार महात्म जी के मुखारबिंद से सुंदर सा कथा, जो अपना मूल्य वक्त निकाल कर आय कर और सेवा की है। तो फाहन हिंदुस्तानी रेडियो के तरफ से सभी सुनने वालों की तरफ से पंडित राजकुमार महात्म जी को हार्दिक से धन्यवाद किया जाता है। एक शुभ दिन आप सभी को। देने सुनने के लिए धन्यवाद जी। थिंग फॉर हाल ऑफ थिंग हो चला है, थिंग फॉर हाल ऑफ थिंग हो चला है। सुंदर सा इंस्ट्रूमेंटल आपके लिए चुनकर और लाई हूँ।

een boomtak breek af en valt op een rijdende auto met open dakraam. Open dakraam die ze hem bekijkt tegen open kap. Pehle open kap in Suriname me, shadi biwa me, ye sap chalate the, dulha dulhan ko lekar. और यहाँ पर भी ऑटो गाड़ी जो है वो भी बनाया गया है मैथ ओप दाकराम। तो ये गाड़ी हांकने वाला गाड़ी को ऊपर से दाक खोल कर चला रहा था। हाँ, मौसम भी था बढ़िया और अचानक में बोम तक उसका गाड़ी में दाकराम में आ गिरा। ऐसा हाँ हादसा भी हो सकता है, हो जाता है और हो सकता है भी। तो देखो ना, सड़क पर जो हो, जहाँ भी हो, सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। और ज़रूरी है कि आप अपना जो भी आप मानते हो, ईश्वर, अल्लाह, प्रभु, यीशु मती, आप जरूर से हरदम वेद करना, प्रार्थना करना। घर से निकले या घर पे हो, जहाँ पे भी हो, हर पल आपका रक्षा करे। तो एक बड़ा दुर्घटना जो शायद होता होना हो होकर रह बड़ा दुर्घटना से आप बच जाओगे। हाँ, बोम तक ब्रेक अप एंड फॉल्ट ऑफ राइडिंग द ऑटो मेट ओपर दाकराम, ये खरफसांद के समाचार है। तरवेलन ऑटोमोबिलेस मेट एन ओपर दाकराम लंग्स बोम रेड फॉल्ट एर ओपिंस एन तक ऑफ द ऑटो हेट गबेर द फ्राइडाग मिडाग इन द पॉपुलर स्ट्रेट इन खरफसांद। En archeologen in Peru vinden skelet van persoon die mogelijk ritueel geofferd werd. Ha, तो आप सोच सकते हो कि पहले जमाने में लोगों को ritual offer हो जाता था। तो सोचो कौन जमाने के ये आर्कियोलॉजनों ये स्केलेट पाया है।

तो पागल है ये सुंदर सा इंस्ट्रूमेंटल। यहाँ से मिलकर हम सुने काफ़ी दिनों के बाद एक अच्छा सा इंस्ट्रूमेंटल आपके लिए पेश कर रही थी, और यहाँ से आपके लिए एक स्पेशल।

हैप्पी हैप्पी रक्षाबंधन आप सभी को। सात पले और सात बड़े हैं। हाँ भाई बहन, सात पलते हैं, सात बढ़ते हैं। खूब मिला बचपन में प्यार, जी हाँ खूब मिला बचपन में प्यार। इसी प्यार को याद दिलाने आया है राखी का त्योहार। प्यारी बहना, तुम हमेशा प्यार और हंसी से भरपूर रहे, ये एक भाई की प्रार्थना है, दुआ है अपनी बहन की ओर कि प्यारी बहना, तुम हमेशा प्यार और हंसी से भरपूर रहो, ये राखी हमेशा हमारे रिश्ते को और भी मजबूत रखे। ईश्वर करे तुम दुनिया की हर खुशी मिले, ईश्वर करे कि तुम्हें दुनिया की हर खुशी मिले और मिल जाए तेरी जिंदगी का हर पल फूलों की तरह खिल जाए। रक्षाबंधन मैन अली फमेंसर, रक्षाबंधन बतेकंत लेतर लक द बांत फॉम बस कैरमिंग। रक्षा इज बस कैरमिंग एंड बंधन इज बांत ऑफ रेलासी। Het is een belangrijk hindoeïstische feest waarop de liefde, de verbondenheid en de zorg voor elkaar tussen broers en zussen

कितने सुंदर से भोजपुरी भाषा में सुंदर सा रक्षाबंधन गीत सुना दी हमको। रिक्स रिलैक्सिस एतरा की कोर्ट इस फॉल लिफ्ट मैंने लिखा मैं से एतरा की कोर्ट इस फॉल लिफ्ट एंड हैट हार्ट फन अब्रूर इस हैट क्रोच्ड एक बेट एंड वे बेटन दैट यू आल्टेड बै मे ब्लेव एक ड्राग ये एलक यार मैट राखी आन मैन हार्ट De draad van relatie. Een raki-draad is vol zorg, vol liefde. De liefde van een broer is altijd zeldzaam. Ik bid dat we dicht bij elkaar blijven. Dat we dicht bij elkaar blijven in alle tijden. En met elk raki win je mijn liefde. रक्षाबंधन के हार्दिक से बधाई पेश हो रहा है आपका फैन हिंदुस्तानी रेडियो के तरफ से।

सुंदर अति सुंदर ये सुंदर सा रक्षाबंधन गीत आपके लिए पेश हो रहा है। कच्चे धागों से बनी पक्की डोर है जी मेरे प्यारे सुनने वालों कि कच्चे धागों से बंधी पक्की डोर है राखी, प्यार और मीठी शरारतों की डोर है राखी, भाई भाई की लंबी उम्र की दुआ है राखी, बहन के प्यार का पवित्र दुआ है राखी। रक्षाबंधन का त्यौहार है मेरे दोस्तों, रक्षाबंधन का त्यौहार है, हर तरफ खुशियों की बौछार है और बंधा एक रेशम की डोरी में भाई बहन का प्यार है। रक्षाबंधन की आप सभी को हार्दिक से शुभकामनाएं।

दिल से करते हैं शुक्रिया, हाँ तहे दिल से करते हैं शुक्रिया उन प्यारी बहनों को हम, जो पास रहे या ना रहे पर उनका प्यार कभी नहीं होता कम। या रब मेरी दुआओं में इतना असर रहे, फूलों फूला भरा सदा मेरी बहना का घर रहे।

मैं लिफ मेंशन आपको फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के तरफ से रक्षाबंधन के बहुत सारे शुभकामनाएं पेश हो रहा है।

0: Bel per Casco Cool op 00 597 8757 939. In Nederland 06 574 188 73. Amalia Auto Verhuurbedrijf in Suriname.
1: मेरे प्यारे सुनने वालों, आपको फिर से यहाँ से एक बार हार्दिक से स्वागत किया जाता है आपका फाहोन द एनख एक्त फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो पर। बी वेलकम। हैव अ ग्रेट ग्रेट ग्रेट ग्रेट

उमर वागिद हुसैन के आवाज में पेश किया गया है। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे सुनने वालों, आपको यही बताती हूँ और यह भी कहती हूँ कि आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, कोशिश करें जरूर से मुस्कुराते हुए ये पल जो है, ये दिन जो है, इसे बसर करें।

सभी को बहुत सारे बधाइयां पेश किया जाता है। कहते हैं मेरे दोस्त, कहते हैं कि पल पल इंतजार किया उस पल के लिए, ओ माय गॉड, अब वो पल आया भी तो सिर्फ एक पल के लिए। अब हर पल दुआ है उस पल के लिए, अब हर पल दुआ है उस पल के लिए, काश फिर आ जाए वो पल एक पल के लिए। तो आप सुन रहे हैं कि ये पल जो है, ये क्षण जो है, कितना महत्वपूर्ण है। तो इसे जरूर से एक मोय वाला यानी कि एक अच्छा दिशा देना, जाके कल जाकर पल बीतने पर ये एक अच्छा यादगार हो जाए। इस बार हम सुनेंगे शहीद वागिद हुसैन।

हाँ शहीद वागित हुसैन के बाद आपके लिए मैं ला रही हूँ प्लेलिस्ट पे जो तैयार है नदीम खान जी की आवाज में। इस बार हम सुनेंगे, उससे पहले ये बता दे कि मार्क एरन स्ट्रालन द मोमेंट अन ओंसपान द मोमेंट अ ओंसपान द ताखवान खनित वान एल खनित वान द क्लेने देंगन समाकन हैत लेवन ग्रोट्स। Neem de tijd vooral neem de tijd voor jezelf. Je bent belangrijk, ja, want als u er niet bent, dan kunt u wel zelf invullen. Zorg goed voor jezelf. Zorg goed voor uzelf. Geniet, relax. Met heel veel liefde.

महलों ने छीन लिया बचपन का प्यार। इस बार है फिर से आपके लिए है उमर वागित हुसैन, मैं किसे अपना कहूँ।

लता जी के गाए हुए गीत यहाँ सुने उमर वागिद हुसैन की आवाज़ में, और इस बार सुनेंगे कि काश कोई मेरा सहारा होता मुकेश जी के गाए।

हवाले से ताल मिला, कितना सुंदर गीत आपके लिए चला दिया गया है। आपका फावन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से आपके लिए एक सुंदर सा शिव भजन आपके लिए।

वाकई में इश्क के बिना क्या जीना यारो, क्योंकि प्यार के साथ ये सारा सृष्टि रचाई गई है। कल जो आप कर नहीं पाए, जो शुभ कार्य आप कल नहीं कर पाए, तो कोशिश करके उसे आज जरूर पूरा कर लेना। अगर किसी का साथ देना हो तो मेरे दोस्त, अगर किसी का साथ देना हो तो बुरे वक्त में दो। जो वक्त बहुत अच्छा चल नहीं रहा है, उस वक्त में किसी का साथ दे दो। अच्छे वक्त में तो पूरी दुनिया साथ देती है, इसलिए अगर किसी का साथ देना हो तो उनका जो थोड़ा से बुरा वक्त चल रहा है, उनका आप साथ दे दो।

देता वही लेता, उसी का है संसार। एक आता एक जाता, ये जग का है व्यवहार। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा मृत्यु समाचार पुकारा जा रहा है। ध्यान दीजिए या गौर फरमाइए, परिवार के दो मृत्यु समाचार है कार्यक्रम में। Den Haag, Tegelen, Limburg, Leiderdorp और Zeeland से परिवार गंगा और बाकी परिवार बहुत दुख के साथ ये सार्वजनिक सूचना दे रहे हैं कि शुक्रवार 14 अगस्त को शाम 5:30 बजे यानी 7:15 पर 85 साल के आयु में इंदलीफ तहत फन फैफ तख्त यार दो सार चंद्रसेन गंगा और नन कुमार गंगा का बहनोई, कारला गिरधारी का नंदोई, निर्मला गीता प्रवीण और रेखा का फुफ्फा, 17 लड़कों का नाना परनाना और फुफुआ ससुर और ननवा ससुर, लिम्बेरुख तेखलन से सुरेन सुनीता धुरेन मनोज जयदेव आनंद का मौसा, 30 लड़कन यानी दर्त केंद्रन, आजा पर आजा नाना पर नाना मौसवा ससुर अजवा ससुर और ननवा ससुर, बड़की सविता गंगा की छोटकू, लिम्बेरुख से बहन हम लोगों की बहन आनी इंद्रावती सरजमिसिर गंगा के पति, बेटा स्वर्गीय हैंक जयराज का पिता, सेलंत ओ सुबेरख के रहने वाला श्रीमान पुण्य आत्मा कोंद्राज सिंबुदत्त सरजमिसिर का स्वर्गवास हो गया है उनके निवास स्थान पर। आप उन्हें ज्योतिष के नाम से भी जानते थे और सूरीनाम में वेलखलेखन के निवासी था और वेलखलेखन स्कूल का लेरार था। ऐतफात यानी कि शव का दर्शन आप कर सकते हैं हेल्सिवस लंत में ननसन बान कंत वेख्तवेई खुश में। हम दोहराते हैं हेल्सिवस लंत ननसन बान कंत वेख्तवेई खुश में। अर्थी को आप देख सकते हैं 18 अगस्त को 5 बजे से 6 बजे तक सेफंतीन यूर तत्क्वर्त फोरसेस और अगले दिन नेखंतीन अगस्त को हल्फ सेफ से क्वर्त ओफर सेफ तक। हम दोहरा रहे हैं, देखने का अवसर है 18 अगस्त सेफंतीन यूर तत् सेफंतीन 45 यानी 5 यूर से क्वर्त फोरसेस तक और वंसदाख 19 अगस्त को हल्फ सेफ से क्वर्त ओफर सेफ तक। आने वाला दोंदरदाख 20 अगस्त शाम 2 बजे ननसन बान कंत वेख्तवे के क्रेमेटोरियम में दाह क्रिया किया जाएगा खुश में। जानकारी के लिए तार का नंबर दिया गया है 06 22 42 12 31। खबर को हम दोहरा रहे हैं, Den Haag, Tegelen, Limburg, Leiderdorp, Zeeland से समस्त परिवार गंगा और बाकी परिवार बहुत दुख के साथ ये सार्वजनिक सूचना दे रहे हैं कि दो सार चंद्रसेन गंगा और नन कुमार गंगा का बहनोई, कारला गिरधारी का नंदोई, निर्मला

सुर और ननवा ससुर बड़की सविता गंगा के छोटकू आनी इंद्रावती सरजू मिसिर गंगा के पति बेटा स्वर्ग हैंक जयराज का पिता सेईलांत के निवासी और सुबुर के निवासी श्रीमान पुण्य आत्मा कोनराज सिंह बुद्धत का स्वर्गवास हो गया है 85 साल की उम्र में बीते हुए शुक्रवार 14 अगस्त क्वार्टर फॉर फाइव को, जिन्हें आप ज्योतिष के नाम से भी जानते थे और वेलखलीखन में सूरीनाम में उनका निवासी था वहाँ का और वहाँ का स्कूल का लेरार भी था। शव को आप देख सकते हैं हेत सेव सलंत ननसन बान कंत वेख्तवेई खुश में दिनसदाह 18 अगस्त के 17 यूर तत् क्वार्ट फोर सेस और वोसदाह 19 अगस्त को हल्फ सेफ से क्वार्ट ओवर सेफ तक डाकरिया आने वाला दोंदरदाह 20 अगस्त को 14 यूर यानी शाम 2 बजे ननसन बान कंत वेख्तवेई खुश सेलंक में। जानकारी के लिए तार का नंबर दिया गया है 0622 42 31।

0: दूसरा मृत्यु समाचार सुनने के लिए ध्यान दीजिए या गौर फरमाइए।
1: सेलंत हुस ओ सुबेरख से परिवार सरजुमिसर, परिवार सरजुमिसर बहुत दुख के साथ ये सार्वजनिक सूचना दे रहे हैं कि शुक्रवार 14 अगस्त को क्वार्ट ओवर फाइव शाम को 85 साल की उम्र में यानी इंदलीफ सईद फन फैफ तख्त यार दो बेटियां शकुंतला और शर्मिला सरजुमिसर के पिता, दो दामाद राज या राजन रौप कुंदन पांडेय और हेमंत रघुनाथ का ससुर, चार बेटा शोस बोइक अर्नोल्ड रामोन रोमेयो सरजुमिसर का पिता, 20 नाती नातिन पोता पोतिन परनाती परनातिन नदमाद और नतपतो के आजा पर आजा नाना पर नाना अजवा ससुर और ननवा ससुर, तीन बहुएं यानी सोन दोख्तर्स गीता श्यामलाल उषा तुलसी अरुणा अयोध्या का ससुर, पत्नी इंद्रावती सरजुमिसर का पति, स्वर्गीय बेटा हेंक जयराज का पिता, श्रीलंत ओ सुबुर के रहने वाला श्रीमान पुनिया आत्मा कोनराद सिंबुदत्त सरजुमिसर का स्वर्गवास हो गया है उनके निवास स्थान पर। आप उन्हें ज्योतिष के नाम से भी जानते थे और सूर्यनाम वेलखलीखन के निवासी था और वहाँ वेलखलीखन का स्कूल का लेरार था। शव के दर्शन आप कर सकते हैं एथ फार सेंट्रम हेथ सेव सलोंद ननसन बान कंत वेख्तवी खुश में दिनस दख अख्तिन अगस्तस को 17 ईयर से क्वार्थ वर्ड सेस तक और 19 अगस्तस को हालफ सेफ से क्वार्थ ऊफर सेफ तक। डाक्रिया दोंदर दख 20 अगस्तस 14 को शाम 2 बजे वही एड्रेस पर ननसन बान कंत वेख्तवी खुश सेलांत में। खबर को हम दोहरा रहे हैं सेलंत हुस ओ सुबर से समस्त परिवार सरजुमिसर कुंदन पांडेय रघुनाथ श्यामलाल और तुलसी बहुत दुख के साथ ये सार्वजनिक सूचना दे रहे हैं कि फ्राइडा 14 अगस्त को क्वार्ट ओवर फाइव शाम को 85 साल की उम्र में इन द लीफ तहत फन फैफन तख्त यार दो बेटियां शकुंतला शर्मिला के पिता, दो दामाद राजन या राज रौप कुंदन पांडेय

और हेमंत रघुनाथ का ससुर, चार बेटे शॉर्ज या बॉय को भी कह सकते हैं, आर्नोल्ड, रामोन, रोमेओ, सरजू मिसर का पिता, 20 नाती नातिन, पोता पोतिन, परनाती परनातिन, नदमाद और नदपतो का आजा पर आजा, नाना पर नाना, अजवा ससुर और ननुआ ससुर, गीता श्यामलाल, उषा तुलसी, अरुणा अयोध्या का ससुर, पत्नी इंद्रावती सरजू मिसर का पति, स्वर्गीय बेटा हैंक जयराज का पिता, सेलांत और सुबुर के रहने वाला श्रीमान पुण्य आत्मा कोंदरात से मुदत सरजू मिसर का स्वर्गवास हो गया है उनके निवास स्थान पर, आप उन्हें ज्योतिष के नाम से भी जानते थे, और सूरीनाम में वेल्खलेखन के निवासी था, और साथ ही साथ वहाँ वेल्खलेखन का स्कूल का लेरार। शव का दर्शन आप कर सकते हैं अर्थफार्ट सेंट्रम हेत सेव सलंत ननसन बान कंत वेख्तवे खुश में दिनसदाख 18 अगस्तस को 17 यूर तोर क्वार्ट फोर सेस और वनसदाख को 19 अगस्तस को हल्फ सेफ से क्वार्ट ओवर सेफ तक। डाकरिया डोंदरदाख 20 अगस्तस शाम 2 बजे ननसन बान कंत वेख्तवे खुश सेलंत में डाकरिया किया जाएगा। बैठक घर पर नहीं है और जानकारी के लिए तार का नंबर दिया गया है 0622 24 12 31।

सानी राजयोग, सभी परिवार सरजू मिश्र, सभी परिवार रघुनाथ, कुंदन पांडे, तुलसी, श्यामलाल, सरजू मिश्र और गंगा को शोक संवेदना प्रकट कर रहा है। सहन शक्ति के लिए प्रार्थना किया जा रहा है।

द्वारा पावन हिंदुस्तानी रेडियो सभी परिवार को सुख संवेदना प्रदान कर रहा है। फिर धीरज से ले दे सभी सुनने वाले से निवेदन है कि ये खबर को और आगे तक पहुंचा देने को। यहाँ तक था ये मृत्यु समाचार।

दोस्तों, हम रेडियो फाहून के माध्यम से इस प्रोग्राम को प्रस्तुत करते हैं। हमारे पता है न्यूटन स्ट्रैट नंबर 25 और दनहाक शेहम इस वक्त आपको इस प्रोग्राम को सुनाते हैं। दोस्तों, अगर आप रेडियो फाहून के प्रोग्राम सुनते हैं तो कई तरह के इस पे आपको मुख लिखाई थे, यानी कि देहाबी प्लस रेडियो के जरिए, यानी कि एटर पे भी आप सुन सकते अपने गाड़ी में 15.66 AM पर, और नहीं तो आप हमारा वेबसाइट पे जाइए और पूरा दुनिया में, पूरा विश्व में हमारा रेडियो फाहून प्रोग्राम सुन सकते हैं, www.fm.nl।

दोस्तों हम चलते हैं एक मस्त भरी गाना के ओर, लता जी और राजकुमार। और इस फिल्म बहुत पुराना फिल्म है, फिल्म साधना का ये गाना है। लता जी इसमें यानी कि इस गाना को गाया है दोस्तों, और इस गाना आओ मिलकर सुना जाए। कुछ पुराने गाने से आज हम आप लोग को सेवा करेंगे।

मसी हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों, ये एक बहुत मस्त भरी पुराना गाना है दोस्तों। और ये है लता जी, इसका गाना इस फिल्म में यानी कि इस गाना को गाया है। और आगे को हम अगला गाना की ओर बढ़ते हैं और आज हम आप लोग को मस्त भरी गाना से, और जैसे हर हर प्रोग्राम में चलाते हैं आज भी हम चलाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम और आगे चला जाएं, और ये भी एक पुराना गाना है, सब कुछ सीखा, सब कुछ सीखा है हमने, मैं सिर्फ एक ही बात नहीं सीखा है, और वो क्या है भैया, हम तो है अनारी, और ये अगर अनारी होगा तो क्या सीखेंगे, ये बात हम नहीं कहते हैं, मुकेश जी कहते हैं। आओ मिलकर सुना जाए।

0: सब कुछ सीखा हमने और सिर्फ एक बात जो नहीं सीखा है तो वो है होशियारी। दोस्तों होशियारी, हम अपना प्रोग्राम को और आगे को बढ़ाते हैं और मस्त भरी पुराने गाने से आप लोग को आज हम फिर सेवा करेंगे हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों। और कहते हैं जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे संग तो तुम भी गुनगुनाने लगोगे। तो हमारा आपसे यही बात है कि जो गाना हम यहां पर चलाने जाते हैं रवि जी की है फिल्म जो इसमें काम किए है वो शमी कपूर आशा परेख ने। और अगर आप ये गाना सुनेंगे तो मुझे यही विश्वास है, यही गारंटी है कि आप भी गुनगुनाने लगेंगे। मुझे यही उम्मीद है दोस्तों। तो आओ मिलके सुना जाए कि जोनी कौन गाना द्राई करे कि हमें भी बैठ के गुनगुनाने पड़ेगे। तो आओ सुना जाए।
1: तुमने मुझसे यही सवाल किया था
2: क्या
1: अगर मैं तुम्हें भूल जाऊं तो?
2: तुमने क्या जवाब दिया?

और जो तुम मुझे भुला ना पाओगे जब तुम मुझको देखोगे तो कैसे आप आएंगे। ये बात मुकेश जी ये गाना को आपको सुनाई है दोस्तों, अपना प्रोग्राम को हम और आगे को बढ़ाते हैं और आज भी आप लोग के मस्त भरी पुरानी गाने से हम आज आप लोग को सेवा करेंगे। हम चलते हैं, राज कपूर का फिल्म है और मुकेश जी ये गाना को गाए हैं।

उस देश के वासी हम हैं, और वो देश कौन है दोस्तों, जहाँ पे मुकेश रहते थे, और वो है गंगा जहाँ पर बहते हैं, और हम उर देश के वासी है दोस्तों, सूरीनाम के देश के वासी तो हम सब है। और मुकेश जी ये गाना को आपको सुनाए हैं दोस्तों, जो अगर जो आप मुकेश की सुन चुके होंगे तो हम चलते हैं रफी जी के गाना भी सुनना चाहिए, और वो है इशारों इशारों में। क्या होता है इशारों इशारों में, तो कभी दिल चला जाता है, नहीं दिल दिल को चुरा लेता है, दोनों होता है ना। तो आओ मिलके सुना जाए मोहम्मद रफी जी की आवाज।

इशारों इशारों में दिल देने वाले परमान श्री मोहम्मद रफी की आवाज में इस गाना क्या आपने सुना है और आशा भोसले की आवाज में दोस्तों। और अगर रफी जी जब पिक सुनाया है तो हम तुरंत जाते करोड़ों दिल को चुराने वाले और वो है मुकेश। फिल्म का नाम है श्री 420 नेकंती होंदित 55 तख का ये फिल्म है जिसमें राज कपूर और नरगिस ने काम किया है दोस्तों। आओ मिलके सुना जाए।

और फिल्म श्री 420 का ये गाना हमने निकाल कर आप लोग को सुना दिए है। नई खतीर 5/5 का फिल्म राजकुमार और नरगिस का इस गाने में गाया है मुकेश जी और लता जी। दोस्तों हम बढ़ते हैं फिर अगला गाना की ओर, वो है परमाशी मोहम्मद रफी का ये गाना है और इसमें काम किया है शायरा बानो राजेंद्र कुमार। फिल्म का नाम है अरमान, फिल्म के नाम है अरमान और ये गाना क्या है धोरो मस्त भरी पुराने गाने से आज हम आप लोग को सेवा करेंगे। मिशिक है शंकर जय किशन का और इस गाना को लिखा है हसर जयपुर का ये गाना है और आओ मिलकर सुना जाए।

तुम्हारी हर बांस पे है मुझे बहुत नाज दोस्तों। शेरा बानो राजेंद्र कुमार ने फिल्म अरमान में काम किया है और परमाशी मोहम्मद रफी जी के गाना है हसर जयपुर के साथ में। और हम और आगे को चलते हैं अपना प्रोग्राम को लेकर हमारे दोस्तों, और ये फिल्म का नाम है और देवानंद उषा किरण, फिल्म का नाम है पतिता का। ये फिल्म है दादा हेमंत कुमार और दीदी लजा जी के आवाज़ में। इस गाना को आओ सुनिए।

दादा हेमन जी के आवाज़ में आप लोगों इस गाना को सुना है और एक मस्त भरी रोमांटिक हिंदी सॉन्ग है दोस्तों। इसमें काम किया है देवानंद जी।

और उषा किरण ने फिल्म का नाम है पतिता दोस्तों। और उसके बाद हम चलते हैं और एक गाना की ओर और वो भी है फिल्म के नाम है, ये भी एक बहुत पुराना फिल्म है अलबेला का ये गाना है। हमारे दोस्तों लता जी इस फिल्म में इस गाना को गाया है और इसमें भगवान ने बहुत कमाल किया है दोस्तों। आओ मिल के सुना जाए ये गाना क्या है भाई, बहुत पुराना गाना है ये, और सुना जाए।

भोली सूरत दिल के खोटे और नाम बहुत बड़ा है कितरे को, लेकिन कर्म बहुत छोटे है दोस्तों। भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े हैं बाकी दिल से बहुत खोटे हैं हमारे दोस्तों। और हमारे दोस्तों, और ये गाना को जिसके सपने में हम रोज आते हैं, और महेंद्र कुमार और लता जी बताए गए हैं, नई खंती सेफन तक का ये गाना है, आओ मिल के सुना जाए।

जिसके सपने हमें रोज आते रहे और गुना गुनगुनाते रहे, वो कहते कि क्या तू ही रह ले भैया। और जो गाना अब हम आप लोग को सुनाएंगे ये है गोरी तेरी नैनों में हम बस गए हैं, हम बस गए हैं। गोविंदा करिश्मा का ये फिल्म है और ये गाना को गाया है हमारा कुमार शानू, कुमार शानू।

0: दोस्तों, गोरी तेरे नैनों में हम बस जाते हैं।
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

Kalane jaane unchinich, kalane jaane jaan, Saraswati Mata dije, humko apni aashirwaad. तमाम रेडियो फोन के सुनने वालों को हमारा राम राम नमस्कार प्यार भरी आदाब सत श्री अकाल। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम, आज का देश और विदेश के समाचार को सुनाना है हमारा काम, यही है हमारा ये मोहब्बत भरी प्यार की पैगाम।

तो दोस्तों हम तुरंत चलते हैं, और कहां चलते हैं? हम चलते हैं सूरीनाम की ओर और फेहापे की ओर। फेहापे की ओर यानी कि वहां पर अब फेहापे की बस्ती जो है हमारी जनता जोर तोर से काम कर रहे हैं, और वो कर रहे हैं यानी कि फोर सीटर चुनने को। तो इसके बारे में फेहापे का पार्लियामेंटेरियन है और वो है मुफराव कृष्णा मथुरा। वो बोले है इस बर्रई थे फोर सीटर्स का फंड फेहापे ओवरवेगन इन दिन से फन आउट द पार्टी एंड फर्स्टिलेंडर स्ट्रक्चरल वर्ड का फ्रा सिख कैंडिडेट स्टेलन। बोले उबरई थे फोर सीटर स्काप लेवे के। बोले जब ओके फेहापे के कैंडिडेट बोले स्टेम करी तब वन अप स्टेम होएगा कि के फोर सीटर बनी फेहापे के। बोले बलंगराई खेगा कि बोले जितना स्ट्रक्चरन है एंड बरूप दून बोले जालिक एंड ओवरवेकन दंत सालिक ना देंगन। इस बात मथुरा बोली से, और मथुरा बोले है फोलखंडे यार आने वाला साल में मई में फेहापे के बस्तूर फर किसिंग होगा मई महीना में आने वाला साल 2027 में हुई। तो बोले है इर्दर दित यार बोले और फुर्सतर तुलन जानो है चांस तो कि उसका दीवा प्लोसलिंग उफर लेड में से। और बताए गए है जहाँ पे हम लोग के फोर सीटर्स का वार्नी मस्तैलक ग्लेन उलर्स आंतवेजन आल फोर सीटर। और मथुरा खलूफ एर इन इधर खफाल वेल कि फेहापे एगो जबरदस्त एगो स्टर्कर लेदर सबन किस करेगा। और बोले हैगा फेहापे बोले बहुत स्टेबल है स्टर्क हैगा। बोले आल्स वेर अ स्टर्कर लेदर सुलन हेवन हो वर्स्टूर बतावे फेहापे के कि बोले 77 यार फेहापे के बस्तांत है। और बोले फेहापे बोले दोर माक इन द सामन लीफ बोले नरम गरम ऊंच नीच बोले सब हम लोग मी माक कर चुकली बाटी। और बोले फेहापे आइट एंड के गो स्टेर कर तरह कौन बोलो फिन से तरह आए एकर बारे में अंदर फोर्सेटर जोन है फेहापे के आशीष कुमार गया दिन। वो बोले हैगा बिनंद पड़ते सैंदी बे हम आंद्रिंगन कि बोले हम भी फोर सीटर्स का बोले कि कैंडिडेट अनस्टेल कर कोई बोले तनसे ये सब कोई हमें किस करी तब वार दौर है बेसक इज अ खुद टीम तो सुकन फॉर दैट है इवेंटुअल सो अ स्टॉप सेट। और हो वर्स्टूर्स के लेते महेंद्र गया दीन उस सफा बोले है बोले हम यस मांगेला कि पुराना मिनिस्टर जो है गणेश कुमार कन्हई बोले आउस अनखस्किक्त कैंडिडेट बोले हुए पार्टी लीडर के। और बोले हैगा फॉल्कस हम बस के कन्हई ओफन खुद से ही kent hij de VHP van binnenuit en zou zijn verkiezing geen slechte keuze zijn. Toen ik er bare mee op de co-voorzitterschap mee mee hoe ik aan verkiezing VHP ke op ke voorzitter benega en bole hega het volk en dat heb ik mijn hele leven gedaan. Bole 45 jaren dien ik samenleven al en ik zal blijven dienen vanuit elke functie. और ये बात बोले है मथुरा बोले है उत्तराधीन से बोले हम बाटी। तो ये बातचीत है फेहापे के अंतविकलिंग के बारे में आप लोग को हम बोली थोड़ा से बताए दे भैया। सूरीनाम देश में यहाँ तो हॉलैंड में जगह जगह है, सूरीनाम देश में तो भी वहाँ पर भैया फ्लिट्स पार्लर लगल है चारों बगल। और फ्लिट्स पार्लर भैया जाने कमरा मस्त है, एगो ओ तो जाए के कमरा मस्त हुए में मार दी भैया। ये बात तो कभी न्यूज में हम ना पढ़ ली है, पाल तो काटे है बाकी जहाँ पे कैमरा धरल है मस्तवा वही में जाए के ओ एगो ओ तो भिड़ा दी भैया। सेफ्टी सिटी कैमरा मास बस तू द खवान एंड फूड तो एक इस नतीलक स्वार बस खादक में से एगो बॉक्सिंग भैल है।
اور بتاوے 16 اگستس کے اتوار کے ایک سیف سیتی کیمرہ مست ہے انتون درختر وے خبونی سترات میں اوئی میں کو اختم فیر تک یار کے ادمی جائی کے بیکو سترات سے نکرل ہے سنتریم سے جائی کے کیمرہ مستوے میں مار دیت بھئیہ تو اوکے کھات تو اب بویس کھوجے کہنا ہے وات ہوا پہ سب لکھل ہے اپ لیول ہے कि कैसे भैया जाए के और भीड़ का आंधी से अपन ओ तो इन से देखा अरे नहीं भाई ये बातचीत हो रहा है हमारा सुरिनाम में पीके के तुलन जाने भैया अक्तिफे से पीके चल गए पहले रहा एनडीपी में एनडीपी से चल गए हैगा अब बॉप में अब बड़ा बात बोले हैं सिमोन के रखेरिंग सिमोन के बोले उस सब कुछ ना दिसवा बोले बनाई पाई से कई हार्ड बोल से रखीन जिमोन के बोले खाली पोप के यहाँ से हुआ घसकावे है जाने तो जैसे स्काकबोर्ड पे बहुत बोले रहा ऐसे बोले खाली पोप के यहाँ से हुआ घसकावे है अले पोप सेंशन विश्व फॉर द रेस्ट बोले उस सब देशों हमें कुछ ना करे हैं रखे रिंग रिसलान के और सिमोन के बोले हैं एक बरिस उस सब हो गए हैं और बोले एक कोई चीज न फरांद नौ लिख्स बोले हम लोग अपर पटमोनी में मेरक कर पाइला बोले रास्ता रास्ता सफा हुए है दाम उम तरी बने हैं बोले दस वेल नि शख बोले उल्लांटी के काम ही करे के बोले बाकी ऑन्टविकलिंग देसुआ में एक को बुन न लाई से बोले फ्रॉइड खान जो हम लोग के सलार से दुकान में जो प्राइस से फर्स्ट बस्तान द सीकर है थे कंसर्न फॉर ब्यूरोक्रेसी नाम ये daar ziet hij volgens eigen zeggen bullen geen wenselijke verbetering. De pikke ik erbare mee bolle dosto, bolle regering, bolle kuchna karehe, bolle stuivertjes verwisselen, andere politieke figuren zitten op de posten terwijl, bolle ohi purana cultuur, bolle ohi machinia chalehe, bolle beweer karehe, bolle politici en politiek sponsoren ten goede komen in plaats van rechtstreeks de bevolking, maar bolle ikko verandering na hem. Coalitie krijgt langs Piqué, stelt de minister in praktijk. Eerst partijbelangen, bolle appen partijbelangen, bolle regering wakker he. Maar bolle janta ke belang me bolle u sab kuana baithale. Pehle okar partij ke admi ke chahi. Yare ki fordeel banave ke de gezondheid zorg en onderwijs bole hega Jennifer Simons ke bole he grote testen Missy Kaba volksgezondheid ke jo minister he zelf een van de grootste blunderbare regering ke bhaiya Missy Kaba ke jo pasteur he और नाचत आयले उसेर में और के सबन मिनिस्टर डायरेक्ट बना दीजिए भैया अब बोले एक को वार्ता ना होकर बोले अंडरवेज फॉलोस गेजोंडहेड गेजोंडहेड सॉर बोले नीच स्टेफिग ऑफ ऑर्डर वर्डन गब्रा बोले हेय स्प्रीक daarvan van een valse start सिमोन दे सूट मूत रे शफल बोले सेल्फ सिमोस के चाहे निकर जाए के ओके चाहे सेल्फ रे सफल होए के पीके बोले है बोले रखेरिंग से एक बरिस से बोले उस बैठल है और बोले बेर बेर अपन प्रॉब्लम वा घसकावे है फोर रखेरिंग जाए के लुका है के उस सब चीज करी से बोले हम लोग जोन एरफ कर ली बोले वही के सेन री द रेनिंग इज सिंपल वी कंपाइन फूड एंड बिलीव दैट बेटर टू डून Weet vooraf welke problemen er liggen. De kiezers heeft de nieuwe machthebber juist geschoven om de puinhoop op te ruimen. Achteraf blijven vertellen waar het allemaal fout was bij de vorige regering. Orgas KWK, Santoki, Brunswijk, regering problemen wakker is. Obole to de lele politieke, dan moet je toch weten. Wat je allemaal staat te doen, Jano, bijna. Of voetballers gaila, bijna Nederlandse, of deze Suriname mee. Of sabke milala, diaspora ke, Surinaamse paspoort milala. To hiya paspoort kwestie van de diaspora voetbal kan deze bij staatsbesluit geregeld worden. Want Simon bole paspoort, toch heb een trek zijn hoe ik, of bole balawato don hoe ik, deze heb kelwaar kere, paspoort. स्पोर्ट से भैया बोले हुफ ने वेट नेशनल है
tijd. Bolle 14 augustus ke 2026 tijdens vervolgbespreking commissie naturalisatie van Nationale Assemblée DNA ke. Ik erbaar mee wat ja hein. Bolle de SVB is gevraagd de voorgestelde wijziging te verwerken zodat het concept van de wet op korte termijn kan worden ingediend. Dus toe de jebante voetballers ke bareme.

और जाने कैसे कब कहां इकरार हो गया। तो दोस्तों, तो हम चलते हैं और आगे को अपन समाचार को लेकर हम तुरंत चलते हैं निकेरी की ओर। दोस्तों, वहां पे निकेरी में निकेरी की ओर हम आप लोग को लेकर चलेंगे। निकेरी के जोन देसी है डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर से निशा कुर्बान बब्बू, निशा कुर्बान बब्बू देसी है निकेरी के। और उमांगे हैगा निकेरी में और काम होवे मेयर वैरक माकर फन बेहतर वीकन रास्ता जोन है बोले और बेहतर चाहिए होवे के। और बोले जोन यंगर है उ सबके काम भी चाहिए मिले के, वेरा खलीखन है भी चाहिए होवे के। बोले जो हाउस फेस्टिंग है बोले राइस सेक्टर के ऑन्टविकलिंग बोले सब चाहिए फॉर बेहतर होवे के। बोले फोकस हार स्किन एंकल सामे लीफे ओइट 100% ऑफ एन मुतन ओवरहेड instances en burgers gezamenlijk blijven werken aan de vooruitgang. तो ये सब चीज तो बड़ा बढ़िया देसी सोचे है। और अब सोचे तो बाटो तो अब चाहेंगे देसी के करे के। कुर्बान बब्बू बोले है बोले आद शांत वेकन मुतर ओक आन खपाक्त वर्दन बोले वेकन ऑथोरिटेकन वर्क इन मेडिस इन फर्किल ट्रायक्टन। और बोले हैगा कुर्बान बब्बू बोले है देसी बोले ना दुखरक विल इन सेटर फॉर यंगरन। बोले फोकस हार मुतन बोले मेर बानन और वेर खरीगन है चाहे हुए के निकेरी में। स्लाइस जोन है भैया बोले बलांगरेक फॉर राइस सेक्टोरन। कुर्बान बब्बू बोले है बोले बलांगरेक प्रियोरिटाइट हैगा जो स्लाइस है चाउर के जो धान आदमी बोवे है ओके सब रीनो फेर करे के। बोले दृंगत हेयर स्टाइल नो द हेवन नो सेक्टर फर्दर कुनन ऑन्टविकलन। तो बड़ा अच्छा बात है। तो यहाँ पे बताए गए है बोले है बब्बू बोले है कुर्बान बब्बू बोले है बोले ऑफ द अखेंडा ऑफ द मार्क इज फॉल्कंस आंध्र इनोवासी तो जो बाजार है वो चाहे रिनू फेर करे के। बोले द आंध्र कनाल पॉइंट इज ए टकोर्ट ऑन फक मेंशन फक मैन से बोले बहुत कमती है। बोले जो बहु में बा बोले रेस सेक्टर इन इंस्ट्रक्टर दान आरबेस क्राफ्टन फॉल्स डीसी मुइलक इस तो फिंडन। कुर्बान बब्बू बोले है बना दृक्त दैट दिस नीड अलेन इन निकेरी स्पेल मार अन लैंड का प्रॉब्लम इज मेड दैट फॉर वर्डन बाय आरबेस क्राफ्टन आंगत्रोकन और डीसी रूप द सामलेफ ऑन मिंदर एनर्जी टू स्टेकन इन नेगेटिविटी एंड अफ्रीकन फ्रॉम एल्कार एंड kritiek is volgend teken, baboe. Janne DC heeft goede gevolgen, mensen. Alleen als hij waar kan maken, pijswa hij kina hij, mevrouw. De DC, daar gaat het om. Dat gaat het om, mensen. En meer niet. Dus dat is de zaak een beetje. अब देखा जाए भैया हिया बतावे त्रिम की ओर हम तरी जाई बैतलान के चीवा बताई त्रिम खराब ओवर अनएक्सक्सी स्ट्राट फॉर हॉर्मोन्स ना नीदला फन ईरान। हाँ, अमेरिका बोले है तुलंजानो स्ट्राट हॉर्मोन्स के बारे में जहां सब बोर्ड पास हुए है बोले उखरोन खबितवा जो ने बोले चाहे अमेरिका के हो जाए के अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बोले है वन विल फरक्लारन नदत ईरान इज वर्सलागन है डीड ऑपमर्कलिक ऑप्सप्राक फ्रागन टाइडेंस बेइन कोस बेइन पॉलिसी अकादमी इन अमेरिका
New York mee, de hoge functionaris van de Witte Huis, verklaarde later tegenover Amerika dat Trump een grap maakte en dat er geen plannen voor een dergelijke stap zijn besproken. Bole, us grapker traha, ki hormus oker hojaiga Amerika ke. Bole, zei het ook een droom hoe te moe, maar ze niet kregen hoe bij jou te doen. Jano, he, us heb als het groen land mee, go bedrijf zeg maar teelkode he, en dat mag ook niet mensen, nadat we Iran hebben verklagen dat een zware nederlaag lijkt, zal ik de straat van Hormuz binnenkort Amerika's grondgebied verklaren, zei Trump. Daarna voegde hij ernaartoe: het is echt waar. Trump herhaalde ook zijn eerder bewering dat Amerika bole Amerikaanse maritieme blokkade waarmee de scheepvaart verkeert, Iranke haven mee wordt tegengehouden. Iran beslist dat de VS de controle over de straat van Hormuz hebben. Bole het scheepvaartverkeer is door de zeestaat sterk teruggelopen. Hormuz is van groot belang voor de internationale energiehandel. Op het eigen conflict passeren ongeveer 1/5 van de wereldwijde olievoorziening via deze route. Op het eigen nieuwe economische maatregelen tegen Iran. Washington voert ondertussen ook de economische druk op Teheran verder op. Amerikaanse minister Financiën bole week nieuwe maatregelen tegen Iran zal aankondigen. Volgens hem gaat het om stappen die het land economisch nog verder te isoleren. Mensen te Trump abbe bezig Iran ke bare mee. Hamari janta en wij lijden eronder om de dure benzine, de dure brandstof te gaan betalen, mensen. Abbe de ko Suriname mee. Arman Sundermange he, loonsverhoging. Alle regering in Suriname onderhandel kreeg loonsverhoging ke bare mee. Go vakbeweging hega Rafaksuur. To Arman Sunder John hega woordvoerder en Rafaksuur se mange he loonsverhoging van 25% lanti se. Maar lanti bole he, bole hem toch 25 na de, maar 10% ambtenaren salarissen structuur met 10% aan te passen. O bole hega vakbeweken bole he, bole hega. Zo werd voorgesteld om de belastingvrije grens te verhogen naar 9000 naar 15000. Want heb je toch een nieuw jaar te toch een belasting verreken, te bole ook een grens verhogen week 15000. Volgens Sunder is dit voorstel op dit moment niet aan de orde bij de regering. Dat werd en tijdens de vergadering afgelopen week meegedeeld. Bolle Oehamlo Abbenakker Sakila. Bolle er is geen sprake van de verhoging. Ja, hoi, bhaiya. Ta haan to dal lage ki kursua chari. Maar ab dekho regering bolle hem toke 10% debe. Lanti ke kam kartan ki verhoging.

Mensen op het AWG-gaan, een aardbeving was 7.4. Kostte 280 mensen het leven. Bijna 27 hargirgehe, verwoest hoegehe. Zahark en barka barka rasta, sub toetke saka hoegehe. Jeze go rasta knamra Gali en Pereira. Bole miljarden schade de suame bhaiya. Columbia ke minister joon he, bole he, bahur kritiek paise. बीते हुए हफ्ता में और बोलेगा कराइबी से स्ट्रांग जो रहा अंतर इलेक्शन बोलेगा वी कैन बिल्ड द फर्स्ट वार ऑफ द सीन इज दैट है ऑफ द कराइबी से स्ट्रांग अंतर इलेक्शन वास और बोले ओकर ऊपर क्रिटिक के बोले देश में ही हम लोग के इतना आदमी मरल है सब घर भी गिर गए हैं और जो ने मिनिस्टर है जो घर के बारे में जो है फेस्टिंग के जिनका नाम है जिम आंद्रेस बेल्ट्रान वो जाए के स्ट्रांग पे रिलैक्स करे है एक बारे में ओपोसिसी लिंक्स ओपोसिसी एगो मूसी फॉर वन थ्रोवन रखेरिंग में इन दिन करी से क्रिटिक मोमेंट बसलोड फकांसी तफीरन बोले इतना क्रिटिक है अब बोले मिनिस्टर फॉर फॉलोस गसंतहित के हाउस फेस्टिंग के बोले गले फकांसी फीरी करे बोले ब्रेक ऑफ एक्स क्रेव द मिनिस्टर दैट है नीट ऑफ फकांसी वाज एक विल अ पार यू दो ब्रेक में मेफ्रॉ एंड किंडरन दी एक आल एंकले दागन नीट हाथ गसीन बोले कई रो छुई गया अपन और लड़गन के बोले ना देख करी बोले ओहिक मारे बोले हम बोले उ सब के देखत मारती साकीरा ही सो मार के फिनांशियल स्टेन टू कसे फॉर वेदर अबाउ स्कूल ये जन बसखानक बेल है अमेरिका फिलांथ्रोप होवार्ड बिफल्स है स्वार खतरोफन डिपार्टमेंट को को को में बा जहां आफ्रो कोलंबियन से उस प्रांत का खमीन स्टाक वो उड़न कोलंबिया में जो कपड़े लोन हुआ रहे हैं ओकर खमीन स्काप में 2800 स्कूल बसखानक भेल है चौको में मेंसे और बताए गए हैगा स्कूल ये चाहे सब फरबाव हुए के एक बारे में सकीर अनशुरान से बताई से जेमा 1 मिलियन डॉलर ऑफ 865,000 यूरो toegezegd, Colombiaanse zangeres ego he, bole utra paisa toke hem debe, Colombiaanse zangeres zei dat ik 1 miljoen dollar was toegezegd voor de wederopbouw, het geld zou naar de verwachting worden gebruikt voor het reparering van de beschadigde scholen ke bare mein na ki ghar mein dhariye paiswa kono zangeres bhaiya millionaire he to 1 miljoen dega स्कूलिया के बनावे के बारे में हमारे जनता तो आप लोग को बताएं भैया एसएलएम के बारे में बड़ा क्रिटिक है एसएलएम के बारे में एसएलएम रिया खेर करी सेगा और ब्रेक ओवर खाओस samenstelling en functie van de RVC volgens directie is dat ongewijzigd. SLM ke bare mein aur SLM Suriname se RVC bhaiya raad van commissaris joon bole hega aanleiding voor de reactie bole hega online publicatie hega 16 tarikh ke joon waar tijd dhari se bole go khaon se raad van commissaris SLM mein और बोलेगा नार द आनलाइनिंग द आरफान बोले डायरेक्शन बोले खसामल केनस करिस्ते नहीं में फन बरे गेवन और बोलेगा ओक द फिंची बिनेन द रात से फोक मस्कपे बोले कुछ ना फरंदर भाईल है तो बड़ी लंबा चौड़ा एसएलएम के बारे में लिखा गया है हमारी जनता तो हम बोली आपको कुछ छोटा रूप में आपको बता दी भैया 9 आदमी के सूरीनाम देश में नीक फरदाख्तन फरदोरदेल इंसान फरमिसिंग फन ट्वी मनन दुई आदमी लाश भैल है ओकर बारे में भैया 9 आदमी के सभन पकड़ी से बतावे गरे इसे पड़का क्रिमिनल और खानी सासी के बाद शुल्लन ते हैं बरखमात आन देल नाम आनन क्रिमिनल और खानी सासी फोर बरेडिंग हंडलन में बत्रेकिंग अब द वेट फन फरदोवन द मिडलन uitvoeren van cocaïne of er poging daartoe dan wel hen aanwezig hebben van cocaïne de OM 50 jaar mange hai aan bariske jahal mange hai to isab ke bhaiya jahal milal hai

तो जैसे रहेगा इसके बारे में और आगे बताएंगे, बहुत बहुत लंबा चौड़ा इसके बारे में बताए गए हैं जो आप लोग को हम छोटा रूप में बताएंगे। हम जाते हैं अफ्रीका के ओर भैया, कोंगो में हम जा रहे हैं। तो वहाँ पे बहुत बड़ा बीमारी है, चलल है एम्बोला के बारे में आप लोग जानो है। कोंगो में है दो लक्ष्य लॉन्ग इतना आदमी न मरल रहा और देखता जनता अब की मरल है भैया। और ये बात है रिपब्लिक कोंगो में बोले 2325 आदमी मेंशन से लीफन को कोस एम्बोला से दौलक इन खसकी डिंग जो अमेरिका अफ्रीकान से लांद के है कोंगोलान से खतों से ऑथोरिटेटन बोले 4945 आदमी बसमेद भैल है। और ये दो दिन लाख मिडल्स होकर रहा जो 2018 और 2020 में रहा, उस समय पे 2299 mensen maar al betawe daarmee doodlijk ze Congo ooit heeft meegemaakt en bole ab ki aur jana maral hai dosto. To iske baare mein bhi bahut lamba hai, aap log ke hum mul mulle baat batate hai ki itra janta maral hai aur wo hai Congo mein hamare pyare pyare janta जो एक बीमारी है एम्बोला सब बोले है। हमारे जनता तो हम चलते हैं और आगे को अपना सूरीनाम के समाचार को लेकर। भैया वोनन ओपेट वाटर नीदरलैंड के बातचीत है इस नित खुद को जानो। यहाँ नीदरलैंड में चलियो तरीबा में मतलब पानी में बोट है वो उन बहुत जहाँ आदमी रहे हैं तो कितना आदमी बोलो तो घर द्वार ना है बोट पे घर बनाई के और वहाँ रहे माँ दत्त इस नीट खुद को मेंशन वो उन बहुत इस दूरदर दान अन है हाँ तो जेके मालूम ना है तो अब हम बताओ थे आप लोग तो यहाँ दनहाक में और कहाँ कहाँ पे जानो हैं कि पानी में घर बना है वही पे सब रहे हैं। तो यहाँ बताए गए वो उन बोतन लेकिन इन मेरल जना है कि खुद कोप है मैं जो घर में हम लोग रह ला उससे महंगा है वो है पैर फिर कांत मीटर एगो बोट के बताल ये फोर और वो यूएस 20% और ज़्यादा भरिए जो हम लोग घर में रह ला हमेदल एगो बोट भी कहा है भैया 400 और हमेदल एगो घर भी कहा है 400 बताल फॉर रेगुलर वोनिंग। और बताए गए हैं वोन बोतन सेन इन मिडल 400 vierkante meter ग्रोथ तेगन ओवर 118 vierkante meter बोट एगो गिमार है उनके 94 vierkante meter है और एगो घर रहे उनके 118 vierkante meter। तो बोले उसे देखिए तो बोटिया और महंगा पड़े है 20% मेर 400 vierkante meter में इन खून वोने लिख द प्राइस और बेना 7500 एक 400 vierkante meter तो किनिए। तो बताए गए दोस्तों आलो वोन बोतन जो 2025 में रहा हूफ्स्टाद में verkocht laag in de hoofdstad Groningen, Rotterdam, Haarlem mee zijn er relatief veel verkocht van al Jarabikal Henga, Bollega de Ronde Veen, Wormerland, Weidermeer en mee worden naar verhouding eveneens veel woonweden verkocht mensen. तो कितना आदमी सोचे है कि हम बोटियन में जो घरवा बनल है वो सस्ता है मार आशीषित मेर फिर कांत मीटर इस दात नो ट्यूर्डर में से दन और हम जाए तेरी रुसलांद की ओर जनता। Opnieuw is een magazijn voor Ruslandse webshop Wilberis door een droneaanval geraakt. Omwille in een magazijn vlakbij de Russische hoofdstad Moskou me onthoudt een brand
die inmiddels is geblust, dat zegt de regiale governor. Rusland met via Oekraïne dagen betek via 620 drones richting Rusland met Chalgi he Marijanta. En ja, betawe Iran bole he bole straat van Hormuz 19 augustus ke je baant 18 augustus ke je nieuws he straat Hormuz bole pas open als VS Amerika hum log ke jitra east hai bole sab dega tab bole hum log Hormuz khola pahu Amerika dusar baat batiya hai Iran dusar baat batiya hai Iran bole hum log khola jaise wohi ke aur hu Amerika bole jaise wo kar hai lekin ab ke kar hai dosto Iran to hiya dusar baat bole hai Iran se parliament forsiter बोले है टॉप ऑनर हंडलार है मोहम्मद बखर गलीबास बोले है एक स्पीच में बोले है Hij noemde het beëindigen van de Amerikaanse zeeblokkade, het opheffen van de sancties op olie en vrijgeven van de Iraanse tegoeden in het buitenland. Want tegoeden in Amerika sub buitenland mee frisker deze. Bole tap hamlo jaike kholab, bole pehle hamar jitra sancties to kale oke khol sinds de oorlog 1 februari Amerika Israël aanvalkeren Iran koeper varen en nog nauwelijks schepen doorheen die leidt wereldwijd tot hoge prijzen onder meer voor brandstofmensen bolle in het tijdelijke akkoord tussen de VS en Iran was afgesproken dat de straat van Hormuz weer helemaal open zou gaan maar dat is niet gebeurd dat akkoord is inmiddels verlopen Iran onderhandelt met Oman over een veilige doorgang door de straat van Hormuz maar dat betekent volgens Iran niet direct dat de zeestraat wordt heropen mensen. To Iran ijsje bole he. En Amerika kuch oisen bole he. Hamas ke oor jai bhaiya. Hamas tulon jane hega terror groep hega Libanon me. Hamas zegt verder te willen met proces richting vredesdeal. Ze mangen vrede kere Iran Israël se. Gaza stad mee, Hamas mangen vredesplan kere Gaza mee. Aur bole hega onder leiding je Amerika chahin reke. Aur bole de steun is vooralsnog niet. Aur bole hega schoonzoon je Amerikaanse president ke he. Heeft hier de voorbije dagen over gesproken met zowel Hamas als Israël. Woordvoerder Hamas bole he. Hamsis Kuzem bole he. Tijdspadden en procedurele stappen die nog ideaal in de teel uitgewerkt zullen moeten werden. Oorlog hote he bhaiya tulunjano Pakistan ke or hem jai. O Pakistan me bhaiya oudjon president wakara premier ha. Oke jahal manse saban nikaris omdat u bemaar he. Tulon jane he am Imran Khan drin se ife tak yaar ke. Oke saban pakad ke ban kar le raha nawara khiring ail he. To uspatal me bhaiya bahut bemaar he. O bole he ga ho kharek Pakistan ke. Bole he ga Imran Khan ke. Bole 2023 me vast in veroordeelde in verschillende zaken. Onder meer voor fraude. Partijgenoten Pakistan. Pakistan ke Tirik Izam bole familie maken zich zorgen over zijn gezondheid mensen op bole hega u bemaar he hoger heeft moet gaan binnen 28 uur naar het ziekenhuis worden overgebracht tot 16 september blijven op bole Khan werd 2022 mee afgezet. Sindsdien is hij geconfronteerd met meerdere rechtszaken. Afgelopen december werd hij veroordeeld tot 17 jaar gevangenis voor fraude. Andere zaken gaan onder meer over massamisbruik en opruiming. De oud-premier ontkent alle beschuldigingen en noemde veroordeeld politieke moviesmensen. Toen aanplukken we hem een gietje uit te laten horen.

तो दोस्तों इसी सॉन्ग से आज के समाचार को हम और समाप्त करते हैं। एक लास्ट ब्रेक थे दोस्तों, फीरन देर तक बूटस हो गया है, फीरन देर तक बूटा मिलल है फ्राख्त वाहन के अपस्को तू कंट्रोलर करे ओ टूरिंग स्कार्ट के नीलांग के बांचित हुए है रेक्स वान संस्थान सोमार के फीरन देर तक को बूटू लीके से फ्राख्त वाहन के और टूरिंग स्कार के जो मेर वीडियो ब्रुख पे चलाए रहा। Het was de eerste dag dat motoragenten van de politie controleerden op het verbod op zwaar verkeer te handhaven. Ubrukipa zei, nam mag je zwaar verkeer jijke. En is op chalairaha motoragenten, sabke pakli se bhaiya. Bole hega touring scars over de verzwakte brug reden. Als de chauffeur werd betrapt, leiden agenten en het voertuig van de weg af naar inspecteur van Rijkswaterstaat. Dit schreven met een boete van 500 euro. Ja, hoe direct liep die he? Toh, hamare dosto, yahan tak tha hamara dis aur vidis ki samachar jo aap loon suna hai. Yahi aasha umeed se ki aapko hamara समाचार जरूर अच्छा लगा होगा। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम, आप सबको हमारा राम राम, नमस्कार, प्यार भरी अदाब और अदाब, सलाम, नमस्ते।

और आप किया जाने से हमारा भी यहाँ पर मन बहुत चाहते हैं दोस्तों, और हम इस प्रोग्राम को और आगे को बढ़ाते हैं और कहते हैं सिखवा करने से, सिखवा करने से गए थे और इबादत से हो गई, सिखवा करने गए थे और इबादत से हो गई, तुझे भूलने की जिद थी मगर तेरी आदत से हो गई। और दोस्तों आज हम आप लोग को और तक सैफ तक नेख तक का कुछ गाना सुनाएंगे दोस्तों, आओ मिलकर सुना जाए उदित नारायण एंड अलका याग्निक।

0: आई मेरे, और क्या क्या आप लोग सुनते हैं अलका और उदित नारायण का ये सॉन्ग है दोस्तों। और कहते हैं कि देख के तुम्हारी मुस्कुराहट हम में, देख के तुम्हारी मुस्कुराहट हम होश गवा बैठे, देख के तुम्हारी मुस्कुराहट हम होश गवा बैठे, हम होश में आने वाले थी कि तुम फिर से मुस्कुरा बैठे। नोखमाल्स नोखकीर बेस्टेल इस्तराद, देख के तुम्हारी मुस्कुराहट हम होश गवा बैठे, हम होश में आने वाले थी कि तुम फिर से मुस्कुरा बैठे। दोस्तों तो आज आप लोग को हम कुछ शायर और शायरी की और मोहब्बत भरी लवली सॉन्ग्स आप लोग को लिए हम चलाएंगे। और एक और हो जाए, मरे तो लाखों होंगे तुझ पर, मरते तो लाखों होंगे तुझ पर, मैं तो तेरे साथ जीना चाहता हूँ। दोस्तों और चला जाए और ये गाना कोर की पूछो जरा पूछो।
1: मुझे

और तुमसे ये दिल लगाने की सजा है। दोस्तों राजा हिंदुस्तानी 1966 भैया नहीं खंती का ये गाना है। और पूछो जरा पूछो अलका और कुमार शानू का, आज हम आप लोग को कुछ गीत और सुनाएंगे हमारे प्यारे दोस्तों, और मोहब्बत भरी सॉन्ग समाज आप लोग को और सुनाते ही रहेंगे। हाल ऐसा है मेरा कि तेरा ही गले लगकर, हाल ऐसा है मेरा कि तेरा ही गले लगकर तेरे ही शिकायत करनी है तुझसे। और दोस्तों प्यार भरी और हम आज आप लोग को सॉन्ग सुनाते ही रहेंगे हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों। और शायरी के और कुछ शायर के बातचीत भी, कुछ शायरी भी आप लोग को हम सुनाते ही रहेंगे हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों। और कहते हैं कि यहाँ पर अलका फीना गई है दोस्तों और उदित नारायण।

और दोस्तों, आप जहां भी हो, चाहे जौन देश में हो, हमारा प्यार आपके पास पहुंचे। और वो कहते हैं, वो जवाब मांगती है कि मुझे भूल तो नहीं जाओगी। समझ गया दोस्तों, ये कहते हैं कि वो जवाब मांगती है कि मुझे भूल तो नहीं जाऊंगी। जवाब मैं क्या दूं दोस्तों, जब सवाल ही पैदा नहीं होता है। समझ गए ना हमारे प्यारे दोस्तों, कि ये कहते हैं कि वो जवाब मांगती है कि मुझे भूल तो नहीं जाओगी, जवाब मैं क्या दूं जब सवाल ही पैदा नहीं होता है। हमारे प्यारे दोस्तों, ये बात ही कि कहते हैं कि अपनों के बीच बेगाने हो गए हैं, अपनों के बीच बेगाने हो गए हैं, प्यार की लंबी अनजाने हो गए हैं, जहां पर फूल खिलते हैं कभी आज वहीं पर वीरान हो गए हैं दोस्तों। और ये सब बात कब होता है, जब प्यार में टकरार होता है। तो वो कहते हैं, अपनों के बीच बेगाने हो गए, प्यार के लम्बे अनजाने हो गए, जहां पर फूल खिलते थे कभी आज वहीं पर वीरान हो गए है दोस्तों। और हम चलते हैं एक गीत की ओर। आ जाना और फिल्म के नाम है कूली नंबर 1। भैया मिलकर सुना जाए।

दोस्तों अपना प्रोग्राम को हम और आगे को बढ़ाते हैं और कुछ शायरी और शायरी हमारा आज आप लोग को लिए और हम कुछ बना कर लाए हैं कि कहते हैं मोहब्बत का एहसास हमारे दोस्तों हमारे चाहने वाले हमारे प्यारे प्यारे हमारे लवली लवली लोग और कहते हैं कि मोहब्बत का एहसास तो हम दोनों को हुआ था। मोहब्बत का एहसास तो हम दोनों का हुआ था, फर्क सिर्फ इतना था कि उसने किया था और मुझे हुआ था। समझ गए ना दोस्तों कि मोहब्बत का एहसास तो हम दोनों का हुआ था, फर्क सिर्फ इतना था कि उसने मोहब्बत किया था और मुझे हुआ था। दोस्तों ये तो बात भी होता है ना प्यार में कभी कभी, और प्यार में ये भी होता है दोस्तों कि रूह की जगह तुम होते मेरे जिस्म में, रूह की जगह तुम होते मेरे जिस्म में, जब तुम छोड़ कर जाते तो हम मर जाते। और हम चलते हैं और एक प्यार भरी गीत की ओर, आओ मिलकर सुना जाए।

प्यारे दोस्तों, हम आप लोग को प्यार भरी गाना चलाएंगे और आगे का प्रोग्राम हम बढ़ाते हैं फॉर ओनली द लवर्स के लिए। इस गाना को और शायरी हम यहां से चलाते हैं, ओनली लवर्स दोस्तों। और हम यहां कहते हैं कि होशे हालात पे कबूल तो कर लिया मैंने, उन्हें देखकर फिर से होश खो गए तो मैं क्या करूं दोस्तों। कि होशे हालात में कबूल तो कर लिया मैंने, उनके देखकर फिर होश खो गए तो क्या करूं हमारे दोस्तों। मुझे नहीं मालूम है प्यारे लोगों, मुझे नहीं मालूम है वो पहली बार कब अच्छा लगा। मुझे मालूम नहीं है कि पहली बार वो मुझे कब अच्छा लगा, मगर उसके बाद कभी बुरा भी नहीं लगा हमारे दोस्तों। और हम चलते हैं और एक गीत की ओर, कहते हैं मुझे जीने नहीं देते हैं याद तेरे।

और ये याद तेरी दोस्तों, और आज हम आप लोग को श्री फॉर द लवर्स के लिए कुछ शायरी यहाँ पर हम और आपको सुनाते हैं कि कहते हैं कि प्यार वो नहीं, प्यार वो नहीं हमारे प्यारे दोस्तों, प्यार वो नहीं जो हासिल करने के लिए कुछ भी करवा दे, प्यार वो नहीं जो हासिल करने के लिए कुछ भी करवा दे, प्यार वो है जो उसकी खुशी के लिए अपना अरमान छोड़ दे। यामिन से प्यार वो नहीं है, प्यार वो नहीं है जो हासिल करने के लिए कुछ भी करवा दे, प्यार सिर्फ वो है जो उसकी खुशी के लिए अपना अरमान छोड़ दे। फॉर द लवर्स। और दूसरा है मुस्कुराते हैं लब, मुस्कुराते हैं लब आंखों में नमी है, मुस्कुराते हैं लब आंखों में नमी है, सब कुछ है मेरे पास, सब कुछ है मेरे पास, बस एक आपके कमी है दोस्तों, आपकी कमी है। और सुना जाए अब क्या है,

दीवाना और मैं तेरा दीवाना। दोस्तों और यहाँ से कुछ प्यार भरी शायरी आप सबके लिए हम यहाँ से चलाते हैं। कभी कभी लोग जो है वो कहते हैं कि वो प्यार करते हैं, लेकिन उसका एहसास उसको नहीं होता है कि अब क्या होगा और आगे को क्या होता है। तो यहाँ से हम बताते हैं कि दिल कहता है कि तुमसे बहुत बातें करूं, दिल कहता है कि तुमसे बहुत बातें करूं, पर डर है इस बात का कि तुम्हें कोई बात गलत ना लग जाए। कभी कभी होता है दोस्तों कि बात करने तो चाहते हैं, लेकिन सोचते हैं कि कहीं हमारा बात इसको कुछ गलत ना लग जाए, तो वो बात करने में घबराते हैं। कि दिल कहता है कि तुमसे बहुत बातें करूं, पर डर है इस बात का कि तुम्हें कोई बात गलत ना लग जाए। और दूसरा है दोस्तों, हम इश्क के वो मुकाम पर खड़े हैं जहां दिल किसी और को चाहने चाहे तो गुनाह लगते हैं। दोस्तों जब किसी से इतना प्यार हो जाते हैं तो जब किसी और आपको देखते हैं तो और या आप किसी को देखते हैं तो अपने आप को आपको शोक फूला करने लगते हैं कि हम इश्क में वो मुकाम पर खड़े हैं जहां दिल किसी और को चाहने तो गुनाह लगते हैं। दोस्तों हम चलते हैं एक प्यार भरी गीत की ओर।

मेरी सनम तेरा खत मिला भी आप सुन रहे थे धीरज लाला राम और वादिका राम सुकुल जी की आवाज में। रायन मनोरथ आ रहे हैं प्रोग्राम में, मैं प्यार का दीवाना।

रायन मनोरथ जी से आप अभी सुन रहे थे। यकीन कर लो मुझे मोहब्बत है तुमसे, तुमसे एक मैशो भी आप सुन रहे थे सुनने वालों। देवेंद्र सिंह सिवनाथ और सविता सिंह प्रोग्राम में आ रहे हैं, दो साथी जीवन के।

अभी आप सुन रहे थे दो साथी जीवन के, दविंदर सिंह सिवनाथ के साथ में सविता सिंह आपको सुनाने वाले थे। इंद्रनील रॉय और प्रशांत रामचेतन आ रहे हैं प्रोग्राम में एक मेदली के साथ।

काश भी की आवाज में भी आप सुन रहे थे ये मेडली सॉन्ग। रायन मनोरथ और जॉयस शिव प्रसाद प्रोग्राम में आ रहे हैं आपके आ जाने से।

जॉयस शिव प्रसाद और रायन मनोरथ की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों। उमर वाहिद हुसैन आ रहे हैं प्रोग्राम में। घटा छा गई है,

जाना कहाँ है, अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी चलते चलते से हमने पेश किया है बप्पीडा और यानी स्वर्गीय बप्पीडा और श्लोक्षणा पंडित जी आपको सुनाने वाले थे। कांची रे प्रीत मेरी साची, रुक जा न जाओ दिल तोड़ के, फ्रॉम द मूवी हरे रामा हरे कृष्णा।

कांची रे काची रे, प्रीच मेरी साची, रुक जा न जा दिल तोड़ के। अभी आप सुन रहे थे नी सुताना रे, प्यार भरा मौसम आया।

0: अभी आप सुन रहे थे लता जी के साथ में मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले थे नी सुल्ताना रे प्यार भरा मौसम आया। कजरा लगा के गजरा सजा के बिजली गिरा के जइयो ना, किशोरा के साथ में लता जी आपको सुनाने वाले हैं।
1: चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन

किशोर डा और लता जी की आवाज में अभी आप सुन रहे थे कजरा लगा के गजरा सजा के बिजली गिरा के जइयो ना। जरा सा हम देखें, जी हाँ, किशोरडा, किशोरडा के साथ में लता जी आपको सुनाने वाले हैं सुन चंपा सुन तारा। और ये गीत हम पेश करते हैं इस एक खास व्यक्ति के वास्ते, और वो है शर्ली जी। जब के हमारे प्रोग्राम को सुन रही है तो शर्ली, आप ही के नाम हम ये गीत चलाते हैं।

0: सुन चंपा सुन तारा, अभी आप सुन रहे थे किशोर दा और लता जी की आवाज़ में। लता जी प्रोग्राम में आ रहे हैं एक बार फिर से सुनने वालों। ए बाबू ले लो नारियल पानी।
1: ले लो ना नारियल।

आप सुन रहे थे ये लो रे ले लो बाबू पी लो नारियल पानी, और नारियल पानी के बाद ये होना चाहिए।

वही देता वही लेता उसी का है संसार, एक आता एक जाता ये जग का है व्यवहार। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा मृत्यु समाचार पुकारा जा रहा है, ध्यान दीजिए या गौर फरमाइए। परिवार के दो मृत्यु समाचार है कार्यक्रम में। Den Haag, Tegelen, Limburg, Leiderdorp और Zeeland से परिवार गंगा और बाकी परिवार बहुत दुख के साथ ये सार्वजनिक सूचना दे रहे हैं कि शुक्रवार 14 अगस्त को शाम 5:30 बजे यानी 7:15 पर 85 साल के आयु में इंदलीफ तहत फन 85 यार दो सार चंद्रसेन गंगा और नन कुमार गंगा का बहनोई, कारला गिरधारी का नंदोई, निर्मला गीता प्रवीण और रेखा का फुफ्फा, 17 लड़कों का नाना परनाना और फुफुआ ससुर और ननवा ससुर, लिम्बेरुख तेखलन से सुरेन सुनीता धुरेन मनोज जयदेव आनंद का मौसा, 30 लड़कन यानी दर्त केंद्रन, आजा नाना पर नाना, मौसवा ससुर अजवा ससुर और ननवा ससुर, बड़की सविता गंगा की छोटकू, लिम्बेरुख से बहन हम लोगों की बहन आनी इंद्रावती सरजू मिश्र गंगा के पति, बेटा स्वर्गीय हैंक जयराज का पिता, सेलंत औ सुबेरुख के रहने वाला श्रीमान पुण्य आत्मा कोंद्राज सिंबुदत्त सरजू मिश्र का स्वर्गवास हो गया है उनके निवास स्थान पर। आप उन्हें ज्योतिष के नाम से भी जानते थे और सूरीनाम में वेल्खलेखन के निवासी था और वेल्खलेखन स्कूल का लेरार था। ऐतफात यानी कि शव का दर्शन आप कर सकते हैं है सेवस लंत में ननसन बान कंत व्यक्तवेई खुश में। हम दोहराते हैं है सेव सलंत ननसन बान कंत व्यक्तवेई खुश में। अर्थी को आप देख सकते हैं 18 अगस्त को 5 बजे से 5:45 बजे तक 7:15 तत्कवर्थ फोर्सेस और अगले दिन 9:15 को हलफ सेफ से क्वर्थ ओफर सेफ तक हम दोहरा रहे हैं। देखने का अवसर है 8 अगस्त 7:15 तो 7:45 यानी 5 से क्वर्थ फोर सेस तक और वंसदाग 9 अगस्त को हलफ सेफ से क्वर्थ ओफर सेफ तक। आने वाला दोंदरदाग 20 अगस्त शाम 2 बजे ननसन बान कंत व्यक्तवे के क्रेमेटोरियम में दाह क्रिया किया जाएगा खुश में। जानकारी के लिए तार का नंबर दिया गया है 06-22-24-12-31। खबर को हम दोहरा रहे हैं। Den Haag, Tegelen, Limburg, Leiderdorp, Zeeland से समस्त परिवार गंगा और बाकी परिवार बहुत दुख के साथ ये सार्वजनिक सूचना दे रहे हैं के दो सार चंद्रसेन गंगा और नन कुमार गंगा का बहनोई, कारला गिरधारी का नंदोई, निर्मला गीता प्रवीण और रेखा का फुफ्फा, 17 लड़कों का नाना परनाना और फुफ्फा ससुर और ननवा ससुर, लिम्बेरुख तेखलन से सुरेन सुनीता धुरेन मनोज जयदेव आनंद का मौसा, 30 लड़कों का आजा नाना पर नाना, मौसवा ससुर अजवा ससुर और ननवा ससुर, बड़की सविता गंगा के छुटकू, आनी इंद्रावती सरजू मिश्र गंगा के पति, बेटा स्वर्गीय हैंक जयराज का पिता,
Zeeland के निवासी Oost-Zeeburg के निवासी श्रीमान पुण्य आत्मा कोनराड सिंह दत्त का स्वर्गवास हो गया है 85 साल की उम्र में बीते हुए शुक्रवार 14 अगस्त 5 को, जिन्हें आप ज्योतिष के नाम से भी जानते थे और वेल्खलेखन में सूरीनाम में उनका निवासी था वहाँ का और वहाँ का स्कूल का लेरार भी था। शव को आप देख सकते हैं हेत सेव सलंत नंसनबान कंक वेख त्वेई खुश में दिनसदाग 18 अगस्त के 17 तत् क्वार्ट फोर सेस और वोसदाग 19 अगस्त को 6:30 से 7:15 तक। डाकरिया आने वाला दोंदरदाग 20 अगस्त को 14 यानी शाम 2 बजे नंसनबान कंत व्यक्तवेई खुश सेलंक में। जानकारी के लिए तार का नंबर दिया गया है 0622 42 31।

0: दूसरा मृत्यु समाचार सुनने के लिए ध्यान दीजिए या गौर फरमाइए।
1: सेलांत हुस ओ सुबेरख।

शकुंतला और शर्मिला सर्जमिसिर के पिता दो दामाद राज या राजन रौफ कुंदन पांडेय और हेमंत रघुनाथ का ससुर। चार बेटा शोस बोइक अर्नोल्ड रामोन रोमेयो सर्जमिसिर का पिता। 20 नाती नातिन पोता पोतिन पर नाती पर नातिन नदमाद और नतपतो के आजा पर आजा नाना पर नाना अजवा ससुर और ननवा ससुर। तीन बहुएं यानी सोन दोख्तर्स गीता श्यामलाल उषा तुलसी अरुणा अयोध्या का ससुर। पत्नी इंद्रावती सर्जमिसर का पति। स्वर्गीय बेटा हैंक जयराज का पिता। सीलांत ओ सुबुर के रहने वाला श्रीमान पुनिया आत्मा कोनराद सिंबुदत्त सर्जमिसर का स्वर्गवास हो गया है उनके निवास स्थान पर। आप उन्हें ज्योतिष के नाम से भी जानते थे और सूर्य नाम वेलखलीगन के निवासी था और वहाँ वेलखलीगन का स्कूल का लेरार था। शव के दर्शन आप कर सकते हैं एथ फार्थ सेंट्रम हेथ सेव सलोंद ननसन बान कंत वेख्तवी खुश में दिनसदक 18 अगस्तस को 17 यूर से क्वार्थ वर्ड सेस्तक और 19 अगस्तस को हाल्फ सेफ से क्वार्थ ऊफर सेफ तक। डाक्रिया डोंदरदक 20 अगस्तस 14 को शाम 2 बजे वही एड्रेस पर ननसन बान कंत वेख्तवी खुश सेलोंद में। खबर को हम दोहरा रहे हैं सीलंत हुस ओ सुबर से समस्त परिवार सरजू मिसिर कुंदन पांडेय रघुनाथ श्यामलाल और तुलसी बहुत दुख के साथ ये सार्वजनिक सूचना दे रहे हैं कि फ्रेदक 14 अगस्तस को क्वार्टो फोर फेफ शाम को 85 साल की उम्र में इन द लीफ तेत फन फेफ तख तखियार। दो बेटियां शकुंतला शर्मिला के पिता। दो दामाद राजन या राज रौफ कुंदन पांडेय और हेमंत रघुनाथ का ससुर। चार बेटे शोर्स या बॉय के भी कह सकते हैं अर्नोल्ड रामोन रोमेयो सर्जमिसिर का पिता। 20 नाती नातिन पोता पोतिन पर नाती पर नातिन नदमाद और नदपतो का आजा पर आजा नाना पर नाना अजवा ससुर और ननवा ससुर। गीता श्यामलाल उषा तुलसी अरुणा अयोध्या का ससुर। पत्नी इंद्रावती सर्जमिसिर का पति। स्वर्गीय बेटा हैंक जयराज का पिता। सेलांत ओ सुबुर के रहने वाला श्रीमान पुण्य आत्मा कोनराद सिंबुदत्त सर्जमिसिर का स्वर्गवास हो गया है उनके निवास स्थान पर। आप उन्हें ज्योतिष के नाम से भी जानते थे और सूरीनाम में वेलखलीगन के निवासी था और साथ ही साथ वहाँ वेलखलीगन का स्कूल का लेरार। शव का दर्शन आप कर सकते हैं अर्थ फार्थ सेंट्रम हेथ सेव सलंत ननसन बान कंत वेख्तवी खुश में दिनसदक 18 अगस्तस को 17 यूर तौर क्वार्ट फोर सेस और वंसदक को 19 अगस्तस को हल्फ सेफ से क्वार्ट ऊफर सेफ तक। डाकरिया डोंदरदक 20 अगस्तस शाम 2 बजे ननसन बान कंत वेख्तवी खुश सेलंत में डाकरिया किया जाएगा। बैठक घर पर नहीं है और जानकारी के लिए तार का नंबर दिया गया है 0620 24 12 31।

हिंदुस्तानी रेडियो, सभी परिवार सरजू मिसिर, सभी परिवार रघुनाथ, कुंदन पांडे, तुलसी, श्यामलाल, सरजू मिसिर और गंगा को शोक संवेदना प्रकट कर रहा है। सहन शक्ति के लिए प्रार्थना किया जा रहा है।

द्वारा पावन हिंदुस्तानी रेडियो सभी परिवार को सुख सुविधा प्रदान कर रहा है। फिर दीर्घ से ले दे सभी सावन सुनने वाले से निवेदन है कि ये खबर को और आगे तक पहुंचा देने को यहाँ तक था ये मृत्यु समाचार। आइंदा

0: 21, 22 en 23 augustus. Voor meer informatie www.minimsummerfestival.nl.
1: कुछ बैठक गाना के साथ हम आप सभी के सेवा करने वाले हैं और लोकल सॉन्ग्स तो जरा सा हम देखें एक बहुत सा सुंदर गीत है ये सुनने वालों और आपको सुनाने वाले हैं विशाल हीरा जी और ये गीत खास करके हम पेश करते हैं माता बेट्सी जी के वास्ते तो चलिए मिलकर सुनते हैं और गीत का बोल क्या है भैया ताके लड़की तो भौजी क्या करे है आप खुद सुन लीजिएगा

होता है सुनने वालों, अभी तो आपने सुने हैं विशाल हीरा जी की आवाज़ में, भैया ताके लड़की तो लड़की शर्माए, और भौजी के का होवे है मैं कुछ नहीं कहूँगी। गलिया से गलिया

0: We got the whole world shaking.
1: Shake it baby, shake it. अभी आप सुने हैं और हम सोचते हैं कि आप अपने घर पर जरूर भी यानी शेक किए होंगे, और ये तो हमेशा होता है यानी बड़ी तादाद में होता है सुनने वालों के। जब लोग शराब पीते हैं तो क्या होता है, संदीप बदलू जी की आवाज़ में आप खुद सुन लीजिएगा।

संदीप बदलू जी की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे कि बुढ़वा क्या खोजे है और बुढ़वा और क्या करे है, ये हम आपको सुनाते हैं।

अभी आप सुन रहे थे बुढ़वा बेईमान मांगे करेली के चोखा। और करेली के चोखा के बाद हरिदत्त जयराम जी आपको सुनाने वाले हैं पैसा के मैया पहाड़ चढ़े।

ऐसा के माई पहाड़ चढ़े अभी आप सुन रहे थे हरिदत्त जयराम जी की आवाज़ में। बार बार बगिया में कोयल ना बोले।

अभी आप सुन रहे थे दविंदर सिंह शिवनाथ जी की आवाज़ में बार बार बगिया में कोयल ना बोलत। और दविंदर सिंह शिवनाथ जी की आवाज़ के बाद हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते वारिका राम सुकुल जी को, सजन मोरे आचार्य।

आप सुन रहे थे वादिका रामसुकुल जी की आवाज़ में उड़ उड़ जाए निंदिया मोड़ी। आपके आ जाने से

रायन मनोरथ और जॉयस सुपरशाद जी की आवाज में भी आप सुन रहे थे। आपके आ जाने से हो गए तेरे हो गए मैशअप बाय वानिका रामसुकू।

हो गए तेरे हो गए मैशअप अभी आप सुन रहे थे वादिका रामसुकू जी की आवाज़ में। सुनने वालों यहाँ तक आप यानी सरासा हम देखे, हाँ हाँ हाँ, पहले ये गीत हो जाए।

0: सुनने वालों, यहाँ तक आपने सुने हैं हमारे हिस्से का प्रोग्राम जो समाप्त होने पर आया। जिस तरह से हमने अपने हिस्से के प्रोग्राम पेश किए हैं, हमें आशा है कि प्रोग्राम आप लोगों को जरूर पसंद आए हुए होंगे। अगर जिंदगी बाकी रहा तो आने वाले रविवार को हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए हमारी प्यार भरी, राम राम नमस्कार, खुदा हाफिज। Have a blessed day.
1: मैं तुझे छोड़।
0: Until next Sunday.

सूरज छिपे अदरी बदरी, चंद्रमा छिपे अमावस आए, पानी के बूंद पतंग छिपे, मीन छिपे हिच्छा जल पाए, भोर भये पर चोर छिपे, मोर छिपे फागुन ऋतु आए, सौ घूंघट के पट ओंठ छिपे, पर चंचल नारी छिपे न छिपाए।

मैथ मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस और लता जी के साथ ये गीत हम आपको सुनाए हैं। फिल्म फर्श में से निकाल कर हमने पेश की लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर। फाउन हिंदुस्तानी पर आप चून हैं, जो लोग चून किए हैं आपका स्वागत है। चलिए आपका स्वागत करते हुए हम एक सुरेश वाडेकर जी के गीत आपको सुनाते हैं। चलो सुरेश वाडेकर की आवाज़ में ये गीत।

सुरेश वाडकर आपको सुनाए ये शानदार गीत निगाह यार ने कि एक ऐसा जादू भर दिया, और ये गीत हमने पेश की आज के कार्यक्रम में। अगला गीत हम पेश कर रहे हैं, जी हाँ, देखते हैं ये प्यारा गीत भी जहाँ तक मेरा ख्याल है फर्श से निकाल रहे हैं, तो इस तरह से हम इसे चला रहे हैं, सुना रहे हैं।

शिकार करने का आए, शिकार होके चले, ये गीत हमने पेश किए फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। ये अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं, और क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये गीत सुनाऊँ इस तरह से, माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस।

लता जी और माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस दोनों मिलकर आपको सुनाइए ये प्यारा गीत हमने पेश की। चलिए एक गीत हमने प्लेयर में रखे हैं और ये भी लता जी के फिल्म है आओ प्यार करें। जी हाँ, तो चलो सुनते हैं आओ प्यार करें में। और तो गाना तो है लेकिन कौन सा गाना मैं चलाने वाला हूँ लता जी की, ये सुनिए।

सो गाने से पता चलता है से स्तोखबत फ्रॉम प्लान। लता जी की आवाज़ में ये शानदार गीत हम आपको सुनाएं। योजना तो बहुत बनाया मौसम के देख

देखकर बहरहाल फ़ौन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा हमने ये गीत पेश की। तो अगर ये गीत पेश किए तो चलो हम आपको सुनाते हैं ये गीत उसके बाद।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साज पर ये गीत पेश हुआ, लता जी की आवाज़ में, फिल्म आन मिलो सजना में से हमने निकाले हैं और आपको सुनाए हैं। अगला गीत हमने प्लेयर में एक रखे हैं, इसकी थोड़ी बयाना बता देते हैं। ये गीत गाया गया है सी रामचंद्रा, जो म्यूजिक डायरेक्टर है, उन्हीं के साज पर लता जी के साथ फिल्म अलबेला में। तो बात ऐसे है कि अब कौन रात्रि के 12 बजे रात्रि को यहाँ स्टूडियो आएगा और बैठकर आपको ये गीत सुनाएगा, मेरे बस के तो बात नहीं है। शायद कभी साल में एक बार हो जाए कि 12 बजे रात्रि को मैं यहाँ आऊँ, स्टूडियो में बैठूँ और आपको पहले बताऊँ कि गंगा ये गीत चलाने वाला है, ये नहीं करेंगे। चलिए ये गीत हम अभी आपको सुना देते हैं, क्योंकि 12 बजे रात्रि का कौन इंतज़ार करेगा। चलो हम आपको सुनाते हैं ये शानदार गीत, इस तरह से आ रहा है, 12 बजे रात्रि को जलाना चलाना था, हम आपको अभी सुना देते हैं इस तरह से।

नमस्ते नमो नमः हरि ओम। एकदम भैया बीरबल के स्टाइल में कैसे रह लो आप लोग साथियों, पावन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज का दुनिया का दोस्तों, स्वीकार कीजिए हम लोगों का सागर सा भरा प्यार नमस्कार, और साथ ही साथ कबूल हो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का मोहब्बत से भरी हुई सलाम को, और आप सभी को भी हरि ओम हरि बोल सत श्री अकाल। मैं हूँ आप लोगों का सेवक खिदमतगार सुरेन कृष्णा दूत भगवान दीन, जिसे आप ढेर सारे श्रोता गुण आकाशवाणी के दोस्तों भैया बीरबल के नाम से भी जानते हैं। बुधवार का रात्रि का प्रोग्राम संगीतकार का दास्ता नामक कार्यक्रम खलिंग में गीत और गजल एंड ऑल इज गोल्ड, यही आशा उम्मीद लेकर आया हूँ यारो ये अति सुंदर प्रोग्राम को लेकर कि आप सभी को आज का सिलेक्शन भी जरूर पसंद आएगा। तो जहाँ पर भी हो, जिस हाल में हो, घर पे हो या तो मोटर कार में सफर कर रहे हो या तो काम कर रहे हो, दुनिया के जो भी कोने में कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का ढेर सारा प्यार दुलार प्रेम और मोहब्बत आप सभी तक पहुँचे, हमारे फूल टीम की तरफ से आप सभी को एक शुभ रात्रि पेश है मिथिलफील प्लेजीर के साथ। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो इस बलिया इंटरनेट के लहर द्वारा फाउन FM.NL पर आप लोग दुनिया के छोटे छोटे कोने में भी 24 घंटे रोजाना लगातार फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुन सकते हो। तो जो भी रेडियो का काम आप फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना चाहते हो यारो, तो जरूर आप तार करें फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के दफ्तर में फनमान डॉक्टर फ्रेडा टाइडस कंतोर उर उप द फॉलोइंग द टेलीफोन नंबर्स कंतोर 97362247 और स्टूडियो का तार का नंबर है 97362247। क्वालिटी गारंटी और सर्विस के साथ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो ये काम आप लोगों के लिए भी चैन से करने के लिए इंतजार में रहते हैं साथियों, एनी तो vergeten है onze kwaliteit is altijd uw garantie en natuurlijk voelt u zich altijd lekkerder bij फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। toch सबसे पहले आप श्रोताओं ने कितनी सुंदर अति सुंदर प्रोग्राम को सुन रहे थे, जो खास करके हम लोगों का बड़का भैया द वन एंड ओनली मास्टरो चंद्रसेन गंगा जी ने आप श्रोताओं के सेवा में पेश किया, जिस तौर तरीक से हम लोगों का बड़का भैया श्री गंगा जी आप सभी को सदियों से सेवा करते आ रहे हैं, यह आशा उम्मीद है उनका पेश किया हुआ प्रोग्राम जो जबरदस्त था आप सभी को जरूर बेहद पसंद आया हुआ होगा। आज के लिए तहे दिल से धन्यवाद भाई गंगा जी फूल टीम की तरफ से, और आपको भी एक शुभ रात्रि। अगर आपके घर पे खुशी का दिन मनाया जा रहा है, हो सकता है कि आपके घर पे एक बेटा है तो एक बेटी ने जन्म दिया होगा, या तो किसी के जन्मदिन आप सभी धूमधाम से मिलकर मना रहे है, विवाह संस्कार के सीजन तो चल रहा है, तो हो सकता है कि आप विवाह संस्कार की तैयारियां में लगे हो। जो भी खुशी के दिन जश्न आप सभी मना रहे हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के फूल टीम की तरफ से आप सभी को ढेर सारे बधाइयां ही बधाइयां, खुशियां ही खुशियां, प्यार मोहब्बत के साथ पेश है ओ परम पिता परमेश्वर से हम सब मिलकर यही विनती दुआ करते हैं कि आप सभी के नेक मनोकामनाएं नेक इरादे सभी पूर्ण होते जाए, और हो सकता है कि आपके घर पे एक दुख का घड़ी आन पड़ा है, आप एक मातम में हो गमी में, तो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो अपने फूल टीम के साथ आपके दुख में उपस्थित है मातम में शरीक है, और ऊपर वाले से हम सब मिलकर विनती दुआ करते हैं कि आप सभी को सहन शक्ति और शांति प्रदान करते रहे। जो बीमार राजा है आपके तंदुरुस्ती के लिए हम सब मिलकर विनती दुआ करते हैं कि आप जल्द से जल्द तंदुरुस्त हो जाए, बेहतर हो जाए, चंगा हो जाए, नित्य फरखेत है जिंदगी का मजा रोजाना लेते रहना बंधु, और हो सके तो हम लोगों को भी सुनते रहना और थोड़ा बहुत हम लोगों के बारे में जरूर बातें शाते करते रहना ना। फनहर्त बीतर्शा आप
कामयाब हो तो हमारे फुल टीम की तरफ से आप सभी को तहे दिल से बधाइयां ही बधाइयां। और हो सकता है बंधु कि आज या कल परसों कुछ कारण हुआ हो जो आप कामयाब नहीं हुए, तो चिंता के कोई बात नहीं है, मूर्ख इस वीर दख। और हम लोग तो यही सीखा है ना, सगरो घरे स्कूल पर कमुआ पर नोट ऑफ खीफ है, सदा कोशिश जारी रखना तो हो सकता है कि कामयाबी भी आपके कदमों को जल्द से जल्द आकर चूम सकते है ना। देखो मेहनत तो है दौलत का यारी, नोट ऑफ खीफ है वो तो खरेट नेफर गिफब्रदर नंगसिता। So lovely, lovely, and blessings to all of you. And natuurlijk bedankt voor het luisteren. गला का हाल तो आप सभी सुन रहे हैं। Songs have been revolution, who can take last from Maya, एक बैनर है। साथियों प्रोग्राम का शुरुआत तो मैं सदियों से करता आ रहा हूँ और आप सभी को भी अवश्य देश में प्रवेश हुए तो आपको भी एक सुस्वागतम फुल टीम की तरफ से। और अगर आप देश को छोड़ के विदेश यात्रा पे जा रहे ओम एर्गेंस आंदेश वकांसी तो फिर नतीलक आपको भी हमारे फूल टीम की तरफ से एक शुभ यात्रा फैन फकांसी। तमाम लोग सुनते हैं हम लोगों को इंटरनेट के लहरों द्वारा और फिर लैपटॉप टैबलेट और स्मार्टफोन, तो आप भी सुनिए हम लोगों को। सो बनती हम ब्राइव टी फन ऑलस ऑफ द होस्ट हैं फन यू फेवरेट रेडियो स्टेशन एंड दैट इज नेचुरली हमारे देन हाफ शेयर का द वन एंड ओनली फाहून हिंदुस्तानी रेडियो 24 आवर्स एट योर सर्विस। प्रोग्राम का शुरुआत तो मैं सदियों से करते आ रहा हूँ वही शिक्षा सबक से भरा हुआ बयान के साथ। सुरों का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब एड फिल्म ललकार 1972 एन गकॉम्पोनेड डोर ब्रूडर्स कल्याण जी आनंद जी। और उसके बाद आप कुछ पुराने नगमे सुनेंगे जो मैं खास करके आज का इस रात्रि के लिए सेलेक्ट किया हूँ। उसके बाद तकरीबन 9 से साढ़े 10 बजे तक आप सिर्फ नगमे सुनेंगे जिन फिल्मों में महान अभिनेता द ग्रेट एक्टर धर्मेंद्र जी ने काम किया है। बीच में कुछ ज्ञान की बातें है, शेर शायरी भी है, तो हमारा और आपका साथ तकरीबन 10:30 बजे रात्रि तक चलेगा। साथियों स्टूडियो की तरफ जब मैं आ रहा था तो तापमान तकरीबन 19 और 20 डिग्री के दरमियान था, थोड़ा बहुत धूप भी निकला है, तो ज़रूर प्रोग्राम को सुनते रहना, मज़े लेते रहना। कुछ पुराने गाने लेकर आया हूँ, खास करके अगर आप पुराने गाने को पसंद करते हैं तो ज़रूर प्रोग्राम को सुनते रहना। रफी साहब जी आप सभी के लिए ये शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान हमेशा की तरह प्रोग्राम का शुरुआत।

Chiavat he, the masterpiece of composing by Maestro Anil Biswas ji, aur kya gala thi us zamane mein bilkul koyal ki tarah Bharat Ratna Queen of Melody Lata Mangeshkar ji ka. अगला बयान एक और बहुत ही पुराना सॉन्ग है उट दियार नीख दी अख्तम फेर तक फिल्म शहनाज और लाते हैं आप सभी के सेवा में शुरू का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब जी के जवानी के आवाज आप सुनिए संगीतकारा अमीर बाई कर्नाटकी का बनाया हुआ ये मीठा धुन उपनाम इस नीचो डेंडरंत मा सुनने के काबिल जरूर है ऐ दिल तुझको नींद न आई डिग्रेड रफी साहब जी ईकाब

Die Sundar Bayan uit de film China is gecomponeerd door Amir Bhai Karnatki aur awaaz tha Suro ka Bacha Mohammad Ravi Sahab ji ka. Found Hindustani Radio pe aap tun hai budhwar ka ratri ka program Sangeetkaron ka Dastaan namak karyakram khalink mein geet aur ghazal old is gold aap sun rahe hai aur ghadi ki taraf dekhta hu to sathiyo 18 मिनट गुजर चुका है 19 अगस्त 2026 बुधवार का रात्रि का प्रोग्राम आप श्रोताओं के सेवा में लाइव ओल्ड इज गोल्ड गीत और गजल अगला बयान सुरो का देवी लता जी एक बार फिर टुगेदर विद मैस्ट्रो अनिल विश्वास

Beautiful song uit de jaren eind 40. Queen of Melody, Let I Take a Beautiful Avance Me. Gecomponeerd door Zwanike Mahan, music director Sri Anil Viswasji. अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं. कुछ यादें हैं महान फिल्म डायरेक्टर ग्रेट नितिन बोस जी के बनाए हुए फिल्म में से आप कुछ नगमे सुनिए रवि साहब जी के ब्यूटीफुल आवाज में.

क्या बात है, अति सुंदर बयान आप श्रोता सुन रहे थे। और ये भी सुरोका देवी द क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी के कुछ पुराने गाने अगर 48 दार्तुसनेन। और आप तो सुन रहे हैं कि कम सा मधुर और कोयल सी आवाज उस जमाने में था लता जी का। और क्या बात है, एक और महान गायक सुरों का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी रफी साहब जी के कुछ गाने आप सुनिए। एड फिल्म्स फ्रॉम नितिन बोस, महान फिल्म डायरेक्टर उस जमाने का, द ग्रेट रफी साहब।

revisat di che beautiful was me up sure sat you che sat ye ati sundar bayan direct by Nitin Bose. तो साथियों 5 मिनट गुजर चुका है 8:30 बजकर, तो कुछ शेर शायरी हो जाए ना हमारे शेर्स के चाहने वालों के लिए, गौर फरमाए। कुछ 2 लाइन शेर शायरी है साथियों, यही तो खूबी है ना 2 लाइन शेर शायरी का, कि इतने कम लफ्जों में लोग पूरे कहानी सुना देते हैं। तो गौर फरमाएं। अर्ज किया है साथियों कि ठंड बढ़ गई है, आ जाओ फिर थोड़ा आग के पास। ठंड बढ़ गई है, आ जाओ फिर थोड़ा आग के आस पास, घूम कर फेरे ले लेते हैं। अगर सुंदर होना गुनाह है यारो, अगर सुंदर होना गुनाह है तो पक्का तुम बेगुनाह हो। मुझको मंजूर तेरा नाम की तोहमत, मुझको मंजूर तेरे नाम की तोहमत, तुम पे मरते हैं साफ कहते हैं। फासला ऐसा कि उसे देख भी नहीं सकते, फासला ऐसा कि उसे देख भी नहीं सकते, दूर कुर्बते ऐसी कि वो रग रग में रहता है। एक अजीब से बेताबी है तेरे बिन, एक अजीब से बेताबी है तेरे बिन, रह भी लेते हैं और रहा भी नहीं जाता। एक वक्त था जब बातें कभी खत्म भी नहीं होती, एक वक्त ऐसा था जब बातें कभी खत्म भी नहीं होती थी, एक वक्त अब है जब बातें ही नहीं होती। आगे के प्रोग्राम में कोशिश करूंगा कुछ और सुनाने को साथियों। एक बार फिर द ग्रेट रवि साहब के, तो आप सुन चुके अभी आ रहा है प्रोग्राम में, एक बार फिर लता जी को लाते हैं प्रोग्राम में। कुछ पुराने गाने सेलेक्ट किया हूं टुगेदर विद उस जमाने के महान संगीतकार, लेखक, सिंगर भी था मास्टरो अनिल विश्वास जी, और सुनाती है आप सभी को बदली तेरी नजर तो नजारे बदल गए। क्या बात है, मिल के सुनते सुपर हिट ओल्ड सॉन्ग, एवरग्रीन सॉन्ग।

Song composed arranged by Maestro Anil Vishwas ji aur awaaz thi Suroka Devi the great Lata ji ka. 18 मिनट बाकी है साथियों, 9 बजने में एक जबरदस्त सॉन्ग आप सुनिए और गाने वाला है पद्मश्री महेंद्र कपूर जी आप सभी के खिदमत में, और ये भी एक फिल्म है जिनमें डायरेक्टर था द ग्रेट नितिन भोज जी, और उन्हीं के याद में ये थी सुंदर बयान आप सुनिए महेंद्र कपूर जी के जबरदस्त सॉन्ग।

ती सुंदर बयान है आप श्रोताओं की सेवा में पेश किया गया खसोमदोर पद्मश्री महेंद्र कपूर जी इन फिल्म गरेगिस्टेट दोर नितिन बोस। 14 मिनट बाकी है साथियों 9 बजने में, तो एक और अति सुंदर बयान एवरग्रीन सॉन्ग आप सुनिए क्वीन ऑफ मेलोडी भारत रत्न लता मंगेशकर जी के ब्यूटीफुल आवाज में। कटी है अब तो जिंदगी और एक बार फिर कॉम्पोनेट और द ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर और कॉम्पोजर वन एंड ओनली मास्टर अनिल विश्वास।

0: सुंदरबयान दिल को छू लेने वाले नगमी लता जी को पांच आप सुन रहे थे, और ये भी पांचों ने अरेंज और कंपोज किया महान म्यूजिक डायरेक्टर द ग्रेट ग्रेट ग्रेट अनिल विश्वास जी। साथियों, एक अति सुंदर समाचार है जो आप सभी को जरूर जानना चाहिए, खास करके अगर आप एक डाई हार्ड किशोर दा का फैन हो तो। किशोर कुमार से क्लासिकल सरप्राइजेस सॉन्ग के बारे में आप सभी को मालूम है, तो और कुछ बातें जो आपको नहीं मालूम है तो ये कहानी में जरूर आप सुन लीजिए किशोर दा के बारे में।
1: दोस्तों, लेजेंडरी आर्टिस्ट एंड सिंगर किशोर कुमार को यूं तो एक क्लासिकल बेस सिंगर के रूप में नहीं जाना जाता, पर आज इस वीडियो में हम किशोरदा के शास्त्रीय रागों पर आधारित कुछ ऐसे गीत आपको बताने जा रहे हैं जो आपको हैरान कर देंगे कि कैसे बिना क्लासिकल की ट्रेनिंग के किशोरदा शास्त्रीय रागों पर बेस्ड गीतों को बखूबी गा लिया करते थे। इस वीडियो में हम न सिर्फ आपको किशोरदा के गाए क्लासिकल बेस्ड सॉन्ग्स के बारे में बताएंगे, बल्कि उन गीतों से जुड़े दिलचस्प किस्से भी आपके साथ शेयर करेंगे। और अगर आप एक किशोर कुमार फैन हैं, तो इस लिस्ट का आखिरी गीत आपके लिए एक प्लेजेंट सरप्राइज होने वाला है, जो शायद आपने पहले नहीं सुना होगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल सिंगिंग इमोशन। फ्रेंड्स, किशोर कुमार की गिनती भारतीय सिनेमा के ऑल टाइम ग्रेट प्लेबैक सिंगर्स में होती है। किशोर कुमार की आवाज़ हमेशा से अच्छी थी, पर उनका सफ़र हमेशा आसान नहीं रहा। जबरदस्त सिंगिंग टैलेंट के बावजूद क्लासिकल म्यूजिक की फॉर्मल ट्रेनिंग न होने की वजह से उन्हें करियर के शुरुआती दिनों में एज ए सिंगर काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। 1950 और 60 के दशक में कई पॉपुलर म्यूजिक डायरेक्टर्स जैसे नौशाद, ओपी नैयर, सलील चौधरी, मदन मोहन इत्यादि किशोरदा के क्लासिकल में ट्रेंड न होने की वजह से उनसे गीत नहीं गवाते थे। हालांकि एसडी परमन ने किशोरदा के रॉ टैलेंट को पहचाना, उसे तराशा और उन्हें देवानंद की फिल्मों में गाने का मौका दिया। पर जब किशोर कुमार एक सिंगर के तौर पर पॉपुलर हो गए, तब आम धारणा के विपरीत किशोरदा ने कई ऐसे मधुर और सदाबहार गीत गाए जो शास्त्रीय संगीत पर बेस्ड थे। बेशक उनका सिंगिंग स्टाइल टिपिकल क्लासिकल रागों पर बेस्ड न रहा हो, पर उनके गाए कई गीतों में परंपरागत शास्त्रीय संगीत का रस और माधुर्य साफ झलकता है। पॉपुलर ट्यून्स को क्लासिकल की बारीकियों के साथ मिलाने के उनके हुनर ने एक गायक के रूप में उनकी बहुमुखी प्रतिभा को और गहराई से दर्शाया है। आज इस वीडियो में हम किशोरदा के कुछ ऐसे चुनिंदा गीतों पर रोशनी डालेंगे जो क्लासिकल बेस्ड हैं और विभिन्न रागों पर आधारित हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं राग शिवरंजनी पर आधारित एक गीत की। शिव और रंजनी के जोड़ से बने राग शिवरंजनी की उत्पत्ति के बारे में मान्यता है कि जब शिव अपना तांडव कर रहे थे तो उन्हें शांत करने के लिए साधु संतों ने यह राग गाया था। शास्त्रीय संगीत में यह राग शांत रस में दुख, विरह और गहरे प्रेम को प्रकट करता है तथा एक डिवाइन एक्सपीरियंस का एहसास देने वाला राग माना जाता है। इस राग को गाने का समय है मध्य रात्रि यानी कि मिडनाइट। राग शिवरंजनी पर आधारित किशोरदा का ये पॉपुलर गीत 1976 में आई फिल्म महबूबा से है। इस गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी साहब ने और म्यूजिक दिया था आर डी बर्मन ने। गीत के बोल हैं, मेरे नैना सावन भादो। इस गाने की रिकॉर्डिंग से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी है। जब आर डी बर्मन ने गीत की कंपोजिशन तैयार की तो फिल्म के डायरेक्टर शक्ति सामंता को भी डाउट था कि ये गीत किशोरदा गा नहीं पाएंगे, लेकिन राजेश खन्ना और आर डी बर्मन किशोरदा से ये गीत गवाना चाहते थे। पर किशोरदा ने ये शर्त रखी कि आर डी बर्मन पहले लता मंगेशकर का वर्जन रिकॉर्ड करें। फिर उन्होंने एक सप्ताह का समय मांगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि लता जी के रिकॉर्डेड वर्जन से कॉपी करके वो अपना वर्जन गाएंगे। एक हफ्ते बाद जब उन्होंने अपना वर्जन रिकॉर्ड किया तो इस गीत ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनकी गूंजती आवाज में गाना मनमोहक लग रहा था और गाने के फीमेल वर्जन से भी बेटर लग रहा था। इस गीत को सुनकर शायद ही कोई कहेगा कि किशोर कुमार ने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा नहीं ली है। आर डी बर्मन का कहना था कि किशोर कुमार एक कंप्लीट सिंगर थे। एक इंटरव्यू में पंचम कहते हैं, लोग हमसे कहते हैं कि हम क्लासिकल बेस्ड गीत क्यों नहीं बनाते, पर आज हमारे पास किशोरदा जैसे सिंगर हैं ही कहां जो कि ऐसे गीत गा पाएं। राग शिवरंजनी पर आधारित किशोरदा के कुछ अन्य गीत हैं, वो साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, फिल्म मुकद्दर का सिकंदर, कब के बिछड़े हुए हम, फिल्म लावारिस। अब बात करते हैं राग झिंझोटी की। झुमरू फिल्म में राग झिंझोटी पर आधारित किशोरदा का गीत कोई हमदम न रहा बहुत मधुर बन पड़ा है। राग झिंझोटी एक हल्का और चंचल राग है जो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक के लिए परफेक्ट है। इस राग का समय है रात्रि का दूसरा पहर यानी रात्रि के 9 से 12 बजे तक। राग झिंझोटी पर आधारित किशोर कुमार का ये गीत भारत की प्रथम महिला संगीतकार सरस्वती देवी द्वारा बनाया गया था और इस गीत को सबसे पहले किशोर कुमार के बड़े भाई अशोक कुमार ने अपनी फिल्म जीवन नैया में गाया था। किशोर कुमार को अपने बड़े भाई की फिल्म का ये पुराना गीत बहुत पसंद था और जब उन्होंने अशोक कुमार को बताया कि वो इस गीत को अपनी फिल्म झुमरू में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो दादामुनि अशोक कुमार ने किशोरदा से कहा कि ये गीत बहुत मुश्किल है, तुम नहीं गा पाओगे क्योंकि इसमें अड़ा चौताल की 14 मात्राएं हैं। किशोरदा बोले, मुझे चौताल वगैरह तो नहीं पता लेकिन इतना जरूर पता है कि ये गाना मैं तुमसे अच्छा गाऊंगा। और जैसा कि किशोरदा ने कहा था, राग झिंझोटी पर आधारित ये गीत किशोरदा ने बेहद खूबसूरती से गाया और ये उनके बेहतरीन गीतों में शामिल है। फिल्म चोर मचाए शोर में किशोरदा का गीत घुंघरू की तरह ये भी राग झिंझोटी पर ही आधारित है। अब बात करते हैं राग भैरवी की। दोस्तों, राग भैरवी एक अत्यंत मधुर राग है और इस कारण इसे सिर्फ प्रातः समय ही नहीं बल्कि हर समय गाया और बजाया जा सकता है। सभी इवेंट्स और समारोहों का समापन इसी राग से करने का एक ट्रेंड सा बन गया है। म्यूजिक डायरेक्टर आरडी बर्मन द्वारा कंपोज किया हुआ अमर प्रेम का गीत चिंगारी कोई भड़के राग भैरवी पर ही आधारित है। इनफैक्ट इस फिल्म का हर एक गीत एक मास्टरपीस है जो अलग अलग रागों पर आधारित है, जैसे कि राग खमाज पर आधारित गीत कुछ तो लोग कहेंगे, राग कलावती पर आधारित गीत ये क्या हुआ इत्यादि। रिपोर्ट्स के अनुसार एक बार ग्रेट क्लासिकल सिंगर पंडित भीमसेन जोशी जी ने अमर प्रेम मूवी में किशोरदा के गाए गीतों की खूब तारीफ की थी और क्लासिकल पर उनकी पकड़ और नोट्स का ट्रांजिशन देखकर मराठी में कहा था, उपकार जाले तो सीखा नहीं शास्त्रीय संगीत, आमचा पोता वार पाए आला आस्ता। शुक्र है कि किशोर कुमार ने क्लासिकल नहीं सीखा वरना हमें टफ कॉम्पिटिशन का सामना करना पड़ता। दोस्तों, राग भैरवी पर आधारित किशोर कुमार के अन्य गीत हैं आते जाते खूबसूरत फिल्म अनुरोध, चेहरा है या चांद खिला है फिल्म सागर, हमें तुमसे प्यार कितना फिल्म कुदरत, चिंगारी कोई भड़के फिल्म अमर प्रेम। दोस्तों, बात करते हैं राग यमन या यमन कल्याण की। दोस्तों, राग यमन कल्याण एक बहुत ही लोकप्रिय शास्त्रीय राग है। कई बॉलीवुड गाने इसी राग पर आधारित हैं। इस राग को रात्रि के प्रथम पहर या संध्या समय गाया बजाया जाता है। यह राग बहुत मीठा लगता है और कई बेहतरीन गजलों को प्रेरित कर चुका है। खामोशी फिल्म में गाया किशोर कुमार का गीत वो शाम कुछ अजीब थी यमन राग पर ही आधारित है। इस गीत को हेमंत कुमार ने संगीत दिया था और गुलजार ने लिखा था। इस गीत को किशोरदा अपने 10 बेस्ट गीतों में से एक मानते थे। राग यमन पर आधारित किशोरदा के कुछ अन्य गीत हैं, आपके अनुरोध पे फिल्म अनुरोध, इस मोड़ से जाते हैं फिल्म आंधी और सवेरे का सूरज फिल्म एक बार मुस्कुरा दो। दोस्तों, अब बात करते हैं राग पहाड़ी की। राग पहाड़ी की उत्पत्ति बिलावल थाट से मानी गई है। इस राग को गाने बजाने का समय रात्रि का प्रथम पहर है। राग पहाड़ी पर किशोरदा की पकड़ बहुत अच्छी थी जिससे कि उनकी आवाज में गाए इस राग के सारे गीत बहुत मधुर बन पड़े हैं। एसडी बर्मन और आरडी बर्मन ने राग पहाड़ी पर बेस्ड कई गीत किशोरदा से गवाए हैं, जैसे करवटें बदलते रहे सारी रात हम फिल्म आपकी कसम, कोरा कागज था ये मन मेरा फिल्म आराधना, गाता रहे मेरा दिल फिल्म गाइड और फूलों के रंग से फिल्म प्रेम पुजारी इत्यादि। दोस्तों, अब राग मारू बिहाग पर आधारित किशोरदा का जो क्लासिकल बेस्ड गीत हम आपको बताने जा रहे हैं वो गीत आपके लिए भी एक सरप्राइज होने वाला है। इस गीत में आपको न सिर्फ प्लेबैक सिंगिंग में बल्कि स्क्रीन पर भी शास्त्रीय गायक किशोर कुमार का एक निराला अवतार देखने को मिलेगा और ये गीत सच्चे मायनों में किशोरदा के फैंस के लिए एक ट्रीट है। दोस्तों, राग मारू बिहाग एक बहुत ही मधुर राग है और इसे गाने का समय है रात्रि का दूसरा पहर यानी कि रात 9 बजे से 12 बजे तक। दोस्तों, 1963 में आई किशोरदा की फिल्म एक राज का गीत पायल वाली देखना शास्त्रीय राग मारू बिहाग पर आधारित होने के कारण संगीतकार चित्रगुप्त जी इसे पहले मोहम्मद रफी से गवाना चाहते थे पर बाद में किशोरदा ने अपनी सहज प्रतिभा और भावनाओं की गहराई से इस गीत को जीवंत कर दिया। इस गीत में किशोरदा ने साबित कर दिया कि शास्त्रीय संगीत का ज्ञान न होने के बावजूद एक गायक अपनी आवाज और भावनाओं से किसी भी गीत को अमर बना सकता है। राग मारू बिहाग पर आधारित किशोरदा के कुछ अन्य गीत हैं, सलामे इश्क मेरी जान फिल्म मुकद्दर का सिकंदर, आ हम सफर प्यार की सेज पर फिल्म चटपटी। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो हमारे चैनल सिंगिंग इमोशन के एक्टिव सब्सक्राइबर श्रीकांत शाह जी की खास फरमाइश पर बनाया गया था। श्रीकांत जी, थैंक यू सो मच फॉर इंस्पायरिंग अस टू मेक दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया
0: तो साथियों, आप सुने ना कि किशोरदा है वैसा नेचुरल टैलेंट और शास्त्रीय संगीत, क्लासिकल संगीत ना सीखने के बाद बिना भी ये इतने डिफिकल्ट, इतने मुइलक गाना गाए हैं हम लोगों के लिए कि सदियों हम लोग सुनते रहेंगे लेकिन मन नहीं भरेगा। तो इसलिए जब मैं किशोर दा को जब अनाउंस करता हूँ ना, तो मैं कहता हूँ ना संगीतकारों का बादशाह और शहंशाह, तो आप सुन रहे थे कि कितना महान फनकार हम लोगों का किशोर दा थे। तो इन्हीं शब्दों से आप आज का ये जो पहला अध्याय है ना, गीत और गजल और इस गोद का, मैं समाप्त करता हूँ। तो अभी आप विज्ञापन सुनिए, देश विदेश का समाचार, उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। स्टे ट्यून ऑन, आप ही का तो आवाज है, जनता का आवाज है, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज है। ब्रेक के बाद मिलता हूँ साथियों, कहीं जाना मत।
2: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Fahon Hindustani Radio.

कौन हिंदुस्तानी रेडियो का बुधवार का रात्रि का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। हमारे फूल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम। तमाम टैक्सी ड्राइवर जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम कार्यक्रम में। अनतिलक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स, सोशल लोबी लोबी एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। अनतिलक बदंत फॉर हेट लाइस्टरन। 8 मिनट गुजर चुका है 9:19 अगस्त 2026 का ये रात्रि का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। ई गीत और गजल ओट इज गो। तो जो भी रेडियो का काम हो, खास फरमाइशें, जरूरी खबरें, इश्तिहारे डेंकम फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश होना, अपमात पर हम लोग बनाकर और जितने बार आप चाहेंगे बंधु उतने ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे, और ये भी किफायत सस्ते दाम में। मैं तो सदियों से आप श्रोताओं से यही कहते आ रहा हूँ कि फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप सभी को ऑल इंडिया भर में नहीं मिलेगा यारो। आजमा कर तो देख। Die Jankari bellen van maandag tot vrijdag tijdens kantooruren op de volgende telefoonnummers: kantoor 070-365-2247 en studio Katarka nummer 070-362-2077. Job Radio Kakamona, denk aan Fahon Hindustani Radio. Je bent van harte welkom. इसी तरह हम लोगों के बारे में चर्चा करते रहना यारो, रेकलाम बनाते रहना, क्योंकि आप लोग है तो हम लोग भी है, और इसके लिए हमारे फूल टीम के तरफ से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। चुनाव के लिए फनफा हूँ हिंदुस्तानी रेडियो, तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द हम लोगों का मेम्बर बने और को भी बनाए। आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है। And we have ook onze eigen karaoke team waar heel veel omroepers ook live zingen. Dus volg onze social media's en onze omroepers, dan hoort u of ziet u binnenkort waar wij live voor u gaan zingen, en dan bent u ook van harte welkom. Kabiaker is chota sa mota sa फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का फैमिली जो काफी बड़ा बन चुका है, आप भी आकर उसमें शामिल हो जाए ना। सभी जानकारी आपके लिए आप तार करे फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे टेरेस कंट्रोल यूर ऑफ द फॉलोइंग टेलीफोन नंबर 070-365-2247, dan wordt hij automatisch doorverbonden naar onze teamleider, de one and only maestro Johnny number 1. Wabi aker hem loka member bene, oh roko bhi bene. U bent van harte welkom. Aur isi tarah hum logo ke bare mein charcha karte rehna. Hats off to all of you and natuurlijk bedankt voor het luisteren. Wada ke mutabik ek hidam badhte hai program ki taraf. Saathiyon, bite hue hafte hum log pahunch chuke the film Resham ki dori tak. जी हाँ, आप अब नगमे सुनेंगे जिन मूवीज में महान अभिनेता द ग्रेट एक्टर धर्मेंद्र जी ने काम किया है। और रेशम की डोरी में धर्मेंद्र ने काम किया है मलकाय हुस्न द ग्रेट एक्ट्रेस कुमुत चुगानी एंड मलकाय हुस्न द ग्रेट सैरा बानो जी के साथ महान संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन के साथ है। अल्फाजे है उस जमाने के महान लेखक डिग्रेट नीरज जी का। तो अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं। फिल्म रेशम की डोरी, क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री, द वन एंड ओनली आशा भोसले जी के ब्यूटीफुल आवाज में सोना है चांदी है। एंजॉय द म्यूजिक।

बयान सोना है चांदी है, एड फिल्म रेशम की डोरी उड़ने वाली था डगड़े आशा जी। 17 मिनट गुजर चुका है 9 बजकर साथियों, और आप चुन हैं आप ही का मन चाह रेडियो स्टेशन पर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो फ्रॉम द हेग सिटी, और आप सुन रहे हैं गीत और गजल ओल्ड इज गोल्ड नामक कार्यक्रम। और गाने चल रहे हैं जिन फिल्मों में महान अभिनेता द ग्रेट एक्टर धर्मेंद्र जी द ही मैन ने काम किए है। अगला बयान चमका पसीना, और एक बार फिर लाते हैं संगीतकारों का बादशाह और शहंशाह द वन एंड ओनली हसीनों का पुजारी किशोर दा शंकर जय किशन के साज पर इन दीवर के अल्फाजे।

ब्यूटीफुल सॉन्ग और कुछ गुनगुना दिया था सैरा बानो भी जी रवि साहब जी के ब्यूटीफुल आवाज में शंकर जय किशन के साज अल्फाज था एंडीवर जी का और फिल्म रेशम की डोरी इतनी थी फिर सिंगर। चार मिनट बाकी है साथियों 9:30 बजने में अगला बयान आखिरी बयान होगा लास्ट सॉन्ग है फिल्म की जोड़ी का। लेकिन उससे पहले पद्म भूषण मन्ना डे जी से आप सुनिए शंकर जय किशन के सांच पर नीरज जी के लिखा हुआ ये अति शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान खसौंद और मन्ना डे।

क्या बात है द ग्रेट मन्ना डे जी के ब्यूटीफुल आवाज में इतनी सुंदर बयान आप श्रोताओं सुन रहे थे। आई द फिल्म रेशम की डोरी ने रिफीरेंस सेफ द कॉम्पोनेडोर द मास्टर शंकर जय किशन। तीन मिनट व्यतीत हो चुका है 9:30 बजकर साथियों, तो कुछ ज्ञान के बातें हो जाए ना। पुराने जमाने के कुछ विद्वानों और कुछ इस जमाने के पढ़े लिखे लोगों मशहूर लोगों ने कुछ बहुत ही ज्ञान से भरे हुए बातें लिखे हैं सीताते के रूप में, जो मैं आप श्रोताओं के साथ बांटना चाहता हूं। ये आशा उम्मीद लेकर इन बातों से हमेशा की तरह कुछ ना कुछ तो हम लोग सीखते ही रहेंगे, तो जरा गौर फरमाए। अर्ज क्या है हम लोगों का, अपना बुद्ध भगवान द ग्रेट सिद्धार्थ जी ने, और बुद्ध भगवान ने कहा है साथियों की ब्लेफ नीत हांग इन हेट फॉर लीड ड्रोम नीत फंद टू कॉम्स्ट मार कॉन्सेंट्रेर ये खेस्ट ऑफ हेट हेडग मोमेंट। आगे में कहा है श्री महाज्ञानी द ग्रेट अल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने कि द टाइम बिस्टात अलेन मार ओमदात अंदर्स अलस तगलाइक सो गेबोरे, ओक एन हेले गुड। महा फुटबॉल का ज्ञानी एंड ग्रोस्ट फुटबॉलर अलर टाइड ऑफ नीदरलैंड मास्टर योहान क्रुइफ ने कहा है यारों कि अक्ष स्नेलर विल स्पेलन कुन ये वेल हार्डर लोपन मार इन वीजन बपाल द बाल द स्नेलहेट फन हेट स्पेल। विंस्टर चर्चल ओइट एन लेडर फन एंगलैंड कहा है स्पारन इस प्रख्तिख vooral als je ouders het voor je hebben gedaan, zeer zeker. Mahagyani Hari Mulish ne bhi kuch kaha hai, aur wo kehta hai yaro, nou een hele erg, ja voor de gelovigen is dit een hele vrede en harde citaat. Hari Mulish ne kaha hai saathyo, de kerk is het bewijs dat God niet bestaat. Eentje van ons Boeddha Bhagwan Sridharta ji ne kaha hai ki een goed leraar moet zowel inspireren als irriteren. Johan Wolfgang van Goethe ne kaha hai yaroki de enige echte liefde is de onmogelijke liefde. Nog eentje van Albert Einstein Mahagyani jo atom bom banaya tha, aur wo kaha hai yaro ki ek geloof in Spinoza's God die zich openbaart in een ordelijke harmonie van alles wat bestaat, niet in een God die zich bemoeit met het lot en handelen van mensen. En de laatste van vanavond is een Arabische spreekwoord en luidt als volgt: een boek is als een tuin die men in zijn zak draagt. Dus dat je bij jou kuch gyan ke baate suna, jo kuch gyanio ne hum logo ke liye likh kar chale gaye, kuch jeevit hai, kuch bhagwan ko pyare ho gaye. Ye sho me lekar in baaton ko main aap se bhi tak pahunchaya ki in baaton se kuch na kuch to hum log hamesha ki tarah seekhte hi rahenge. 7 मिनट गुजर चुका है 9:30 बजकर यारो, अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं और दिखा जाए ये है आखिरी सॉन्ग द फिल्म रेशम की डोरी 1974 शंकर जय किशन के साथ। पर आप सुनिए आशा भोसले जी के ब्यूटीफुल आवाज हसरत जयपुरी के अल्फाज़े जोहरा जमाल हूँ और बेमिसाल।

beautiful song Zohra Zamal Hoon Be Mishaal uit de film Resham Ki Dori. Aakhri Bayan uit de film Resham Ki Dori. En gezongen door Aisha Bhosleji. Gecomponeerd door Shankar Jaikishan. Geschreven door Hasrat Jaipuri. To Satyo Sabhi Nagme film Resham Ki Dori ka main aap sabhi ko suna chuka hoon. अब निकल चलते हैं आप सभी को एक मूवी जो आल्सो रिलीज किया गया था 1974 में फिल्म पत्थर और पायल. देखा जाए चार गाने हैं इस फिल्म में और इस फिल्म में धर्मेंद्र जी ने काम किया है मलकाय हुस्न सेंट्वीर फ्राउ हेमा मालिनी. महान अभिनेता डिग्रेट विनोद खन्ना जी ने भी इस फिल्म में काम किया है और डिग्रेट अजीत Jai Shri T. and Natuurlijk. Rajendranath, meer bekend als Charlie Natuurlijk. To film Patthar aur Payal mein se aap nagme sunenge. Pehla bayan sunane ko ja rahe hain aap sabhi ko ek baar phir Queen of Rock and Roll from the Bollywood film industry, the great Asha ji. Aur alfaze hai endeavor वर्मा मलिक और गुलशन बावरा ने ये चार गाने इस फिल्म को मिलके लिखे हैं. डिब्रोडर्स कल्याण जी आनंद जी के साज है तो मिलके सुनते हैं ना मिला तू नजर द ग्रेट आशा भोसले जी.

The great Aisha Bosley जी के ब्यूटीफुल आवाज में इतनी सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना. एक फिल्म पत्थर और पायर ने थी फिर इन सेवित कंपोज बाय द ब्रदर्स कल्याण जी आनंद जी. मेरा मिनट रह गया है साथियों 10 बजने में और आप चुन है फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पर बुधवार का रात्रि का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और देखा जाए नगमे चल रहे हैं जिन मूवीज में महान अभिनेता द ग्रेट एक्टर धर्मेंद्र जी ने काम किए हैं और हम पहुंच चुके हैं तो फिल्म पत्थर और पायल जो रिलीज किया गया था निगेटिव फियर एंड सेफ्ट में. अगला बयान तो है लेने आई मैं आई संवरिया. एक बार फिर भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी के ब्यूटीफुल आवाज में

बयान श्रोताओं ने सुन रहे थे जो पेश किया गया क्वीन ऑफ मेलोडी आशा भोसले जी के ब्यूटीफुल आवाज में और कुछ साथियों के साथ।

फन हम हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9735 तक 3 तक 7 फेटा फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

पावन हिंदुस्तानी रेडियो का बुधवार का रात्रि का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। 19 अगस्त 2026 का ये हसीन बुधवार रात्रि का प्रोग्राम चल रहा है। 5 मिनट गुजरने वाला है 10 बजकर यारो। फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। हम टैक्सी ड्राइवर जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम कार्यक्रम में। एनाटोलिक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स सोशल ओबिलोबियन ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू एनाटोलिक बदंग फॉर हेट लाइस्ट्रेन। जो भी रेडियो का काम हो डेंक अनफा ऑन हिंदुस्तानी रेडियो। सभी जानकारी 07 23 26 47 पर आप तार करें या तो स्टूडियो का तार का नंबर है 07 23 26 27। Bent u nog geen lid van Vagon Hindustani Radio, to binti guzaris nibeden he kya bijel se jelt hem loka member bane, aur oko bhi banae, aapko to dheer sare fayda hi fayda hai. 07 23 26 47 par aap taar kare. इसी तरह हम लोगों के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करते रहना साथियों, और इसके लिए हमारे फुल टीम की तरफ से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। एक आखिरी बयान रह गया है सुनाने को, एड फिल्म पत्थर और पायल एक बार फिर आयशा भोसले जी के ब्यूटीफुल आवाज में कंपोनेटेड और खबरूरस कल्याण जी आनंद जी और अल्फाज है गुलशन बावरा जी का कौन हूं मैं।

0: Beautiful song uit de film Pathar Aur Payal Reet Habi. Us film ka aakhri song aur dekha jaye Queen of Rock and Roll Aisha Bhosle ji ke beautiful awaaz mein iti sundar bayan aap sun rahe the. Composed by the brothers Kalyan ji, Anand ji. 10 मिनट गुजर चुका है 10 बजकर तो साथियों सभी गाने फिल्म पत्थर और पायल का आप सुन चुके हैं. अब लेकर चलते हैं आप सभी को एक फिल्म जो ऑल्सो रिलीज किया गया था 1974 में और उस फिल्म से आप सुनिए फिल्म पॉकेट मार होना चाहिए. इस फिल्म में धर्मेंद्र जी ने काम किया है एक बार फिर मलकाय हुस्न द ग्रेट सैरा बानो जी से साथ और महान संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जोड़ी है आनंद बख्शी के अल्फाजे. तो उसी फिल्म से आप नगमे सुनिए और अगला बयान सुनाने वाला है आप सभी को सुरों का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब जी की कि मैं बड़ी मुश्किल में हूँ ना तुझसे दूर जा सकूँ. रफी साहब जी के आवाज में मिलके सुनते यदि सुंदर बयान एड फिल्म पॉकेट मार
1: ना

Beautiful song, wonderful song, refusable que beautiful avance me aap sun rahe the. Main badi mushkil mein hoon. Jabardast song composed by the great Lakshmikant Pyare Lal ji aur Fazita Anand Bakshi ji ka by the film Pocket Mar 1974. अगला बयान बंदा परवर में कहा, लेकिन उससे पहले साथियों कुछ आखिरी शेयर्स हो जाए ना।

तेरी जरूरत तेरी इंतजार ये तन्हाए आलम, तेरी जरूरत और तेरी इंतजार ये तन्हाए आलम, थक कर मुस्कुरा देता हूं मैं जब रो नहीं पाता हूं। कसम से तुझे पाने की ख्वाहिश तो बहुत थी, कसम से तुझे पाने की ख्वाहिश तो बहुत थी, मगर मुझे तुझसे दूर करने की दुआ करने वाले ज्यादा निकले। She was crying because he was not with her, but she is happy now because she know that how much her parents love her. मुझे तो आज पता चला कि मैं किस कदर तन्हा हूँ, मुझे तो आज पता चला मैं किस कदर तन्हा हूँ, पीछे जब भी मुड़ कर देखा तो मेरा साया भी मुंह फेर लेता है। One thing I learned about life, one thing I learned about life is you can be important to someone, but not at all the time remembered at my friends. तो ये था कुछ आखिरी शेयर्स आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में, और देखा जाए तो वक्त भी धीरे धीरे करीब आ रहे है। लेकिन उससे पहले ये अति सुंदर बयान एड फिल्म पॉकेट मार, एक बार फिर रवि साहब जी के ब्यूटीफुल आवाज में कंपोज बाय लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, और इस बार अल्फा से आनंद बख्शी जी का बंदा परवर मैं कहां।

Beautiful song Benda Perwar ada film Pocket Mar Ravi Sahab ji ke beautiful awaz mein ye cheez sundar bayan aap shrotao sun rahe the. 8 minute reh gaya hai 7:30 yo 10:30 bajne mein agla bayan aid film पॉकेट मार. और इस बार फिर रफ़ी साहब जी के ब्यूटीफुल आवाज़ में आप सुनिए ये अति सुंदर बयान कि आ जा मुझे है तेरा इंतज़ार, और वो भी चोरी से चुपके से.

श्रोताओं के सेवा में पेश किया गया एड फिल्म पॉकेट मार क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी के ब्यूटीफुल आवाज में आप सुन रहे थे ये अति सुंदर बयान कंपोज बाय महान संगीतकार जोड़ी द ग्रेट लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और अल्फाज़े था महान लेखक द ग्रेट आनंद बख्शी जी का और आवाज तो आप सुन रहे थे कोयल की तरह मधुर आवाज दवाने डोड़ी क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी का।

तक था आज का मेरे हिस्से का कार्यक्रम जो समाप्त होने का आया, क्योंकि वक्त भी धीरे धीरे दौड़ दौड़ कर आकर करीब पहुंच चुका है। पूरे 10:30 का वक्त हो चुका है यारो, तो वादा के मुताबिक मुझे आपसे भी इजाजत दे या शोमीर लेकर घर को जा रहा हूँ कि जिस तौर तरीके से मैं कोशिश किया आप श्रोताओं को सेवा करने में, या शोमीर है कि मेरा पेश किया हुआ प्रोग्राम आप सभी को पसंद आया हुआ होगा। अगर जिंदगी कुदरत ने साथ दिया तो आने वाले रविवार शाम 5 बजे मैं आप सभी से फिर मिलने वाला हूँ आवाज के जरिए सरनामी संगीत लेकर। Het eerste en het tweede uurtje, zoals altijd, eerste uurtje bij het Ghana, tweede uurtje kuch sarnami Indian pop music. En uske baad, saat se takriban 8 baje tak, sirf nene superhit songs from the Bollywood film industry. तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना साथियों, मजे लेते रहना, एक से एक साथियों तैयार है आप सभी को पूरे रात सेवा करने के लिए। तो मुझे आप सभी इजाजत दे, जाते जाते कुछ ना कुछ गुनगुना देता हूँ आदत से जो मजबूर हूँ ना।

फूल को भी तुझको रफी जी की, मोहम्मद रफी जी का ये सॉन्ग है। इस मूवी में हीरो था अजीत भाई, जो विलन के रोल अब लोग अब वो करते हैं। तो निगत इंद्रियों से स्टका ये सॉन्ग था। तो अगला गीत की ओर हम चल, ये गीत जो है नहीं किया तो करके देख, मेरे ख्याल से इस गीत को हम पहली बार सुन रहा हूं। नहीं किया तो करके देख, और ये है नाइटिंगेल नहीं मुकेश का ये सॉन्ग है, करोड़ों का दिल चुराने वाला, द हार्ट ऑफ द मिलियन, माइटी मुकेश का ये सॉन्ग है और मूवी का नाम है चार दिल चार रहे। और 1900 का ये सॉन्ग है दोस्तों, आओ सुना जाए।

तो करके देख, ये तीतल तो बहुत मस्त है भैया। और ये है हाथ जाओ दीवाने आए, मूवी का नाम है सिंगापुर, ऑल इज गोल्ड, फोर

हट जाओ और दीवाने आए, और कौन सा दीवाना आएंगे, हम आप लोग के लिए हम छोड़ देते हैं। और सुना जाए माइती मुकेश का ये सॉन्ग है।

फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाउंड के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9735 तक 20 तक 7 फेटा फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो।

फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाउंड के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तैयार कीजिए 9735 3 तक 7 फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो।

0: दिल तुम्हारा।
1: मर के भी हजारों को याद आएंगे, मर के भी हजारों को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। सुनने वालों की सेवा में विजयंती का प्यार भरा नमस्कार। आपका जन्मदिन है, आपके घर पर एक नई मेहमान आए हैं, यानी एक बेटा या तो एक बेटी ने जन्म लिया है, या तो कोई जश्न आपके घर पर है, तो आप सभी को हम बधाइयाँ पेश कर रहे हैं। जो बीमार है या लाचार है, तो भगवान से तंदुरुस्ती के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। जिसके घर पर विपत पड़ी है, भगवान उन्हें सहन शक्ति प्रदान करे। जो हमारे देश में मेहमान बनकर आए हैं, हम आपको हृदय से स्वागत करते हैं, और जो विदेश जाने वाले हैं, हम आप सभी को एक शुभ यात्रा पेश कर रहे हैं। जहाँ पर भी आप हैं, जिस हाल में भी आप हैं, आप सभी को भी हम याद करते हैं, और जो लोग इंटरनेट द्वारा हमारे प्रोग्राम को विदेश में सुन रहे हैं, आप सभी को भी हम याद करते हैं। सुनने वालों, अब से लेकर दिन में 12 बजे तक मैं आप सभी के सेवा करने वाली हूँ, इसी आशा के साथ कि जिस तरह से मैं अपने हिस्से के प्रोग्राम पेश करूँगी, आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी। सुनने वालों, अभी आप सुन रहे थे ओपनिंग सिलेक्शन मेरे हिस्से के प्रोग्राम में। आप बुलाए और मैं ना आऊँ, ये तो हो ही नहीं सकता। सुनने वालों, हमेशा की तरह जब मैं अपने प्रोग्राम को शुरुआत करती हूँ, तो एक भजन से मैं अपने प्रोग्राम को शुरुआत करती है यानी हूँ, और आज की इस हसीन रविवार की सुबह की प्रोग्राम में चलिए ये सुंदर सा भजन हम पेश करते हैं। आप सभी के वास्ते, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, जुबिन नौतियाल जी आपको सुनाने वाले हैं।

ये तो सच है सुनने वालों कि मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। और मैं क्यों ये कहती हूँ, क्योंकि दुर्गा माँ जो है वो बड़ा दयावान है। एक गीत हम पेश करते हैं उन सभी के वास्ते जो बीमार है या लाचार है, और ख़ास करके भी ये गीत को हम पेश करते हैं सोनी संतू जी के वास्ते जो बीमार है और आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहे हैं। तो चलिए मिलकर ये गीत सुनते हैं।

अभी आप सुन रहे थे गिरना नहीं है गिर के, संभलना है जिंदगी, रुकने का नाम मौत है, चलना है जिंदगी। और ये गीत हमने पेश किए हैं उन सभी के वास्ते जो बीमार है या लाचार है, और ख़ास करके सोनी सांतू जी के वास्ते जो बीमार है और आहिस्ता आहिस्ता भी ठीक हो रहे हैं। कल चमन था आज एक सहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ।

फ्रॉम द मूवी खानदान से हमने पेश किए हैं कल चमन था आज एक सेहरा हुआ देखते ही देखते ये क्या हुआ। मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले थे। मैं किसे अपना कहूँ आज मेरा कोई नहीं।

द माइती मुकेश और लता जी मिलकर सुना रहे थे मैं किसे अपना कहूँ आज मेरा कोई नहीं। छलिया है फिल्म का नाम और इसी फिल्म से हम पेश करते हैं मेरे टूटे हुए दिल से कोई तो आके ही पूछे।

फिल्म छलिया से भी आप सुन रहे थे। मेरे टूटे हुए दिल से कोई तो आज ये पूछे कि तेरा हाल क्या है। इसी फिल्म से एक और गीत हम पेश करने वाले हैं सुनने वालों, और गीत का बोल है छलिया मेरा नाम छलना मेरा काम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको बस मेरा सलाम।

चलिया मेरा नाम, चलना मेरा काम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम। सुनने वालों, एक बहुत सा सुंदर गीत हम पेश करने जा रहे हैं, वो भी देवी कारला छांगूर जी के वास्ते, जो सूरीनाम देश के रहने वाली है और उन्हें ये गीत बेहद पसंद है और मेरे प्रोग्राम उनको भी बेहद पसंद है। और ज़रा से मैं बतला दूं कि ये कारला छांगूर कौन है। ये कारला छांगूर जी अशना छांगूर जी की माँ है। तो चलिए मिलकर सुनते हैं।

होता है होता है सुनने वालों, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना ऐसे मनमौजी को मुश्किल है समझाना। और ये गीत हमने पेश किए है देवी कारला छांगूर जी के वास्ते, जो सूरीनाम देश के रहने वाली है और जिन्हें ये गीत बेहद पसंद है और मेरे प्रोग्राम भी। तेरा जलवा जिसने देखा वो तेरा हो गया, मैं हो गई किसी की कोई मेरा हो गया। लता जी आपको सुनाने वाले हैं और ये गीत हम पेश करते हैं स्वर्गीय रोशनी राधा किशुन जी के नाम पर, उनकी याद में, क्योंकि उन्हें ये गीत बेहद पसंद थी।

तेरा जलवा जिसने रेखा वो तेरा हो गया, मैं हो गई किसी की कोई मेरा हो गया। और ये गीत हमने पेश किया है स्वर्गीय रोशनी राधा किशन जी की याद में। अय्या सुकु सुकु आई आई।

अपनी डगर मंजिल है मेरी प्यार। अय्या करूँ मैं क्या, सुकू सुकू खो गया दिल मेरा, सुकू सुकू

0: को मत ऐ दोस्तो यूं ही मुझसे मत डरो, मेरे भोले प्यार को नादानी ना समझो। हाथों में जो हाथ है जीवन भर का साथ है, सीधी सच्ची बात है कहानी ना समझो।
1: अय्या सुकू सुकू
0: अय्या करूं मैं क्या, सुकू सुकू खो गया दिल मेरा, सुकू सुकू

0: सहमी सहमी हर घड़ी बिन चाहत क्या जिंदगी जीता मैं किस लिए
1: अय्या
0: करूँ मैं क्या सुकू सुकू हो गया दिल में।

अय्या सुकु सुकु अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों, एक बहुत सा सुंदर मैदली हम चुन कर रखे हैं आप सभी के वास्ते। बताएंगे नहीं कि कौन सा मैदली है, चलिए मिलकर सुनते हैं।

जो हम इस गीत में ढूंढते थे सुनने वालों, वो तो नहीं मिला, लेकिन जब मिलेगा तो हम आपको ज़रूर सुनाएंगे। ए गुलबदन मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी प्रोफेसर।

ऐ गुलबदन, ऐ गुलबदन, तुझे देख के कहता है मेरा मन, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए। अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों, सुनने वालों प्रोग्राम को हम आगे में बढ़ाते हैं और एक बहुत सुंदर गीत हम चुन कर रखे हैं आप सभी के वास्ते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

तेजाब है फिल्म का नाम और इसी फिल्म से हमने पेश की है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। नमक हलाल है फिल्म का नाम और इसी फिल्म से हम पेश करते हैं जवानी जानी मन।

आशा भोसले जी की आवाज में भी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी नमक हलाल। कसम पैदा करने वाली है फिल्म का नाम, और इसी फिल्म से हम पेश करते हैं झूम झूम झूम बाबा।

अभी आप सुन रहे थे झूम झूम झूम बाबा, और झूम झूम झूम बाबा के बाद हम पेश करते हैं क्या, आप खुद सुन लीजिएगा।

The title from the movie Disco Dancer से हमने पेश किए हैं सुनने वालों, कविता कृष्णमूर्ति और सुदेश भोसले जी आपको सुनाने वाले हैं। जरा सा हम देखे जुम्मा चुम्मा दे दे, आज तो जुम्मे का दिन नहीं है, लेकिन अगर आप चुम्मा देना चाहते हैं तो ज़रूर दे दीजिएगा, ऐसा ना हो कि आपको बाद में पछताना पड़े।

जुम्मा जुम्मा दे दे, और जुम्मा जुम्मा दे दे के बाद हम पेश करते हैं दे दे। क्या दे दे बताऊं? नहीं बताऊंगी।

बैंड वाले भाई साहब, एक मिनट, क्या है कि हमारी मीना यहाँ कहीं ऊपर रहती है, हमें उसका पता मालूम नहीं, आप थोड़ा बाजा बजाएंगे हैं, पैसे बाद में, एक दो तीन चार।

वाले प्यार करते हैं शान से, जीते हैं शान से और मरते हैं भी शान से। ये तो सच है सुनने वालों। इसी फिल्म से एक और गीत हो जाए।

सुनने वालों, यहाँ तक आपने सुने हैं हमारे हिस्से का प्रोग्राम जो समाप्त होने पर आया। जिस तरह से हमने अपने हिस्से के प्रोग्राम पेश किए हैं, हमें आशा है कि प्रोग्राम आप लोगों को जरूर पसंद आए हुए होंगे। अगर जिंदगी बाकी रहा तो आने वाले रविवार को हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, हमारी प्यार भरी राम राम नमस्कार, खुदा हाफिज। Have a nice weekend and take care of yourself. Till next time.

आप सुन रहे थे शीघ्र होता है जब कयामत का। अदवाइती मुकेश जी आपको सुनाने वाले थे। फ्रॉम द मूवी माइल ऑफ से हमने पेश किए हैं। रुक जा ऐ हवा, लता जी आपको सुनाने वाले हैं। ये सुंदर सा गीत आप सभी के वास्ते हम पेश करते हैं। फ्रॉम द मूवी शागिर्द से आप सुनेंगे।

0: अभी आप सुन रहे थे रुक जा ए हवा, हमने पेश किए हैं आप सभी के वास्ते। इंसान का जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसका दिल है। इंसान का जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसका दिल है। अगर दिल ही साफ नहीं तो चमकते चेहरे का कोई फायदा नहीं। फ्रॉम द मूवी आरसू से हम पेश करते हैं, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं और गीत का बोल है ए नर्क इसे मस्ताना।
1: And

अभी आप सुन रहे थे एनर्जी से मस्ताना, बस इतनी शिकायत है। एक बहुत सा सुंदर सॉन्ग हम चुनकर रखे हैं आप सभी के वास्ते, और लता जी आपको सुनाने वाले हैं मोहम्मद रफ़ी जी के साथ में। लेकिन ये गीत पेश करने से पहले मैं आप सभी से कुछ कहना चाहती हूँ, और वो ये है, ज़िंदगी सब्र करना सिखाती है, ज़िंदगी सब्र करना सिखाती है और सब्र जीना सिखाता है।

लता जी के साथ में मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले थे हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए। जिंदगी तो हल्की फूकी सी है, जिंदगी तो हल्की फूकी सी है, सरा बोझ तो ख्वाहिशों का है। मैंने देखा तूने देखा फ्रॉम द मूवी दुश्मन से हम पेश करते हैं लता जी के साथ में किशोर दा आपको सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे मैंने देखा तूने देखा, लता जी के साथ में किशोर दा आपको सुनाने वाले थे। फ्रॉम द मूवी दुश्मन से हमने पेश किए हैं। कोशिश करना कि जिंदगी में वो शख्स आपको हमेशा मुस्कुराता हुआ मिले, जो आपको रोज आईने में दिखाई देता है। कान में झुमका, चाल में झुमका, फ्रॉम द मूवी सावन भादो से हम पेश करते हैं। मोहम्मद रफी आपको सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे कान में झुमका, जाल में ठुमका, लगे पशासी झटके। और अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं वो ये है। लेकिन ये गीत पेश करने से पहले मैं सर आप सभी से कुछ कहना चाहूँगी, और वो ये है, इंसान तो हर जगह पैदा होते हैं मगर इंसानियत कहीं कहीं जन्म लेती है। कहाँ चल दिए इधर तो आओ, फ्रॉम द मूवी झुक गया आसमां से हम पेश करते हैं।

आप सुन रहे थे झुक गया आसमां से, कहाँ चल दिए इधर तो आओ मेरे दिल को ना ठुकराओ, बोल सितमगर मान भी जाओ। मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे। हाँ, मैंने भी प्यार किया मुकेश जी के साथ में सुमन कल्याणपुर जी आपको सुनाने वाले हैं। लोग हमारी कदर उस वक्त नहीं करते जब हम अकेले हो, बल्कि उस वक्त करते हैं जब वो अकेले हो।

फ्रॉम द मूवी बुन जो बन गए मोती, इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं मोहम्मद रफ़ी जी और सुमन कल्याणपुर जी आपको सुनाने वाले थे। प्रोग्राम को हम और आगे में बढ़ाते हैं सुनने वालों, और मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, मंजिल इंसान की हौसले आजमाती है, किसी भी बात से हिम्मत ना हारना मेरे दोस्त,

0: ना ना पहले जरा आप मुस्कुराइए।
1: मुस्कुराने की न कोई बात है,
0: आज देखिए तो क्या हसीन रात है।
1: ओहो

0: अपना बना लो, हाथ जरा थाम लो, बार बार पूछो ना, दिल से भी काम लो।
1: काम का बताओ।
0: काम सीधा साधा है,
1: बोलो बोलो।
0: आज लेना एक वादा है,
1: क्या?
0: आजा आजा, शादी का इरादा है।
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं, सुनो तो, सुनो तो, सुनो तो।
2: आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए।
3: अभी आप सुन रहे थे आप यहाँ आए किस लिए, आशा जी के साथ में किशोर दा आपको सुनाने वाले थे। सुनजा आ ठंडी हवा, थमजा ए काली घटा। आप सुनेंगे, लेकिन ये गीत पेश करने से पहले मैं आप सभी से कुछ कहना चाहूँगी, और वो ये है, कुछ मजबूत रिश्ते बड़ी खामोशी से बिखर जाते हैं, कुछ मजबूत रिश्ते बड़ी खामोशी से बिखर जाते हैं, कुछ लोग खुद टूट जाते हैं दूसरों की खुशी के लिए।

किशोरदा और लता जी आपको सुनाने वाले थे सुंजा आ ठंडी हवा फ्रॉम द मूवी हाथी मेरे साथी से हमने पेश किए हैं। कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो आएगा। चलिए मिलकर सुनते हैं।

खाली जाम ले बैठा हूँ, कब से इस मैखाने में कोई तो होगा मेरा साथी, कोई तो प्यास

ये जाने कब मिल जाए, रास्ते में हमरा कोई। मेरे दिल का दर्द समझ

कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो आएगा, फ्रॉम द मूवी शराबी से हमने पेश किए हैं। मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं। हमने जफा ना सीखी, फ्रॉम द मूवी जिंदगी से हम पेश करते हैं।

मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी ज़िंदगी से हमने पेश किए हैं हमने जफ़ा न सीखी जो उनकी तमन्ना है बर्बाद हो जा।